ये आकाशवाणी भोपाल है, मीडियम वेव 188.2। न्यूज ऑन AIR और वेब्स OTT एप्लीकेशन पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 8वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 30 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जनसंबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ टी20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए समूह स्वर में ये देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में यतीश कान। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ए हरिहरन का गाया ये भजन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति। स्वर अंबर कुमार का है।

0: श्रोताओं, अनुराधा पौडवाल और साथियों के गाए इस भजन के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अभी ही संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी ग्वालियर है। अब प्रस्तुत है चिंतन। अभिवादन का महत्व विषय पर चिंतक हैं सुभाष अरोरा।
1: मुझे अपनी शाला के प्रधानाचार्य के कथन, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, ताउम्र कामयाब जीवन की कुंजी सरीखे प्रतीत होते हैं। सुबह की प्रार्थना के लिए जुटे छात्रों को संबोधित करते हुए वह सदा ज्ञान लेने के साथ साथ सद्व्यवहार का मूल मंत्र के रूप में अदब से पेश आने पर विशेष बल देते थे। इसी तरह उस दौर में एक स्वामी जी आसपास के मोहल्लों में जाकर बच्चों को सुबह सुबह उठकर अपने माता पिता के पांव छूने और आशीर्वाद लेने की शिक्षा देते थे। वह रामायण की एक चौपाई भी अक्सर सुनाते थे जो हर बच्चे को कंठस्थ हो गई थी। प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवाही माथा। प्राथमिक शिक्षा उपरांत जब नंबरों की लालसा ने संस्कृत कक्षा में बैठाया तो गुरु जी ने अभिवादनशीलस्य नित्यं वृदौ पसेविना चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, अर्थात बड़ों का समान पूर्वक अभिवादन करने से आयु विद्या यश और बल की प्राप्ति होती है। श्लोक और उसके अर्थ रटकर जीवन जब आगे बढ़ा तो बरसों बाद सही अर्थों में व्यवहारिक धरातल पर वास्तविक मायने समझ में आने लगे। बड़ों के आशीर्वाद से खुशी, सराहना और आत्मविश्वास में वृद्धि जैसा महसूस होने लगता है। अभिवादन दरअसल मानवीय संचार की महती क्रिया है और संवाद कायम करने का सरल और सभ्य तरीका भी। अभिवादन से जहां व्यक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, वहीं खुद को परिवेश से जोड़ने की पहल भी करता है। आपसी जुड़ाव और सहज सामाजिक स्वीकृति अर्जित करने में भी अभिवादन सहायक सिद्ध होता है। विश्व के हर समाज में अभिवादन सामान्य सामाजिक अनिवार्यता है। मनुस्मृति का दूसरा अध्याय जीवन जीने की कला अभिवादन और शिष्टाचार पर केंद्रित है। इस्लाम में भी जाने और अनजाने सभी को बात से पहले सलाम करने की ताकीद की गई है। साथ ही हर सलाम का जवाब भी सलाम हो, जिससे अभिवादनकर्ता को नेकियां नसीब होती हैं। अभिवादन के तौर तरीके समाज विशेष और क्षेत्र विशेष में भिन्न भिन्न होते हैं। शारीरिक संकेतों के द्वारा भी तहजीब और शहूर के मुताबिक हाथ हिलाकर, हाथ मिलाकर, मस्तक झुकाकर, मुस्कुराकर, हाथ जोड़कर, पैर छूकर, मौन रहते हुए अथवा अस्सलामु अलैकुम, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जिनेंद्र, स्वामी शरण अयप्पा, जय झूलेलाल, जय माता दी, हर हर गंगे, झूले, नमस्ते और नमस्कार आदि बोलकर हम अक्सर

रस्म निभाते हैं, परंतु अभिवादन जब दिल से किया जावे तो वह हमें न केवल आसपास से जोड़ देता है अपितु हमें आलोकित सार्वभौम सत्ता से भी संबद्ध

0: और अज्ञान दूर करने में बाधक भी मैं अथवा अहंकार के नष्ट होते ही राग द्वेष रहित मानव आलोकित सुपात्र बन ज्ञान संजोने को प्रस्तुत होता है। अभिवादन अहंकार रहित होने की दिशा में पहली कड़ी का काम करता है।
1: अभिवादन का महत्व विषय पर आज कार्यक्रम चिंतन में चिंतक थे सुभाष अरोरा। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है मानस कान।

राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं।

0: ये थी आज की श्री रामचरितमानस से संगीतमय प्रस्तुति। हम आकाशवाणी ग्वालियर से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। आज जानकारी का विषय है धान की फसल में कीट नियंत्रण। जानकारी दे रहे हैं सुहन सिंह।
1: किसान भाइयों, धान की फसल बढ़वार की स्थिति में है। धान की फसल में कीट नियंत्रण करें। फसल में यदि समय पर कीट नियंत्रण के उपाय नहीं अपनाए जाते हैं तो फसल उत्पादन काफी प्रभावित होता है। धान की फसल में कीटों द्वारा नुकसान नर्सरी से फसल पकने तक होता है। धान की फसल में तना छेदक कीट अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के वयस्क कीट हल्के पीले रंग के 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबे पतंगे होते हैं जो सुबह के समय पत्तियों पर बैठे दिखाई देते हैं। मादा कीट के दोनों ऊपरी पंखों के बिल्कुल बीच में एक काले रंग का धब्बा होता है और नर कीट के हल्के भूरे पंखों पर कई छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं। इस कीट की इल्लियां ही फसल को नुकसान पहुंचाती हैं, जो कि 20 मिलीमीटर लंबी मटमैली सफ़ेद या हरे पीले रंग की भूरे सिर वाली होती हैं। पौधों की बढ़वार की अवस्था में ये इल्लियां तने में घुसकर मध्य गोब को काट देती हैं, जिससे पौधों के बीच की पत्तियां सूख जाती हैं, जिसे व्हाइट ईयर हेड कहते हैं। बालियों में कीट के प्रकोप के कारण दाने नहीं बन पाते हैं और बालियां खींचने पर आसानी से निकल आती हैं। इस कीट से फसल के बचाव के लिए सामान्यतः मादा कीट पत्तियों के सिरों पर झुंड में अंडे देती हैं। पौध रोपाई से पहले पत्तियों के सिरों को काट देना चाहिए। यह पद्धति भी कीट नियंत्रण का आसान तरीका है। पौध रोपाई से पूर्व पौधों की जड़ों को क्लोरोपाइरीफास 20 ईसी की 10 मिलीलीटर मात्रा 10 लीटर पानी के घोल में उपचारित करने के बाद रोपाई करने से भी कीटों का प्रकोप कम किया जा सकता है। प्रकृति में पाई जाने वाली मकड़ियां इस कीट के अंडों और इल्लियों को नष्ट करती हैं। खेत में इससे बचाव के लिए धान के पुआल के झाड़ू बनाकर 15-20 जगहों पर बांस की खूंटियां लगाकर बांधना चाहिए। तना छेदक कीट की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप 20-25 मीटर की दूरी पर लगाने चाहिए। फेरोमोन ट्रैप में ल्यूर को 20 दिन के अंतराल पर बदल देना चाहिए और फेरोमोन ट्रैप फसल से लगभग 1 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए। तनाछेदक कीट को रासायनिक पद्धति से नियंत्रण करने के लिए क्विनालफास 25 ईसी 1 लीटर मात्रा या कार्टाई हाइड्रोक्लोराइड 50 एसपी की 500 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। फसल की कटाई जमीन स्तर तक करें। अवशेषों को नष्ट करें जिससे इल्लियां नष्ट हो जाएं। इसी तरह पत्ती लपेटक कीट नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का पतंगा सुनहरे पीले रंग का होता है जिसके पंखों के बीच में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं। इस कीट की हरे रंग की इल्ली पत्ती को अपने ऊपर लपेटकर क्लोरोफिल को खाती हैं, जिसके कारण पत्तियां सफ़ेद सफ़ेद नजर आती हैं। धीरे धीरे पत्तियां सूखने लगती हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए फसल में कार्बनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। पत्ती लपेटक इल्ली के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्विनालफास 25 ईसी 1 लीटर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करके कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। भूरा फुदका ब्राउन हापर के नाम से जाना जाता है। यह कीट भूरे रंग का 3-4 मिलीमीटर लंबा होता है जो पानी की सतह के ऊपर तने के ऊपर चिपके रहते हैं और पौधों के तने तथा पर्णछत से रस चूसते हैं, जिसके कारण पौधे घेरों में सूखते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए फसल में संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करना चाहिए। संभव हो सके तो खेत से पानी निकालकर पुनः एक सप्ताह

0: रचनावाद भरना चाहिए। प्राकृतिक कीटों को बढ़ावा देना चाहिए। क्लोरोपायरीफास या पिप्रोनिल का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फसल की लगातार निगरानी करते रहना चाहिए और समय समय पर आवश्यकता अनुसार कीट नियंत्रण के उपाय अपनाकर फसल को स्वस्थ रख सकते हैं और फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: धान की फसल में कीट नियंत्रण, इस विषय पर आज कृषि चर्चा कार्यक्रम में जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। 6:50 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है सूचना पर कार्यक्रम दर्पण।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम। 26 जनवरी से 2400 घंटे उपलब्ध है डीटीएच पर, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
3: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स, और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: अभी आपने सुना सूचना पर कार्यक्रम दर्पण, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
7: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य उज्बेकिस्तान देशस्य राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेव इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति।

0: उभौ नेतारौ राष्ट्रपति प्रासादे व्यापार निवेशः रक्षा डिजिटल सम्पर्कः ऊर्जा शिक्षा जनानां सम्बन्धादिषु क्षेत्रेषु सहकारस्य समीक्षां करिष्यतः। अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वप्रथमं उज्बेकिस्तान देशस्य योग संघेन आयोजिते योग कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। ततः परं सः उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेव इत्यस्य प्रासादं गमिष्यति, यत्र उभौ द्वैपाक्षिकोपवेशनं करिष्यतः। बुधवासरे आगतायाः आकस्मिक जलाप्लावन दुर्घटनायाः अनन्तरं नेपाल देशे अद्य पर्यन्तं 80% यावत् भारतीयाः नागरिकाः रक्षिताः इति विदेश मन्त्रालयः अवदत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् पूर्वं सम्पर्करहितैः प्रायः 50 भारतीयैः सह पुनः सम्पर्कः स्थापितः। मन्त्रालयः अवदत् यत् 75-200 यावत् भारतीयाः नागरिकाः लुप्ताः इति कथ्यते। भारतीय मूलस्य प्रायः 28% यावत् जनाः अपि लुप्ताः सन्ति। स्थानीय प्रशासनस्य अनुसारं गतदिनेषु चीनदेशात् 98-500 यावत् भारतीयाः नागरिकाः नेपालदेशम् आगतवन्तः। अत्रान्तरे चीनदेशात् अद्यापि निर्गन्तुं 900 भारतीयाः नागरिकाः सुरक्षिताः सन्ति। बीजिंगनगरे भारतीय दूतावासः प्रत्यक्षतया अथवा स्थानीय प्रशासनस्य माध्यमेन सह तैः सह सम्पर्करतः अस्ति। मन्त्रालयः अग्रे अवदत् यत् भारतसर्वकारः जलाप्लावनेन पीडितानां शीघ्ररक्षणार्थं साहाय्यार्थं च नेपाली चीनी अधिकारिभिः सह निकटसमन्वयेन कार्यं कुर्वन्नस्ति। विदेशमन्त्रालये 24-होरा नियन्त्रणकक्षः स्थापितः अस्ति, तथा च काठमाण्डु बीजिंग नगरयोः भारतीयदूतावासयोः सहायिका सेवाः प्रचलन्ति। अत्रान्तरे विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् 11-टन भारयुक्तेन चतुर्थं विमानं C-130J हर्क्युलिस इति अद्य काठमाण्डुनगरं प्रति प्रस्थितम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11:00 आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य अस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 37-तमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च newsonair इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धौ भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। भारत ऋतु विभागेन आगामि दिनद्वयोः ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अद्य अरुणाचल प्रदेशस्य असम राज्यस्य मेघालयस्य छत्तीसगढ़स्य गांगेय पश्चिम बंगालस्य च केषुचित् स्थानेषु अपि प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अद्य बिहार पूर्वी मध्य प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश झारखंड नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम उत्तराखंड विदर्भ इत्येतेषु स्थानेषु अपि अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे थाईलैंड देशस्य विरुद्धं स्वस्य 20-प्रति-20 एशिया कप इत्यभियानस्य आरंभं करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज़्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे और उसके बाद वो सीधे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, इसके अलावा मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपये की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से दोबारा संपर्क स्थापित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉ. भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 से शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

पर आप सुनेंगे भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा प्रातः 7:20 पर, समाचार प्रभात 8:00, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। प्रातः 8:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज कार्यक्रम में कलाकार होंगे रामकिशुन अहिरवार। ढोलक पर संगत करेंगे श्रवण कुमार शर्मा, सारंगी पर उस्ताद अब्दुल मजीद खान। प्रातः 9:00 सुनेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। सिंधी कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे सुबह 9:30। जिले की चिट्ठी सुबह 10:00 भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 पर स्टूडियो से आप सुन पाएंगे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। दिन में 11:00 दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा समस्त देशवासियों के लिए मन की बात का प्रसारण। दिन में 12:00 फिल्म संगीत का प्रसारण होगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से संग्रहालय से। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दिन में 12:30 पर। महिला कार्यक्रम 2:00, 1:23 पर लोक संगीत का कार्यक्रम और 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित करेंगे। और ये तीनों ही कार्यक्रम शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत सुनेगा 2:00, 2:10 पर प्रादेशिक समाचार होंगे। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान आप सुनेंगे 2:30 पर। ये कार्यक्रम ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होगा। चित्रपट संगीत सुनेगा 2:50 पर।

और आइए अब एक संक्षिप्त जानकारी हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों की। शाम की सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे। 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत सुनेगा 5:33 पर।

0: शाम 6 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे भजन संध्या। फिल्म संगीत 6:30 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से हमें प्रसारित करेंगे। शाम 7 बजे हिंदी समाचार और शाम 7:05 पर कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे। प्रादेशिक समाचार शाम 7:10 पर आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे और शाम 7:30 से आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे महिला क्रिकेट एशिया कप 2026 के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेली जा रही मैच का आंखों देखा हाल। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। अगला कार्यक्रम भोपाल केंद्र से।
1: रेनी सीजन को हम जरूर एंजॉय करें,
2: गर्मा गर्म पकौड़े खाएं,
1: लॉन्ग ड्राइव पर जाएं,
2: भीगते झूमते नाचे गाएं,
1: लेकिन बारिश के पानी को यूं ही बर्बाद न होने दें,
2: पानी की एक एक बूंद बचाएं।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चित्रकूट में अतिवृष्टि और मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लेंगे जायजा। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक आज से ओरछा में आयोजित। और प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश का सिलसिला बने रहने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम की 137वीं कड़ी में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उप मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही गुजरात के सभी बूथों पर पार्टी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और नागरिक प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे और उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियायेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, इसके अलावा मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में आयोजित उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन उनके 3 दिवसीय दौरे का तीसरा और अंतिम दिन है। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रीवा पहुंचकर चित्रकूट में अतिवृष्टि और मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा बैठक की। जानकारी दी गई कि चित्रकूट में लगातार हुई अतिवृष्टि के कारण मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हैं। प्रभावित नागरिकों के लिए आश्रय स्थलों पर ठहरने, भोजन एवं चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी राहत और बचाव कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि
2: सिमरावल नदी और मंदाकिनी नदी जो बारिश के कारण से सतना चित्रकूट के अंदर बाढ़ के हालात थोड़े गंभीर हुए, ऐसे में हमारी सभी प्रकार की रेस्क्यू टीम लगी और जिला प्रशासन ने दक्षता से अपना काम किया है। लगभग 700 लोगों को रेस्क्यू किया है। प्रमोद वन विकास प्राधिकरण, मदन गोपाल, गायत्री पीठ चित्रकूट में आश्रय स्थल बनाए, ऐसे बीर सिंहपुर, कोठी और सतना के अंदर अलग अलग 10 स्थानों पर आश्रय स्थल के आधार पर इनकी व्यवस्था की गई। लगभग 6000 से ज्यादा फूड पैकेट बांटे हैं।
0: वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सतना जिले के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुसलमानों को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास रखता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कल भोपाल में कहा कि मध्य प्रदेश में 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए हॉकी फीडर सेंटर शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फीडर सेंटर में

कम उम्र से ही बच्चों की खेल प्रतिभा को पहचान कर प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित किए गए मैत्री हॉकी मैच पुरुष वर्ग में एमपी अकादमी ने भोपाल वॉन्डर्स को 3-0 से हराया। वहीं महिला वर्ग में भोपाल टाइगर्स ने शूटआउट में रायसेन क्वीन को 3-2 से पराजित किया। वहीं इस अवसर पर अशोकनगर, बैतूल और छिंदवाड़ा में नशा मुक्ति अभियान के तहत संडे ऑन साइकिल रैली तथा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन आज किया जाएगा। इसके साथ ही कल पांडुर्णा में मेजर ध्यानचंद कप प्रतियोगिता और पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। इंदौर का 132 केवी पोलो ग्राउंड चंबल एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब स्टेशन आज अपने 60 वर्ष पूरे कर रहा है। ये सब स्टेशन 30 अगस्त 1966 को ऊर्जीकृत हुआ था और इंदौर की विद्युत पारेषण व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बना। 6 दशकों में सब स्टेशन ने इंदौर के औद्योगिक विस्तार और शहरी विकास के साथ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि पोलो ग्राउंड सब स्टेशन इंदौर की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति ने दो दिवसीय बैठक आज से निवाड़ी के ओरछा में प्रारंभ हो रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के साथ पार्टी पदाधिकारियों और कार्य समिति सदस्य शामिल होंगे। पहले दिन इस बैठक में समरसता का संकल्प और विकसित भारत 2047 जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने, बूथ सशक्तिकरण और संगठन विस्तार पर मंथन होगा। बैठक के अंतिम दिन 31 अगस्त को सेवा संकल्प अभियान कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कार्य समिति के सदस्य शामिल होंगे। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के खिलाफ टी20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समयानुसार मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। भारत इस प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे सफल टीम है जिसमें 5 में से 3 मैच जीते हैं। भोपाल नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर दी जा रही 6% की विशेष छूट आज और कल जारी रहेगी। करदाताओं की सुविधा को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने आज अवकाश के दिन भी सभी जोन एवं वार्ड कार्यालय खुले रखने का निर्णय लिया है। करदाता निगम के किसी भी वार्ड कार्यालय में कर जमा करने के साथ ही निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 3 दिन तक बारिश का सिलसिला बने रहने की संभावना है। जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, पांडुर्णा, सतना, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, उमरिया, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में मौसम बदला रहेगा। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दाब क्षेत्र और मानसून ट्रफ सक्रिय है। हालांकि मध्य प्रदेश में इस सिस्टम का ज्यादा प्रभाव नहीं है। यही वजह है कि प्रदेश के सभी जिलों में एक जैसी बारिश होने की संभावना नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत झाबुआ के राणापुर, इंदौर के जोन क्रमांक 18, डिंडौरी के गौरा कन्हारी और धार जिले के नालछा तथा अलीराजपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिविरों का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रजापत, गवली, भोई, जाटव आदि समाजजनों द्वारा भुजरिया पर्व मनाया गया। छिंदवाड़ा से आज मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत मथुरा वृंदावन तीर्थयात्रा के लिए विशेष ट्रेन रवाना की जाएगी और बैतूल में रक्षाबंधन पर्व के दूसरे दिन कल सदर में भुजरिया का त्यौहार पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने मन के विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चित्रकूट में अतिवृष्टि और मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से ओरछा में और प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश का सिलसिला बने रहने की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:20 हुए हैं, समय हो चला है फिल्म संगीत का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म तीसरी मंजिल का ये गीत रफ़ी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी वर्मन। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार का गाया ये गीत फिल्म मंजिल से। योगेश का लिखा ये गीत है और इसे संगीत दिया है आर डी वर्मन ने।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब
1: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
4: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: तू भी आ जा के आ गई रुत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मर्यादा का ये गीत। इस गीत को युगल स्वर में गाया मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।
1: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
2: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
1: क्या, कैसे?
2: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
1: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
2: mmsky.mp.gov.in पर। MMSKY, सीखो भी कमाओ भी।
0: श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम में ये अगला गीत। फिल्म

अभी आपने सुना फिल्म महल का ये गीत किशोर कुमार और राजा भोसले की आवाज़ों में। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म द ट्रेन का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की स्वर में। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है और इसे संगीतबद्ध किया है आर डी वर्मन ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। फिल्म का नाम है आन मिलू सजना। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56

0: प्रतिशत खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोड़ देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्र स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
3: Every nation has a mission.
4: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
3: So diversity has to be celebrated.
1: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव

0: एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
1: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पर यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
0: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुवाकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पत्थनमथिट्टा जिले में अरनामुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर

0: AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भोटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
0: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटेकोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: किधर है?
1: बेटे का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
0: ये तो झटपट काम है।
1: कैसे?
0: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
1: और बाकी चेंजेस?
0: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
1: RBI कहता है
2: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज कार्यक्रम में कलाकार हैं रामकिशोर अहिरवार। अभी आपने सुना आपका गाया विरह गीत। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं ये वृक्षारोपण गीत।

श्रोताओं, इस प्रस्तुति के साथ ही आज का लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम में कलाकार थे रामकिशुन अहिरवार। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। कुछ ही पलों में इस घंटे की खास खबरें सुनिएगा आकाशवाणी भोपाल से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में आयोजित उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल रीवा पहुंचकर चित्रकूट में अतिवृष्टि और मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन और SDRF की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से निवाड़ी जिले के ओरछा में प्रारंभ हो रही है। बैठक में राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के साथ पार्टी पदाधिकारी और कार्य समिति सदस्य शामिल होंगे। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 3 दिन तक बारिश का सिलसिला बने रहने की संभावना है। जबलपुर, छिंदवाड़ा, छतरपुर और निवाड़ी समेत 17 जिलों में मौसम बदला रहेगा और भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में कल आयोजित किए गए मैत्री हॉकी मैच पुरुष वर्ग में MP अकादमी ने भोपाल वांडर्स को 3-0 से और महिला वर्ग में भोपाल टाइगर्स ने शूटआउट में रायसेन क्वींस को 3-2 से पराजित किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, जहां आप सुनते हैं लेटेस्ट न्यूज़, खबरें, सूचनाएं, समाचार और ढेर सारा गीत संगीत तो हम लेकर आते ही हैं। तो चलिए, देर किस बात की है, आज का कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे साथ। दोस्तों, जब हमारे विचार और प्रयास वर्तमान के लिए समर्पित होंगे, डेडिकेटेड होंगे,

तब हमारा भविष्य सुखद बनेगा। वर्तमान में अपनी योजनाओं को साकार करना चाहिए, अपनी पूरी एकाग्रता वर्तमान पर केंद्रित करना चाहिए, अपनी एनर्जी, पावर, सामर्थ्य और अनुभव का सदुपयोग करते हुए

अपने लक्ष्य को यानी टारगेट्स को पूरा करने के लिए सटीक और शुभ संकल्प बनाने चाहिए। जब हमारे विचार और प्रयास वर्तमान के प्रति समर्पित होंगे तब आपका आज ही सुखद भविष्य की नींव बनेगा। याद रखिए, भविष्य की सफलता और विजय वर्तमान में किए गए कर्मों का परिणाम होता है, इसलिए भविष्य की चिंता करने के बजाय आज को बेहतर बनाने का प्रयास करें। वर्तमान का हर क्षण अनमोल है, इसका सदुपयोग ही जीवन में सफलता, संतोष और समृद्धि का रास्ता बनाना है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बारिश का दौर चल रहा है, लेकिन इस बारिश के मौसम में हम और आप लोग स्वाद को तो छोड़ते ही नहीं हैं। ग्वालियर खाने पीने के शौकीन लोगों का ही शहर है। यहाँ मौसम कोई भी हो, स्वाद के नए ठिकाने तलाशने वालों की कमी भी नहीं है। खासकर वर्षा के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, चाट, समोसे, डोसा, इडली का स्वाद लेने का मन हर किसी का करता है, लेकिन इस मौसम में स्वाद के साथ सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। वर्षा के दौरान नमी, गंदगी के कारण खाद्य पदार्थों के दूषित होने और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में सिर्फ स्वाद देखकर खाने की जगह साफ़ सफाई और गुणवत्ता को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए भोजन प्रतिष्ठित और साफ़ सुथरे रेस्टोरेंट या कैफे में ही करें। खुले में रखे खाद्य पदार्थ, लंबे समय से कटे हुए फल और अस्वच्छ पानी से बने पेय से दूरी बेहतर है। आखिर वर्षा का मज़ा तभी पूरा होगा जब स्वाद के साथ सेहत भी बनी रहे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। दोस्तों राखी के उत्सव और भाई बहन की मुलाकातों के बाद शनिवार को हमारे शहर ने छुट्टी का अलग ही रंग दिखा। लगातार त्यौहार की रौनक के बीच जब विभागों स्कूल कॉलेज में अवकाश रहा तो परिवारों ने घर में आराम करने के बजाय शहर और आसपास के पर्यटन स्थलों की ओर निकलना पसंद किया। सुबह से ही कार और दोपहिया वाहनों में परिवार घूमने के लिए रवाना होती नजर आई। किसी ने इतिहास के पन्नों से मुलाकात के लिए किले का रुख किया तो किसी ने टिगरा की हरियाली और खुले वातावरण में वक्त बिताया। नलकेश्वर से लेकर मितावली, पड़ावली और बटेश्वर तक लोगों की आवाजाही रही। हमारे शहर के मॉल, पार्क, सिनेमाघर भी छुट्टी मनाने वालों से गुलजार रहे। वहीं शाम के समय परिवार रेस्टोरेंट और कैफे पहुंचे और लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन के घर आने जाने और रिश्तेदारों से मिलने का सिलसिला चलता रहा। ये तो त्योहारों की बात है, अब हम आपको अगले जो उत्सव है यानी कान्हा के जन्मोत्सव की धूम को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भाद्रपद माह की अष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां हमारे शहर और शहर के हर घर में जोरों पर चल रही हैं। कान्हा के स्वागत के लिए शहर के प्रमुख बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। लश्कर के ऐतिहासिक महाराजपाड़ा, नरजरबाग मार्केट, दानौली से लेकर हजीरा, किला गेट और मुरार के मुख्य बाजारों में जन्माष्टमी की खरीदारी को लेकर भारी रौनक देखने को मिल रही है। कान्हा के जन्मोत्सव को भव्य बनाने के लिए श्रद्धालु बाजारों में उमड़ रहे हैं, जिससे व्यापारिक गलियारों में भी गजब का उत्साह है। चलिए फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

दोस्तों आपने सुना ये गीत, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी गन्नू जद 8वीं कला प्रदर्शनी का आयोजन 8, 9 और 10 सितंबर को तानसेन कला वीथिका में किया जाएगा। कला आयोजन का मुख्य विषय गणेश जी रखा गया है। प्रदर्शनी में स्कूल और कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों के साथ साथ सभी कलाकारों को

निःशुल्क भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। आयोजन के अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला प्रदर्शनी, विशेष कला कार्यशाला और डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी के अगले चरण में विशेष कला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रतिभागी चित्रकला या मिट्टी के गणेश जी की मूर्तिकला में से किसी एक विधा में भाग ले पाएंगे। इको फ्रेंडली मिट्टी के गणेश जी बनाने की निःशुल्क कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रतिभागियों को मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, आज यानी 30 अगस्त को भगवती चरण वर्मा जयंती मनाई जाती है, जो हिंदी के महान उपन्यासकार और कवि की जयंती का प्रतीक है। मुख्य बात हम आपके बारे में बता सकते हैं, आपका जन्म 30 अगस्त 1903 को सफीपुर उन्नाव जिला यूपी में हुआ था। आपका 1934 का उत्कृष्ट उपन्यास चित्रलेखा पाप और पुण्य के जटिल विषयों का अन्वेषण करता है, और उनके आपके महाकाव्य उपन्यास भूले बिसरे चित्र ने आपको 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया। आपको 1971 में प्रतिष्ठित पद्मभूषण से सम्मानित किया गया और 1978 में राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किया गया। हिंदी साहित्य में आपके अमूल्य योगदान को सम्मानित करने के लिए आपके गृह नगर सफीपुर में साहित्यिक कार्यक्रम और विशेष आयोजन किए जाते हैं। सांस्कृतिक संगठन और प्रशंसक आपकी कालजयी कहानियों, कविताओं और पत्रकारिता में आपके योगदान को याद करते हैं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। तिब्बत के हिमखंड से नेपाल और भारत तक मची तबाही, ये चेतावनी है कि सीमाएं इंसानों की होती हैं, प्रकृति की नहीं। नेपाल ने एक बार फिर एक बड़ी त्रासदी झेली है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार आए भूकंपों ने यहाँ पहले ही जानमाल का भारी नुकसान पहुंचाया था। अब अचानक आई बाढ़ ने पूरे देश को त्रस्त कर दिया है। माना जा रहा है कि तिब्बत में लगभग 2000 वर्ग फीट आकार का एक विशाल हिमखंड 17000 फीट की ऊंचाई से टूटकर नीचे गिरा, जिसका प्रभाव किसी बड़े विस्फोटक हमले जैसा तीव्र था। ये कटु सत्य है कि ये हिमालय की पारिस्थितिकी और प्रकृति के बदलते स्वरूप का परिणाम है, जिसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन है। सुबह 8:15 बजे आए एक भूकंप के कारण ये हिमखंड अलग हुआ। सामान्यतः ऐसे भूकंपों से ग्लेशियर टूटते नहीं हैं। इससे पहले आए भूकंपों में ऐसी घटनाएं नहीं देखी गई, इसलिए इसका सीधा कारण हिमस्खलन, एवलॉन्च या फिर ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिमखंडों की अस्थिरता ही हो सकता है। दोस्तों बारिश का मौसम चल रहा है और हमारे कार्यक्रम में बारिश का कोई गीत ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए हम आपको इस मौसम से सजा हुआ ये गीत आपको सुनाते हैं।

दोस्तों, आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि नज़दीक है। जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट ज़रूरी नहीं है, उनके लिए वित्त वर्ष 2025-26 की आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है, यानी कि कल। ऐसे में करदाताओं के पास अब सीमित समय बचा है। अंतिम दिन का इंतज़ार करने के बजाय समय रहते रिटर्न दाखिल कर देना बेहतर है। रिटर्न भरने से पहले करदाताओं को फॉर्म 26AS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्सपेयर इन्फॉर्मेशन समरी में उपलब्ध जानकारी का मिलान अपनी आय, बैंक ब्याज, TDS, निवेश और अन्य वित्तीय लेन देन से करना चाहिए। इससे आय में अंतर या किसी जानकारी के छूटने की संभावना कम होती है। यदि किसी करदाता का टैक्स बकाया बनता है तो रिटर्न दाखिल करने से पहले उसका भुगतान भी सुनिश्चित करना चाहिए। अब बात करते हैं करियर अलर्ट की। 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए प्रसार भारती में नौकरी का मौका है और उसके लिए अब जो अभ्यर्थी हैं आवेदन कर पाएंगे। 12वीं पास युवाओं के लिए प्रसार भारती नौकरी पाने का अच्छा अवसर लेकर आया है। दूरदर्शन केंद्र की रीजनल न्यूज़ यूनिट में कैजुअल असाइनी के तौर पर विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके तहत वेबसाइट असिस्टेंट, ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट, CG ऑपरेटर और एंकर के पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। ये नियुक्तियां बेंगलुरु में होंगी। ये रिक्तियां बेंगलुरु स्थित दूरदर्शन केंद्र की रीजनल न्यूज़ यूनिट के लिए हैं। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम हम यहीं समेटते हैं, क्योंकि समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकें। अगले कार्यक्रम में कुछ नई सूचनाओं, संदेशों, जानकारी और रोचक तथ्यों और साथ ही साथ ढेर सारे गीत संगीत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगले प्रसारण भोपाल केंद्र से।

नारेल जे फ़ाइदन ऐं नारेल जे अर्थव्यवस्था में महत्व बाबति सुजागी आणण लाइ हिकु ख़ासि ॾींहुं मुक़ररु कयल आहे। हा, 20 सितंबर विश्व नारेल दिवस करे मल्हायो वेंदो आहे। नारेल जो पाणी हिकु प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट आहे ऐं इन जो तेल चमड़ी ऐं वारनि लाइ तमामु फ़ाइदेमंद आहे। नारेल जा रेशा बि नोड़ी, पायदान ऐं हस्तशिल्प ठाहिण लाइ कमु ईंदा आहिनि। त नारेल जो वण तटीय इलाक़नि में मिटीअ जो कटाव रोके पर्यावरण संतुलन ठाहिण में मददगार थींदो आहे। प्रकृतिअ जे हिन अमूल वरदान खे सहेजण तमामु ज़रूरी आहे। इन सां गॾु ई 1 सितंबर खां 7 सितंबर ताईं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह माना नेशनल न्यूट्रिशन वीक बि मल्हायो वेंदो आहे, जंहिंजो मक़सदु आहे संतुलित आहार ऐं सही पोषण बाबति सुजागी आणणु। छो त पोषण इंसान जे सही शारीरिक ऐं मानसिक विकास जी बुनियादु आहे। अॼु जे दौर में जॾहिं जंक फूड ऐं खाधे पीते जी बिगड़ियल आदतनि जे करे ॿारनि खां वठी वॾनि ताईं हर वर्ग जी हिकु वॾी आबादी बीमारी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, मोटापे या कुपोषण जे जाल में फाथी पई आहे, त संतुलित आहार बाबति सुजागी तमामु महत्व वारो विषय थी वेंदो आहे। दाल, साई भाॼियूं, फल, खीर, ही सभई शयूं हिकु स्वस्थ शरीर लाइ तमामु ज़रूरी आहिनि। संतुलित आहार शरीर जी रोग प्रतिरोधक क्षमता माना इम्यूनिटी में बि वाधारो कंदो आहे। सही पोषण देश रोशन, इहो ही हिकु स्वस्थ ऐं प्रगतिशील पंगत जी बुनियादु हुअणु खपे। दोस्तों, कार्यक्रम में हाणे ॿुधंदासीं भगवंती नावाणी ऐं साथियुनि जी आवाज़ में ही गीत।

0: दोस्तों, आकाशवाणी भोपाल में पंहिंजियूं कुझु कविताऊं पेश करण लाइ अॼु असां नींढ ॾिनी आहे श्री अशोक मनवानी जी खे। अशोक जी न रुगो साहित्य प्रेमी आहिनि पर पत्रकार, कहाणीकार, नाटक कलाकार ऐं समीक्षक बि आहिनि। श्री अशोक मनवानी जी कविताऊं ऐं कहाणियूं हमेशह ई सामाजिक मसइलनि सां ऐं सिंधी संस्कृतिअ सां लाॻापो रखण वारियूं हूंदियूं आहिनि। ही कहाणियूं ऐं कविताऊं कॾहिं तव्हांखे गुदगुदाईंदियूं त कॾहिं तव्हांजे मन में सिंधियत जा तार छेड़ींदियूं ऐं सदाई तव्हांखे सोचण लाइ ज़रूर मजबूर कंदियूं। अचो त ॿुधूं था अशोक मनवानी जी कविताऊं।
1: नमस्कार, जय झूलेलाल। मां कुझु कविताऊं ॿुधाए रहियो आहियां। पहिरीं कविता आहे बिहन जी बहार। पहिरीं त बिह पंहिंजी मुंद में ई लहंदा हुया। भाॼीअ वारो चवंदो हो अञा बिह किथे आया आहिनि। पर केतिरी सुठी ॻाल्हि आहे, हाणे 12 महीना बिह मिलणु लॻा आहिनि। बिहनि खे ॾिसी मूंखे ईअं महसूसु थींदो आहे, ॼण सॼे संसार बिहनि खे मान्यता ॾेई छॾी आहे। घर घर में बिह पटाटा रस में, बिह तरियल थालीअ में, बिहनि जा स्वादी पकौड़ा चटणीअ सां खाधा था वञनि ऐं सिंधी पंहिंजे बिहनि ते रोज़ु फ़ख्रु

कंदा था वन। जेके बिह कोन था खाइन उहे भी पुछंदा आहिनि सदाई कीअं ठहंदी आहे भाॼी ॿुधायो साईं। बिह भले मिलनि था महांगा पर करणा आहिनि ख़रीद छाकाणि आहिनि इहे पंहिंजा ऐं असांजा। जेकॾहिं वधीक ॾींहं नथा ठहनि बिह पोटरा पोटरियूं बि मछरी था वञनि कनि था ॾाॾीअ खां सवाल छो न आया आहिनि बिह घर असांजे यार आख़िर कॾहिं ईंदी वरी बिहनि जी बहार। ॿी कविता आहे थोरी गंभीर विषय आहे स्वास्थ्य जे हिकिड़े रोग ते केंद्रित आहे। झूले ते ॿार कविता जो सिरो आहे। झूले ते ॿार कॉलोनीअ जे बाग में झूले ते कुझु ॿार झूली रहिया आहिनि। ॿारनि जे निणनि में ख़ुशी आहे कुझु सपना बि अथनि। ॿार पाण में खिल मश्करी कंदे ॻाल्हाईंदे विंदुर करे रहिया आहिनि। हिकु ॿार रुॻो सभिनी ॿारनि खे झुलंदे ॾिसी फ़क़ति पंहिंजी जॻहि उदास बीठो आहे। अकेले बीठल ॿार जी माउ उन खे संभाले रही आहे किथे ॿार खे खेॾंदे धकु न लॻी वञे। नंढे ॿार खे धकु लॻी वियो त पोइ रतु निकिरी ईंदुसि ऐं रतु लाॻीतो पियो वहंदो। माउ वीचारु कंदी आहे त ॿार खे धकु लॻो ऐं रतु वियो त मां छा कंदसि, हिन ॿार जे शरीर में त रतु ठहंदो ई न आहे। हर महीने ॿियनि जे ॾिनल रत ते ॿार जी ज़िंदगी हलंदी आहे। इहो ॿार हिकु सिंधी ॿार आहे। ॿार खे थैलेसीमिया बीमारी आहे। थैलेसीमिक सिंधी ॿार ॿियनि ॿारनि खे झूले ते झूलंदे बसि ॾिसी रहियो आहे। मुंहिंजी टी कविता आहे जंहिंजो सिरो आहे वरसो। वरसे में मिलियल बीमारियुनि खे मूं ग़लति कोन मञियो आहे, तकलीफ़ न सम्झो आहे। वरसे में मिलियल बीमारियुनि खे मूं ग़लति कोन मञियो आहे, तकलीफ़ न सम्झो आहे। मूं वरसे में मिलियल हर ॻाल्हि खे दिलि सां मञियो आहे, मंज़ूर कयो आहे। मूं वरसे में मिलियल हर ॻाल्हि खे दिलि सां मञियो आहे, मंज़ूर कयो आहे। मुंहिंजी माउ चवंदी आहे त तूं असुल पीउ वांगुरु खंघंदो आहीं। मूंखे जॾहिं लाॻीती हलंदी आहे खंघ, माउ उदास थी वेंदी आहे। मूंखे जॾहिं लाॻीती हलंदी आहे खंघ, माउ उदास थी वेंदी आहे, पर मुंहिंजे चेहरे ते कोन ईंदी आहे का उदासी या परेशानी। वरसे में घर दुकान जायूं बनियूं मिलंदियूं आहिनि त को बि उदास कोन थींदो आहे। वरसे में घर दुकान जायूं बनियूं मिलंदियूं आहिनि त को बि उदास कोन थींदो आहे। बाज़ार में मार्केट में सवलाईअ सां मिली वेंदी आहे खंघ जी दवा। खंघंदे खंघंदे मां यादि कंदो आहियां पंहिंजे पीउ खे ऐं खंघण जे साॻे सुर खे, साॻे आवाज़ खे। खंघंदे खंघंदे मां यादि कंदो आहियां पंहिंजे पीउ खे ऐं खंघण जे साॻे सुर खे, साॻे आवाज़ खे। इन खंघ में महसूसु कंदो आहियां पीउ जी आसीस खे। मुंहिंजी कविता जो सिरो आहे उहो बांदर। उहो बांदर नेशनल हाईवे ते ईंदे वेंदे माण्हुनि खां चणा ऐं ॿियूं खाइण जूं शयूं वठी पंहिंजो पेट पालींदो आहे। उहो बांदर हाईवे ते ईंदे वेंदे माण्हुनि जे हथ मां चणा ऐं ॿियूं शयूं वठी पंहिंजो पेट पालींदो आहे। घणाई भेरा बांदर जी ज़िंदगीअ ते बि सुवाल बीह रहंदो आहे। घणाई भेरा बांदरगी जी ज़िंदगीअ ते बि सवाल बीह रहंदो आहे। कंहिं तेज़ रफ़्तार में ईंदी गाॾीअ जे हेठां अची करे ओचितो बांदर जो मौत बि थी वेंदो आहे। कॾहिं तेज़ रफ़्तार सां ईंदड़ गाॾीअ जे हेठां अची कॾहिं कंहिं बांदर जो मौत बि थी वेंदो आहे। पर कुदरत उन खे जेका मस्ती ऐं ढिंग टप ॾिनी आहे उन कुदरती सुभाउ जे करे बांदर खे मिलंदी आहे गैर कुदरती मौत। बांदर खे पंहिंजे कुदरती सुभाउ जे करे कॾहिं कॾहिं मिलंदी आहे गैर कुदरती मौत। मुंहिंजी आख़िरी कविता आहे कारी छोकिरी। हूअ छोकिरी एमएससी जी टापर हुई पर थोरी कारी हुई। हूअ छोकिरी

साथियों, इन्हें सां गड़ी असांजे अज जे कार्यक्रम जो समय बि समाप्त थो थे। उम्मीद आहे त तव्हां खे कार्यक्रम ज़रूर वणियो हूंदो। पंहिंजा वीचार, पंहिंजा राया असां ताईं ज़रूर पहुचाईंदा।

आकाशवाणी भोपाल जे फेसबुक पेज जरिए हाने पेंजी रेडियो साथी चित्रा चेलानी खेडींदा इजाजत तवां सभई स्वस्थ रहो मस्त रहो ए सदाई सिंधिया में गालहाइंदा रहो वरी गजबो सब जो भलो।

सिंधियत जी सुरहान। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया गया। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज सुबह 11 बजे आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात।

0: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी भोपाल से अब आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है हरदा जिले की चिट्ठी। आलेख लोमेश कुमार गौर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। हरदा जिले में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला जेल में कैदी भाइयों और उनकी बहनों के बीच भावुक मुलाकात देखने को मिली। शुक्रवार को बड़ी संख्या में बहनें जेल पहुंची और भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर मिठाई खिलाई। इस दौरान कई कैदियों ने बहनों से भविष्य में अपराध से दूर रहने और जेल से बाहर निकलकर अच्छा नागरिक बनने का वादा किया। हरदा जिले में बीते 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ और परेड की सलामी ली गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा रहे। विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं देशभक्ति प्रस्तुतियों से समारोह में उत्साह भर दिया। जिले भर में शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों और सार्वजनिक संस्थानों में भी ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान 2026 का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत तिरंगा रैली, तिरंगा मैराथन और वंदे मातरम गान के साथ निबंध, रंगोली और वाहन रैलियों के आयोजन किए गए। हरदा के टिमरनी स्थित भाऊ साहब भुस्कटे महाविद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं के साथ सीधा ऑनलाइन संवाद प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डीडी उइके समेत जनप्रतिनिधि, अधिकारी और विद्यार्थी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ओलंपिक के 20 से ज्यादा खेलों में भारत की भागीदारी नहीं है, ओलंपिक में भारत की इस भागीदारी को बढ़ाना होगा, 2036 ओलंपिक के लिए अभी से खिलाड़ी तैयार करें। केंद्रीय राज्य मंत्री डीडी उइके ने कहा कि युवा देश के भविष्य के साथ वर्तमान में भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। मध्य प्रदेश लेखक संघ की जिला इकाई की मासिक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन बीते दिनों किसान भवन में किया गया। कार्यक्रम में जिले के कवियों और साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति देकर साहित्यिक माहौल को समृद्ध किया। वहीं हरदा में संभाग स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसमें हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल जिले की टीमों ने हिस्सा लिया। हैंडबॉल, टेबल टेनिस और कुश्ती सहित विभिन्न खेलों में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं खेल की अन्य गतिविधियों में जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन अग्रवाल स्पोर्ट्स अकादमी में बीते दिनों किया गया, जिसमें 14, 17 और 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का संभाग स्तर के लिए चयन किया गया। जिले में 25 से 31 अगस्त तक 7 दिवसीय संस्कृत सप्ताह महोत्सव मनाया जा रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय हरदा में संस्कृत भाषा में प्रार्थना सभा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ इस सप्ताह का शुभारंभ किया गया। रहटगांव क्षेत्र में सोयाबीन फसल में राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट की संभावना को देखते हुए किसानों को कृषि सलाह जारी की गई है। किसानों से खेतों की नियमित निगरानी और प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर उचित फफूंदनाशी का उपयोग करने की अपील की गई है। हरदा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में जन सुरक्षा युवा सृजन संवाद कार्यक्रम की शुरुआत बीते दिनों की गई, जिसमें विद्यार्थियों को कानून, संविधान, साइबर सुरक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा, नशा मुक्ति और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। हरदा जिले के गोराखाल जलप्रपात को मध्य प्रदेश के इको टूरिज्म स्थलों में शामिल किया गया है। बीते दिनों यहां जलप्रपात पर्यटन की सुरक्षा और प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण गतिविधि में जुड़े प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 23 और 24 जुलाई को आयोजित किए गए इस प्रशिक्षण में जल आधारित सुरक्षा, खोज बचाव, प्राथमिक उपचार, CPR और संवहनी पर्यटन जैसे विषय शामिल रहे। जिला पंचायत हरदा के सभागार में बीते दिनों नर्मदा संवाद जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नर्मदा संरक्षण, घाट संस्कृति, जैविक खेती, पौधरोपण और नर्मदा की सहायक नदियों के संरक्षण पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में पद्मश्री मोहन नागर सहित जनप्रतिनिधि, पर्यावरणविद और नर्मदा समग्र के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की। जिले भर में ईद का पर्व हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज के जनों ने ईदगाह और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा कर देश, प्रदेश और जिले में सुख शांति और समृद्धि की दुआ की। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों की तरह हरदा में भी संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ बीते दिनों किया गया। पवित्र जल से भरे कलश के साथ निकली ये यात्रा जिले के विभिन्न गांवों और कस्बों का भ्रमण करेगी। इस यात्रा का उद्देश्य संत गुरु रविदास के संदेश को जन जन तक पहुंचाना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। ये यात्रा संत गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प यात्रा अभियान का हिस्सा है, जो कि 20 अगस्त से 10 सितंबर तक जिले भर में आयोजित किया जाएगा। हरदा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
0: आप सुन रहे थे हरदा जिले की चिट्ठी। आलेख लोमेश कुमार गौर का था, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का। यह प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया गया।
2: श्रोता साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र। सुबह के 10:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइश फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका व्हाट्सएप फरमाइश फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में, जहां आप सुनते हैं अपनी ही फरमाइशी किए हुए कुछ गीत, जिन्हें आप व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचाते हैं और हम आपकी फरमाइश पूरी भी करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। पहला गीत हम लेते हैं, ये फरमाइशी गीत लिया है हमने फिल्म मोहरा से। उदित नारायण और अलका याज्ञिक की आवाज़ें हैं। इंदिवर का लिखा ये गीत और विजू शाह का संगीत। हम नाम पढ़ लेते हैं, फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है। श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जगुताई राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वत, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख, ये सभी हमें फरमाइश भेज रहे हैं मुक्काम पोस्ट कालीगांव जाफराबाद से। लोरमी चचेड़े छत्तीसगढ़ से हमें फरमाइश भेजी है कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी। साथ ही इस गीत को पसंद किया है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
5: सच?
4: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी एचआईवी की जांच भी करवाना, क्योंकि एचआईवी का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
5: डॉक्टर, अगर एचआईवी पॉजिटिव आए
4: तो? बिना कोई देरी किए एआरटी केंद्र से एआरटी ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
5: डॉक्टर, हम आज ही जाकर एचआईवी की जांच कराते हैं।
4: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
6: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
7: श्रोताओ, अगला गीत सुनेगा, फिल्म का नाम है आप आए बाहर आई। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का लिखा ही गीत, और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है। ग्राम संदलपुर आत्री से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव, दीपक यादव और चांदनी यादव साथ ही इस गीत को पसंद किया है। गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा, निशा मिश्रा मुरार संतर से, ग्वालियर से, कालू चौरसिया, पालू चौरसिया और रेखा चौरसिया ये फरमाइश करते हैं, चौरसिया कॉलोनी ग्वालियर से। फरमाइश करता और भी हैं, गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल बबरी बाजार चंदौली से, विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल रामनगर कदमा जमशेदपुर से, मराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल चकिया बाजार चंदौली से, सुंदर जायसवाल, सुमन जायसवाल कृष्णा पार्क दिल्ली से, सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से, पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबराय।

श्रोताओं माफ़ कीजिए, ये गीत हमें प्ले करने में कुछ परेशानी का टेक्निकल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके स्थान पे हम आपको दूसरा गीत फिल्म करण अर्जुन का सुनवा रहे हैं। कुमार सानू और उदित नारायण, अलका याज्ञिक की आवाज़ें हैं। लीजिए सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म करीब का ये गीत कुमार सानू और संजीवनी की आवाज़ों में। राहत इंदौरी का लिखा ये गीत था और इसे संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने। पसंद हमारी इन श्रोताओं की थी। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, परिधि सुरोशी, मारिया सुरोशी। साथ ही इस गीत को पसंद किया टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर। नई बस्ती गंज डुडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। आइए अब कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ये अगला फरमाइशी गीत। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याज्ञिक ने। एक बार पुनः राहत इंदौरी का लिखा ये गीत है और इसे एक बार पुनः अनु मलिक ने संगीत दिया है। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है। मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिश्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, यश मंजूरी, प्यारा नवासा, नुमेर मंसूरी। और ये हमें भेजते हैं बाजार रोड मुंगिसापुर से फरमाइश। साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादर दिल्ली से तुलसी मस्किन, बीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम दिल दे चुके सनम का ये गीत। कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद सलामत, डोमिनिक और साथियों की आवाज़ें थी। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की थी, बड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, ग्राम महसवाड़ी, तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न ढाड़े, वकील वाल्मीकि ढाड़े, नीनांजी ढाड़े, स्वप्निल ढाड़े। आइए अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत। फिल्म का नाम है आओ प्यार करें। कुमार सानू की आवाज़ें हैं, माफ़ कीजिए, कुमार सानू की आवाज़ है, श्याम राज का लिखा गीत और इसे संगीतबद्ध किया है आदेश श्रीवास्तव ने। हमारे इन श्रोताओं ने फरमाइश की है इस गीत के लिए। ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी चित्रेखा वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, उमेश नैनेश्वरी वर्मा, नूर महल महसोल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर भी किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स के सहयोग से नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में हिस्सा लिया। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू में नेपाल सरकार को भारत की तरफ से सौंप दी गई है। भारत पहले ही 57 टन से अधिक सामग्री भेज चुका है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल ने ग्रुप 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 की 1700 से अधिक पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन में 31 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित होने वाली रेलवे भर्ती परीक्षा को बारिश के चलते स्थगित कर दिया गया है और मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी और अदब गोशा के सहयोग से आज भोपाल में सिलसिला और तलाशे जौहर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: The best of entertainment, information, education, अब आपकी एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
3: और ये
4: मेरी गुड़िया के नाम
5: पर दादी हाँ आपके नाम
6: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो
1: शुभ शुभ बोलो क्या
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए सतर्क रहिए
9: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहां आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं हैं मदद बस एक कॉल दूर है
10: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
11: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं उन्होंने आगे बताया यह आइडिया बहुत ही सिंपल है आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है www.bharatrajya.com उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए साथियों कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं कृष्णा जी नमस्ते
12: नमस्ते सर नमस्ते
11: भाई मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ
12: धन्यवाद सर आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था फिर मैंने एमबीए किया फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं
11: कृष्णा जी भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा कि इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए
12: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है जैसे आप देखते हो तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से उसके नजरिए से सिखाया जाता है और वो

0: एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, तरकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
1: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
0: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, तो हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, एक साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया, और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव 2 प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे, या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशन आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा। तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके। तो वो हम फीचर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो, और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?

0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है।
2: साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने, इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे, इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास

समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती है, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती है। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर

देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपलें और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
और आपको यह

जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने YouTube से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलेंथ्रोफी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं
उत्तम कुमार जी के घर के सामने

0: सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्यस्य नूतन प्रकरणे भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं हार्दिकं स्वागतं करोमि। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् इदमेकम् एतादृशं मञ्चं यत्र वयं नूतनान् प्रयत्नान् समक्षम् आनयामः, देशवासिनां नवोन्मेषपूर्ण विचाराणां च चर्चां कुर्मः। एतेषु कियन्तोऽपि विचाराः एवं विधाः भवन्ति येषां नेपथ्ये जनैः जीवनस्य श्रमपूर्णशक्तिः विनियोजिता भवति। सखायः, किञ्चित् कालपूर्वं जनसञ्चारमाध्यमे कश्चित् लिखितवान् आसीत्, आषाढमासस्य एकादश्याः पावनेऽवसरे अहमिदं निवेदयितुं महतीं प्रसन्नतामनुभवामि यत् इतिहासं रुचिकरं कर्तुं स्वप्रयत्नस्य शुभारम्भं करोमि। सः अग्रे लिखितवान्।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमंद्र, सन्मति पंचोलिया, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना, प्राची नेमा, और चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल। इन सभी श्रोता साथियों ने फिल्म वीर जारा का ये गीत पसंद किया है, जिसके लिए आवाजें हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और साथियों की। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है मदन मोहन, संजीव कोहली का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना और रफ़ी मंसूरी, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन, प्रयागराज भट्ट, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता, एकांश गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता, अर्जुन गवाणकर, नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर। इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म रंग दे बसंती, इस फिल्म का गीत जिसके लिए आवाज़ है दलेर मेहंदी चित्रा की, गीतकार हैं प्रसून जोशी और संगीत है ए आर रहमान का।

और ये फरमाइश है छत्तीसगढ़ से दंतरेंग छत्तीसगढ़ दतरेंगे से भागवत प्रसाद वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पिपरिया से दुर्गा राम साहू, वृंदावन नगर मलकापुर से कैलाश निबालकर, रोहिणी निबालकर, सरला राहुल और दिनकर निबालकर, बक्सर से श्रद्धा नंदारे, अभय नंदारे, परमानंदारे, पंकज प्रमोद, रोहित मोहित, इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज है अरिजीत सिंह की, गीतकार है मनोज मुंतशिर और संगीत दिया है आरको ने।

0: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं संग्रहालय से इस कार्यक्रम में धारावाहिक जमुनिया की 12वीं कड़ी।
1: जमुनिया की कहने सुनो मेरे भैया, जमुनिया की करने गुनो मेरे भैया, जैसे बड़ी है जमुनिया जी आगे वही राह तुम भी, ए भैया वही राह तुम भी चुनो मेरे।
2: अभी तक आपने सुना है कि जमुनिया अपने पति की आत्महत्या के बाद देवर करण द्वारा घर से निकाल दी जाती है। देवर करण जमुनिया के पति रतन की पट्टे वाली जमीन भी हथिया लेता है और उसका बेटा भी। जमुनिया पास के गांव जाती है जहां झुल्लन उसे सहारा देते हैं। बांस की डलिया पंखे बनाकर गुजारा करने लगती है जमुनिया और सारे खाली समय में गुरुजी के पास जाकर पढ़ने लगती है। जल्दी ही वो पढ़ना लिखना सीख जाती है। उधर करण को भी दीवान कर्ज के जाल में फांस लेता है और इसी के चलते उसकी पत्नी और जमुनिया के बेटे गोलू, जिसे करण ने हथिया लिया था, वो उन दोनों को बंधुआ मजदूर बना देता है। इस बीच इन गांवों की सरपंची की सीट महिला सीट घोषित हो जाती है। पहले से सरपंच बना दीवान अब अपनी पत्नी को सरपंच बनाने के लिए पर्चा भरवा देता है। तो उधर गांव वाले मिलकर जमुनिया को इसी चुनाव का उम्मीदवार बना देते हैं, जिस पर दीवान बड़ा क्रोधित होता है पर चुनाव के समय की नजाकत को समझकर चुप रहता है। अब आगे
3: अरे चिरैया, चिरैया।
4: हाँ माँ।
3: कहाँ हो तुम?
4: कहाँ है अम्मा, हम यहीं तो हैं।
3: बेटा घर में ही रहना, हम गुरुवाइन को देख आती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ काम वाम घर का होगा तो वो भी करके आएंगी, गुरुजी को भी थोड़ी मदद हो जाएगी, ठीक है?
4: अच्छा अम्मा ठीक है, तुम जाओ, हम घर ही पर रहेंगे।
3: अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना बेटा।
4: हाँ अम्मा।
5: रुको, वो देखो ससुरी आवत है।
6: हाँ, हाँ,
5: अभी बनाते हैं इसको सरपंच।
6: रुक, छोड़ मुझे। पकड़ के रख ससुरी को, छोड़, अभी एक और जमाता हूँ।
7: अरे बस वो बच कर बड़बड़ा जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी। अबे काम बेकार जाएगा, भाग लो,
4: काका।
5: अरे कौन है?
8: अरे कहा बेटा, कहा हुआ जमुनिया? अरे अरे कहा हो गया रे बिटिया, तुम्हारे कपार से तो खून गिर रहा है बेटा।
4: घबराओ मत बाबा, माँ हम ठीक है, थोड़ा साफ कपड़ा लाओ।
8: हाँ।
4: बांध लेंगे।
8: हाँ।
4: ये लो, श्रीपत भैया भी आ गए।
7: ये कौन लोग थे जमुनिया दीदी, इन्होंने तुम्हें क्यों मारा? जरूर ये दीवान के आदमी होंगे, तुम्हारी सरपंची के पर्चा भरने से तिलमिला गया है दीवान।
8: अरे हाँ भैया ठीक ही कह रहे हो, अरे जाए दो बेटी, इस चुनाव उनाव से तो तुम दूर ही हो जाओ। गांव ससुरा ऐसा ही है, सब दीवान के ही पांव चाटते रहेंगे। अरे बेटा श्रीपाद, तुम जमुनिया का गांव दबा कर रखो। और हम बेटा साफ कपड़ा और कोनू दवाई मधम वगैरह ले आते हैं।
7: आज जाओ कक्का, जमुनिया का ख्याल हम रखेंगे, लगता है बहुत खून बह गया है।
4: चिंता मत करो भैया, जमुनिया की रगों में अभी बहुत खून है, कितना बहाएगा ये दीवान।
8: लो श्रीपाद भैया, हम दवाई और पट्टी ले आए।
7: जल्दी बांधो कक्का, थोड़ा सा ये लो, लाओ कक्का मैं बांध देता हूँ।
8: हाँ।
7: आप सिर को पकड़ लीजिए।
8: हाँ ठीक है,
7: लाइए मुझे दीजिए।
8: ये लो बेटा, ये जमुनिया बेटा,
7: बस
8: हो गया जमुनिया, थोड़ी हिम्मत रख बेटा,
7: बस हो गया, बन गई पट्टी, बन गई।
8: हाँ बन गई,
4: अच्छे से बेधड़क होकर बांधो, मैंने हिम्मत रखना सीख लिया है, घबराओ मत।
7: लो दीदी हो गई, हो गई मलम पट्टी। क्या दीदी, सरपंची का चुनाव लड़ोगे कि नहीं?
4: भैया अब तो लड़ना ही पड़ेगा। प्रणाम गुरुजी।
9: प्रणाम प्रणाम, आयुष्मान जमुनिया। अरे अरे, ये सिर में क्या हो गया बेटा? अरे अरे, अभी कैसे? पढ़ाई तो हो नहीं रही है आजकल चुनाव के मारे?
4: ये चुनाव के पूर्व का प्रसाद है गुरुजी, मैं भी पढ़ने नहीं आई हूँ। पता लगा गुरुवाइन बीमार है तो देखने आ रही थी। रास्ते में कुछ लोग मिल गए और ये घाव दे गए।
9: अरे अरे अरे अरे अरे अरे, रात बिरात घर से ना निकला करो जमुनिया। तुम चुनाव लड़ रही हो तो सजग रहना पड़ेगा तुम्हें। पर हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि अगर समर में उतर ही पड़ी हो तो पीछे मत हटना।
4: अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं है गुरुजी। आपकी शिष्या हूं, हर मुसीबत रात दिन तो देखकर आती नहीं, जब भी आए सामना तो करना पड़ेगा ही ना।
9: अच्छा अच्छा भाई, जाओ जाओ, गुरुवाइन को देखा, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी हरारत थी, चक्कर आ गया था, अब ठीक है।
4: गुरुवाइन माई, प्रणाम। कैसी है?
10: आओ जमुनिया आओ, इतने वक्त। हम ठीक हैं।
4: वो अभी पता लगा चुनाव लड़वा रहे हैं गांव वाले, उसी में लगी रही हूं।
10: तुम्हें कामयाबी ही मिलेगी जमुनिया, मेरी चिंता मत करो, अब ठीक हूं मैं।
4: आप लोगों के लिए कुछ रोटी सेक देती हूँ।
10: अरे नहीं, मेघा के घर से खाना आ गया है, रोटी सेकने की जरूरत नहीं है। तू आराम से बैठ, दुनिया भर की चिंता तुझे रहती है, अपनी फिक्र नहीं रहती। अरे राम, ये सिर कहाँ से फोड़ लाई तू?
4: अरे रास्ते में अंधेरा था, एक पत्थर से टकराकर गिर गई।
10: अरे
4: अब ठीक हूं मैं। आप भी चिंता मत करो, आप आराम करो। और हाँ, वो बर्तन वगैरह?
10: अरे नहीं नहीं, सब धुले रखे हैं, तू तो बस एक गिलास पानी पिला दे लाकर।
4: लभी लाती हूँ चाची। हाँ ये लो, मैं तो अब से आपको चाची ही कहूंगी।
10: ये हुई ना बात, चल अच्छा है, चाची ही अच्छा लगेगा मुझे।
4: जी चाची।
11: क्या हुआ रे, लोगों को बुला के लाया?
12: गया था बुलाने मालिक, पर सब अकड़ रहे हैं।
11: हैं? कैसी अकड़ रे?
12: मालिक कह रहे हैं हम वहां नहीं जाएंगे। दीवान जी से कहना, जो कहना है यहीं आकर कहें सबके बीच।
11: अच्छा, ये भाव है इन लोगों का? आसार अच्छे नहीं लगते। अरे सालों को जलाकर मार डालूंगा। हाँ
13: अभी गुस्से का समय नहीं है मालिक, थोड़ा संयम रखिए। लगता है जमुनिया को मारने पीटने का संदेश अच्छा नहीं गया है लोगों में। मार पीट तभी तक कारगर।

0: हाँ वही है
1: वही तो है।
2: आइए मालिक, आइए हमारे, आइए।
3: भाई अब हम आ गए हैं भाई, आप लोगों का संदेशा मिला कि आप लोग हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो भाई हम आ गए। अरे भाई ठीक भी है, अरे भाई जिसकी जरूरत है वही ना आएगा।
1: सही बात
3: भाई, आपको मेरी जरूरत होती है तो आप आते हैं, आज भाई मुझे आपकी जरूरत है तो मैं आ गया आप लोगों के बीच।
0: ऐसी बात नहीं है वाली।
3: अरे ठीक है भाई, ठीक है, कभी कभी आप लोग भी सोचते ही होंगे कि दीवान तो आता नहीं, हमेशा अमीर लोगों को बुलाता है। अरे भाई तो कभी कभी मुझे भी आना ही चाहिए आप लोगों के बीच, तो भाई लोगों मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच। और हाँ भाई, किसी को कुछ कहना हो तो कहे, नहीं तो भाई हम बोले। हाँ भाई, हाँ बोले बोले, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए बोलिए।
4: अरे मालिक, हमने सुनी है कि जमनिया के सरपंच जी लड़ने से आप कुछ नाराज है, है? और आपके आदमियों ने उस पर हमला भी करा, जमनिया को मारा।
3: गलत बात, कि हमें बदनाम करने की साजिश है। अरे भाई ये प्रजातंत्र है, जो चाहे चुनाव लड़े, कोई रोक सकता है क्या है? अरे भाई गांव की तरक्की का सवाल है, वो चाहे हम करें, हमारी मालकिन करें या फिर जमुनिया जी करें। भाई हम तो चाहते हैं विकास हो, और जैसे चुनाव में खड़े होने का, चुनाव लड़ने का हक सभी को है, तो सबको अपनी बात रखने का भी हक है। हाँ, इस नाते मालकिन की तरफ से हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अगर हम जीते यानी कि मालकिन, तो तुम्हारे इसी टोले में दो हैंडपंप लगवाएंगे। हाँ, और यही की गलियों में खड़ंजे भी लगेंगे। हाँ,
2: खड़ंजे यार,
3: और आप सबके खेतों की जुताई हमारे ट्रैक्टर से होगी, फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में।
4: अरे वाह, जुताई वो भी ट्रैक्टर से यार,
1: मुफ्त में।
3: बस भैया आप सबको अपनी मालकिन का ख्याल रखना है।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लो साहब, सपने दिखाने फिर आ गए, खा लो लड्डू खा लो, बाद में खाना लठ। देखो
5: कौन है रे, जब फुग्गा लगता है, ले चलो इसे, अच्छे से समझाते हैं लड्डू कैसे होते हैं।
0: अरे
5: ये फुग्गा है दीवान जी,
3: क्या कर रहे हैं? ये फुग्गा अपना ही आदमी है?
5: नहीं, ये फुग्गा है दीवान जी, फुग्गा।
3: अरे भाई फुग्गा फग्गू एक ही बात है, अरे इसे किसी ने बहका दिया है, बाद में खुद समझ जाएगा। छोड़ दो उसे, छोड़ो, सब देख रहे हैं।
5: दीवान जी के कहने पर छोड़ रहा है तुझे? हाँ, अगर जमुनिया को वोट दिया तो तेरी झोपड़िया में आग लगा देंगे, समझा? और हाँ, पता भी नहीं लगेगा कि तू कहाँ गया। हाँ सुन, सबको समझा देना, मालिक के ईंट के भट्टे पर किसी को काम नहीं मिलेगा, समझा? भाग,
1: भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग,

0: जयंत उठो भाई।
1: अरे क्या हो गया मेघा?
0: अरे शिल्पी हाँ, चलो हाँ,
2: बोलो।
0: आज से हमें चुनाव प्रचार के लिए निकलना है।
1: हाँ, हाँ।
0: देखो जमुनिया बहन

0: अगर हम सबसे पहले घर घर चलेंगे,
1: हाँ,
0: लोगों को समझाएंगे,
1: हाँ,
0: छोटी छोटी सभाएं करेंगे।
2: हाँ हाँ, हाँ, हाँ, चलो, भाई, चलो, चलो, चलो, चलो भाई चलो।
3: अरे आप लोग, नमस्ते मेघा बहन।
0: नमस्ते
3: शिल्पी दीदी।
4: हाँ
3: हाँ जयंत भैया, नमस्ते।
1: नमस्ते जमुनिया।
4: नमस्ते जमुनिया।
0: अरे हम लोग तुम्हें लेकर चुनाव प्रचार के लिए निकलने वाले हैं।
1: हाँ
0: हाँ, इसीलिए आए हैं हम।
3: प्रचार के लिए हमारे पास पैसा नहीं है बहन। वो भोपू, स्टेज, हार फूल, और हमें तो भाषण देना भी नहीं आता। चाहे हमसे काम कितना भी करवा लो, वो हम कर सकते हैं।
1: जमुनिया, हम पैसे वाला प्रचार नहीं करेंगे।
0: हाँ,
1: बस घर घर जाएंगे, सबको समझाएंगे और तुम्हारे लिए वोट मांगेंगे।
4: हाँ बहन, इसमें मेहनत लगेगी, पैसा नहीं।
0: हाँ।
3: अच्छा तब तो ठीक है, चलिए।
1: चलो
4: चलो चलो।
3: ये रहमान भाई का घर है।
0: अच्छा, रहमान भाई का।
3: हाँ, यही से शुरू करते हैं।
1: हाँ, ये ठीक है।
3: रहमान भाई सलाम।
5: सलामत रहो जमनिया बहन।
3: ये लो कक्का भी आ गए। राम राम कक्का।
6: खुश रहो बेटा, लगता है वोट मांगने निकले हो।
3: पहले तो आप लोग आशीर्वाद दो जीतने का, तब देना वोट।
7: हमारी जेब में क्या आएगा, वो तो कह रहे थे कि कंबल, रुपया, खेत की ट्रैक्टर से जुताई मुफ्त में, ये सब।
3: भैया ये सब चीजें तो हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास ये सब तो है नहीं ना। जैसे तुम्हारी हालत वैसे ही हमारी हालत। हम तो गांव तक सड़क लाने की, स्कूल अस्पताल खुलाने की, पानी रोटी की लड़ाई लड़ेंगे। ई खातिर दे सको तो वोट देना, और न देना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, पर अच्छे काम के लिए आशीष तो दे ही सकते हो।
6: ये सब तो ठीक है बिटिया, पर दीवान से बैर को ले।
3: देखो कक्का, दीवान तभी तक ताकतवर है जब तक हम अलग अलग हैं। हम सब लोग मिल जाएं तो दीवान भी कुछ नहीं कर पाएगा।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
4: बिल्कुल ठीक कह रही है जमुनिया, आप सब एक बार सोच कर तो देखिए।
0: हाँ, सोच कर तो देखिए।
1: देखो भाइयों, जमुनिया बहन आप सबकी सहयोगी है, सबके काम आती है, और जो वो करेगी वो सबके काम भी आएगा, और जो सबसे जरूरी होगा वही सबसे पहले होगा। हम आप सबसे वादा करते हैं कि आपकी आवाज सरकार के पास पहुंचाएंगे, और फिर देखना यहां की हालत जरूर सुधरेगी।
6: जमुनिया बेटी की बात में वजन है भाई लोग, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये हमारे में से है, अपने में से है।
3: दीवान की सरपंची सालों से देख रहे हैं आप लोग, क्या मिला?
8: ठेंगा मिला, धमकी दे रहा था हमारी झोपड़ियां जला देगा जो वोट दीवान की मालकिन को ना दिया तो। गौ कसम, उसको तो वोट नहीं देंगे। हाँ,
3: अरे बुक्का संभालो अपने आप को, इस तरह गौ की कसम नहीं खाते। उसको वोट मत देना, पर जमुनिया को तो दे सकते हो, है ना?
8: हाँ, हाँ दीदी, पक्का पक्का दीदी, देंगे, तुम ही को वोट देंगे। हाँ, देखें कोई क्या बिगाड़ लेता है। हाँ,
3: इसलिए भैया लोग चुनाव मतदान गुप्त होता है, ताकि किसी को पता ना लग सके कि किसने किसको वोट दिया है।
9: ये बात तो है भैया, ये काम सरकार ने वाकई बहुत ही अच्छा करा।
1: अपना वोट देना हमारा अधिकार है भुग्गा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वोट नहीं देते, और इसमें कोई बहादुरी वाली बात नहीं है कि वोट ना दे। बहादुरी इसमें है कि सही आदमी को वोट दें।
3: आज पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है भैया लोगों, आगे बढ़िए
5: और अपने हक की बुनियादी चीजों को इस गांव में ले आइए। छोटी छोटी जरूरतों से ऊपर उठिए, मिलजुल कर रहने की ताकत का फायदा उठाइए और जमुनिया को अपना वोट और आशीर्वाद दीजिए।
0: भैया लोग, हमें डरना नहीं, लड़ना है। एक तरफ अंधेरा है, हमें अंधेरे के खिलाफ उजाले के लिए लड़ना है। अरे कब तक हम पाँव तले दबे रहेंगे?
10: हाँ, अरे डर डर के बहुत जी लिए भाइयों, अब तो करो या मरो, खुद सोचो और फैसला लो। अब हालात बदलना अपने हाथ में है। हाँ, क्यों भाइयों?
0: अपने हाथ में है।
6: अरे भैया, हम तो इतने सालों में देख रहे हैं, कतु कछु नहीं बदला था, सब जस का तस है और खराब बद से बदतर है।
0: अरे दादा, सरकार तो बहुत सारी योजनाएं बनाती है इसलिए कि यहाँ के हालात बदले, बहुत सारा पैसा देती है कि यहाँ की जिंदगी बेहतर हो, पर दीवान जैसे बिचौलिए सब इधर उधर करके खा जाते हैं। हालात कैसे बदलेंगे, सुख सुविधाएं कैसे आएंगी, आप ही बताइए। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं, अब समय आ गया है, बदलिए ये सब।
3: अच्छा, आप लोगों को प्रणाम। अभी समय है, थोड़ा सोच विचार कर वोट दीजिएगा।
11: हाँ भैया, और कैसे भैया? आज तो नई धोती पहन के आए।
12: हाँ भैया, एक बात बताओ, ये का सोचते हो भैया, अब की चुनाव में कौन जीती?
11: कुछ कह नहीं सकते भैया।
12: कह?
11: हाँ, अब पहली बार लग रहा है कि टक्कर तो है।
9: टक्कर तो जोर की है भैया।
12: हाँ बिल्कुल,
9: एक तरफ जमनिया, एक तरफ दीवान वाली मालकियत,
11: वही तो बात है।
6: हाँ भाई, हाँ
11: लो जी,
6: आज तक तो दीवान खड़ा होता था, वो नाम का चुनाव है, बस एक तरफा जीत दीवान की।
12: इस बार ऐसा क्या खास है भैया?
11: अरे भैया लो,
9: जमुनिया जमुनिया
11: जमुनिया खास है। उसने दीवान को हिला दिया है।
9: सच्ची बात
12: हिला दिया।
9: अच्छा यार, एक बात तो बताओ, तुमने बहुत बातें बता दी।
11: बोलो
9: सच्ची सच्ची, बोलो यार।
11: हाँ,
9: किसको वोट दोगे?
11: अरे भैया, ये तो अब क्या है कि सब लोग बड़े चतुर हो गए, अब पता ही नहीं लगने देते कि किसको बोलते।
6: पर भैया, मैं इस बार चतुराई नहीं करूंगा। मैं तो साफ बोलता हूँ, जमुनिया को वोट दूंगा।
12: अच्छा,
6: आप सबसे भी विनती है कि जमुनिया को ही वोट दो। हाँ, जिताओ इस बार जमुनिया को।
11: ठीक कहते हो भैया, बिल्कुल ठीक। अरे कछु तो बदले, कुछ तो नया हो।
9: और यार को सही बात है यार। अरे इस बार ये भी करके देख ले।
12: ये भी करके देख लेते हैं। चलो चलो
11: भैया, दे रही फिर कि जमुनिया को ही वोट देंगे।
12: हाँ बिल्कुल, जमुनिया को ही वोट देंगे। चलो
13: हाँ। अरे का जमुनिया बेटी, आज चुनाव प्रचार नहीं होगा का?
3: होगा बाबा, आज भी होगा। मेघा दीदी आने वाली है अपने साथियों के साथ, तब निकलूंगी।
13: हाँ हाँ बेटा, वो तो ठीक है, तब तक तो आराम कर लो। तुम तो फिर लग गई दलिया पंखा बनाने में।
3: जब तक वो लोग आते हैं कुछ बना लूं, थोड़ा काम भी तो करना चाहिए।
14: माई, आज मैं भी चलती हूँ तेरे साथ।
3: तू आज मत चल, थक जाएगी। आज दूसरे गांव जाना है, वहां भी तो प्रचार करना पड़ेगा, है ना?
13: अरे हाँ हाँ बेटा, जाना जरूर जाना। देखो, अरे देखो देखो, ये लोग भी आ गए।
4: नमस्कार झुलन बाबा।
15: नमस्कार झुलन दादा।
13: नमस्कार नमस्कार बेटी, नमस्कार बच्चों, नमस्कार। लो जवनिया, अब तो तुम जाओ।
15: चलो जवनिया।

0: चलो
1: खूब अच्छे से प्रचार प्रसार करना बेटा, लड़ाई झगड़े से दूर रहना। इस बार जमुनिया को जिताना ही है।
0: चलिए।
2: अरे मालिक, सामने से तो एक और टोली चली आ रही है। लगता है जमुनिया के लोग हैं।
3: लगता नहीं बल्कि वही लोग हैं। अरे साथ में जमुनिया भी तो है। लगता है वो भी प्रचार के लिए ही निकले हैं।
4: अरे ये तो कमाल है, देखकर भी सीधे चले आ रहे हैं।
3: अरे अरे मेरा तो दिमाग घूम रहा है। अरे कुछ कर बैठूंगा।
4: नहीं मालिक नहीं।
3: अरे अरे क्या करें। अच्छा चलो चलो यहाँ से। अरे हम ही लोग रास्ता बदल लेते हैं, चलो यहाँ।
2: अरे नहीं मालिक नहीं, अब देखकर तो रास्ता बदलना ठीक नहीं रहेगा।
4: हाँ और गुस्सा करना भी ठीक नहीं रहेगा मालिक।
2: हाँ मालिक,
4: चुपचाप सामना करिए, देखिए क्या होता है।
2: अरे देखो तो कैसे दन दनाती हुई चली आ रही है।
0: राम राम दीवान जी।
3: राम राम।
0: वोट मांगने निकले हैं, सोचा पहले आपसे ही आशीर्वाद लेती चले।
3: अच्छा ही किया जमुनिया तुमने, पर भाई हम तो मालकिन को आशीर्वाद दे चुके हैं। हाँ भाई, अब तो वोटिंग के दिन ही हिसाब होगा साहब।
4: देखो तो हिम्मत, लगता है मालिक की छाती में घुस जाएगी।
0: कोई बात नहीं दीवान जी, हिसाब किताब तो हमने भी सीख लिया है।
3: इस भ्रम में मत रहना जमुनिया, ये जंग इस तरह नहीं जीती जाती। अरे हमें पता है इसके जीतने का रास्ता। जोर आजमा लो। अरे जोर आजमाइश अच्छी रहती है। और हाँ, इन शहरी लफंगों के भरोसे तो चुनाव जीतने से रही तुम।
0: आप कितने सत्य है ये भी बता दिया आपने। ये शहरी लफंगे नजर आते हैं, भारत को बदलने वाले आज ये ही लोग हैं। आपका दम आपको न सोचने देता है और न देखने देता है।
3: अरे आखिर चुनाव ना होता तो ठीक से बताता। जाओ यहाँ से और रास्ता छोड़ो हमारा। जाओ
4: जाओ जाओ।
5: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से में धारावाहिक जमुनिया की 12वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
6: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, यह अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत से लोग, खासकर युवा, इसका बड़ा हिस्सा बन गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सतना जिले के चित्रकूट का अवलोकन कर अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित नागरिक के लिए भोजन और चिकित्सा सहित आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आज ओरछा में प्रदेश भाजपा की कार्य समिति की बैठक चल रही है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार डीडी उइके एवं सावित्री ठाकुर सहित प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक और पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक 2 दिन चलेगी। विदिशा के मेडिकल कॉलेज में 8 सितम्बर से कैंसर डे केयर सेंटर प्रारंभ होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सेंटर का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। पश्चिम मध्य रेलवे जोन में होने वाली रेलवे भर्ती परीक्षा को बारिश के चलते स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 31 अगस्त से 3 सितंबर के बीच आयोजित होनी थी। और भोपाल नगर निगम द्वारा संपत्ति कवर दी जा रही 6% की विशेष छूट 2 दिन और जारी रहेगी। आज अवकाश के दिन भी सभी जोन एवं वार्ड कार्यालय खुले रहेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की योगदान है।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। आज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, सुनेंगे गीत संगीत और खाना खजाना में बनाएंगे कुछ फलाहारी व्यंजन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष धनिये की पंजीरी।

बहनों, आंखें हैं तो दुनिया रंगीन नजर आती है, हर खुशी इनकी चमक में मुस्कुराती है। आंखों की रोशनी को सदा संभाल कर रखिए, किसी की दुनिया रोशन हो ऐसा उपहार दीजिए। बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे दान की जो हमारे जीवन के बाद भी किसी दूसरे के जीवन में उजाला भर सकता है, वह है नेत्रदान। हमारी आंखें प्रकृति का अनमोल उपहार हैं। इन्हीं आंखों से हम अपने परिवार का चेहरा देखते हैं, फूलों के रंग देखते हैं, सुबह का सूर्योदय देखते हैं और अपने आसपास की सुंदर दुनिया को महसूस करते हैं। लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके जीवन में अंधकार है और जो दुनिया को देख नहीं पाते। बहनों, हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इस दौरान नेत्रदान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने, भ्रांतियों को दूर करने और लोगों को नेत्रदान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। नेत्रदान की सबसे सुंदर बात यह है कि व्यक्ति अपने जीवन के बाद भी किसी के जीवन में प्रकाश का माध्यम बन सकता है। मृत्यु के बाद दान किए गए स्वस्थ कॉर्निया का उपयोग चिकित्सीय प्रक्रिया के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्ति के कॉर्निया प्रत्यारोपण में किया जा सकता है। हमारे समाज में नेत्रदान को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करने से चेहरे का स्वरूप बिगड़ जाता है। ऐसा नहीं है। नेत्रदान एक सम्मानजनक चिकित्सीय प्रक्रिया है और इसे प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों द्वारा किया जाता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि केवल बिल्कुल स्वस्थ और युवा व्यक्ति ही नेत्रदान कर सकता है। वास्तव में नेत्रदान की उपयुक्तता का अंतिम निर्णय चिकित्सा विशेषज्ञ करते हैं। इसलिए उम्र या चश्मा लगाने जैसी सामान्य बातों के कारण स्वयं को नेत्रदान से अलग नहीं समझना चाहिए। बहनों, नेत्रदान का संकल्प केवल कागज पर लिख देना पर्याप्त नहीं है। अपनी इच्छा के बारे में परिवार के सदस्यों को पहले से बताना बहुत जरूरी है ताकि मृत्यु के समय परिवार समय पर संबंधित नेत्रदान केंद्र या चिकित्सा संस्था से संपर्क कर सके। बहनों, हम जीवन में धन, वस्त्र, भोजन और अनेक वस्तुएं दान करते हैं, लेकिन नेत्रदान ऐसा दान है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के बाद भी किसी के लिए आशा छोड़ सकते हैं। अपनी नजर को दूसरों की नजरों में देखिए, सोचिए, हमारी आंखें हमारे जाने के बाद भी किसी की दुनिया में रंग भर सकती है, तो इससे सुंदर मानवीय सेवा और क्या होगी। तो आइए इस राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े पर एक संकल्प लें, मेरी आंखें मेरे बाद भी किसी की दुनिया रोशन करेंगी।

बहनों अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की। सखियों, अच्छा स्वास्थ्य केवल बीमारी से दूर रहने का नाम नहीं बल्कि सही और संतुलित पोषण के साथ स्वस्थ जीवन जीने का नाम है। हमारे जीवन में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, भोजन ही हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और हमें दिन भर सक्रिय रहने की शक्ति देता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और किस समय खा रहे हैं, इन तीनों बातों पर ध्यान दें। इसी उद्देश्य से भारत में हर वर्ष 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पोषण और स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक करना तथा संतुलित आहार और स्वस्थ खानपान की आदतों को बढ़ावा देना है। अक्सर

हम सोचते हैं कि भरपेट भोजन कर लिया तो हमारा पोषण पूरा हो गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। शरीर को अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी, यदि भोजन में इनका संतुलन नहीं है तो पेट भरने के बावजूद शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता। इसलिए हमारी थाली में अनाज के साथ दालें या अन्य प्रोटीन स्रोत, हरी सब्जियां, दूसरी मौसमी सब्जियां, फल, दूध या उसके विकल्प तथा थोड़ी मात्रा में स्वस्थ वसा शामिल होना चाहिए। बहनों, हमारा दैनिक आहार कैसा होना चाहिए? सुबह उठकर दिन की शुरुआत पर्याप्त पानी से की जा सकती है। इसके बाद नाश्ता जरूर करें। नाश्ते में केवल चाय बिस्किट लेने के बजाय पोहा, उपमा, दलिया, इडली, अंकुरित अनाज जैसे विकल्प लिए जा सकते हैं। दोपहर के भोजन में रोटी या चावल के साथ दाल, सब्जी, सलाद और दही शामिल करना अच्छा विकल्प है। कोशिश करें कि भोजन में अलग अलग रंगों की सब्जियां और मौसमी खाद्य पदार्थ शामिल हों। रात का भोजन हल्का और संतुलित रखें। बहुत देर रात भारी भोजन करने की आदत से बचना चाहिए। सखियों, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए संतुलित भोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्हें केवल पेट भरने वाला भोजन नहीं बल्कि विविध और पोषक तत्व देने वाला भोजन देना चाहिए। किशोरियों और महिलाओं के भोजन में आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ पाचन और शारीरिक गतिविधि में बदलाव आता है, इसलिए बुजुर्गों के लिए आसानी से पचने वाला पोषक तत्व और पर्याप्त प्रोटीन वाला भोजन महत्वपूर्ण है। इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह एक संकल्प लें कि भोजन में विविधता रखेंगे, रोज मौसमी फल और सब्जियों को स्थान देंगे, दाल, चना, अंकुरित अनाज जैसे पौष्टिक प्रोटीन स्रोत शामिल करेंगे, नमक, चीनी और अत्यधिक तेल का सेवन कम करेंगे, भोजन को केवल स्वाद नहीं स्वास्थ्य और पोषण के नजरिए से भी देखेंगे, क्योंकि स्वस्थ परिवार की शुरुआत स्वस्थ रसोई से होती है और स्वस्थ रसोई की शुरुआत सही चुनाव से। तो सखियों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें याद दिलाता है कि पोषण किसी एक दिन या एक सप्ताह का विषय नहीं है, यह हमारे रोज के भोजन, हमारी आदतों और हमारे पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। बहनों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय संस्कृति और पर्व परंपरा की। पर्व हमारी संस्कृति के उत्सव हैं और परंपराएं हमारी जड़ों से जुड़ने का माध्यम। भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, वेशभूषाएं, खान पान, रीति रिवाज और जीवन शैलियां हैं, लेकिन इन सभी विविधताओं को एक सूत्र में पिरोने वाली शक्ति है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति केवल पूजा पाठ या रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है। यह हमें प्रकृति का सम्मान, परिवार का महत्व, बड़ों का आदर, छोटों के प्रति स्नेह, अतिथि सत्कार, सेवा, त्याग और आपसी सद्भाव की सीख देती है। हमारी पर्व परंपराएं इन्हीं जीवन मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का सुंदर माध्यम है। हमारे यहाँ वर्ष भर अनेक पर्व मनाए जाते हैं। हर पर्व के पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक या प्राकृतिक संदेश जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि भारतीय पर्व केवल आनंद मनाने के अवसर नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देते हैं। हमारी भारतीय पर्व परंपरा की एक विशेषता यह है कि इसमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता दिखाई देती है। सूर्य, जल, पेड़ पौधों, पशु पक्षी और ऋतुओं को हमारे अनेक पर्वों में विशेष स्थान दिया गया है। बहनों, आज की व्यस्त जीवन शैली में परिवार के सदस्यों के पास एक दूसरे के लिए समय कम होता जा रहा है। ऐसे में हमारे पर्व परिवार को साथ बैठने, मिलने जुलने और रिश्तों को मजबूत करने का अवसर देते हैं। पर्वों के अवसर पर घर की सफाई, सजावट, पारंपरिक पकवान बनाना, पूजा करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना, ये सभी गतिविधियां परिवार में

अपनापन और संस्कार पैदा करती हैं। परंपरा का अर्थ केवल पुरानी बातों को बिना समझे दोहराना नहीं है। सच्ची परंपरा वह है जो समय के साथ अपने मूल मूल्यों को बनाए रखते हुए समाज के लिए उपयोगी बनी रहें। आज के बच्चों को त्योहारों की केवल छुट्टी या नए कपड़ों से नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे मूल्य और इतिहास से भी परिचित कराना जरूरी है। जब बच्चे पर्वों के पीछे छिपे अर्थ को समझेंगे, तभी वे हमारी संस्कृति को केवल निभाएंगे नहीं, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाएंगे। हमारी संस्कृति किसी संग्रहालय में रखी हुई वस्तु नहीं है, वह हमारे व्यवहार, भाषा, परिवार, खानपान, कला, संगीत और संस्कारों में जीवित रहती है। अपनी संस्कृति पर गर्व करें, अपनी पर्व परंपराओं को समझें, आने वाली पीढ़ी तक उनकी सुंदर विरासत पहुंचाएं। किसी ने क्या खूब कहा है, पर्वों से महकती है भारत की पहचान, परंपराओं से मजबूत होता है संस्कार, विविध रंगों में एकता का संदेश लिए यही है हमारी संस्कृति का सुंदर संसार। सखियों, अपनी बातों में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अटखेलियां करते मौसम की। सखियों, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश की फुहार, मौसम की अटखेलियां अपने साथ लाती हैं प्रकृति का सुंदर संसार। मौसम का बदलता मिजाज अपने साथ कई रंग लेकर आता है। कभी आसमान पर बादल छा जाते हैं, कभी अचानक धूप खिल उठती है और कभी ठंडी हवा मन को तरोताजा कर देती है। प्रकृति के बदलाव भले ही हमें आनंद देते हों, लेकिन बदलते तापमान और वातावरण का असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। मौसम में अचानक बदलाव के दौरान शरीर को नए तापमान के अनुरूप ढलने में थोड़ा समय लगता है। ऐसे समय में सर्दी, जुखाम, खांसी, गले में खराश, एलर्जी, सिर दर्द या पाचन संबंधी परेशानी जैसी मौसमी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए मौसम चाहे जितनी अटखेलियां करे, हमें अपनी सेहत के प्रति सजग रहना चाहिए। बदलते मौसम में भोजन का विशेष ध्यान रखें, घर का ताजा और पौष्टिक भोजन करें, मौसमी फल और सब्जियों को अपनी थाली में शामिल करें, बहुत अधिक तला भुना मसालेदार पैकेट वाला भोजन कम करना बेहतर है। बारिश के दिनों में विशेष रूप से खुले में बिकने वाले कटे फल, अस्वच्छ पानी और लंबे समय से रखा हुआ भोजन खाने से बचें। मौसम ठंडा होने पर प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की आवश्यकता बनी रहती है, इसलिए पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी पीते रहें। बहुत अधिक मीठे या शीतल पेय की जगह पानी, छाछ या अन्य पौष्टिक पेय बेहतर विकल्प हो सकते हैं। मौसम बदलने पर संक्रमण से बचाव के लिए हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना, घर और आसपास की सफाई रखना। यदि बारिश हो रही हो तो घर के आसपास पानी जमा न होने दें, क्योंकि रुका हुआ पानी मच्छरों के पनपने का कारण बन सकता है। बहनों, सामान्य सर्दी जुखाम जैसी परेशानी कई बार घर पर आराम और सामान्य देखभाल से ठीक हो जाती है, लेकिन तेज या लगातार बुखार, सांस लेने में परेशानी, अत्यधिक कमजोरी हो तो चिकित्सीय सलाह लेना जरूरी है। याद रखिए, बदलता मौसम बीमारी का कारण बनना जरूरी नहीं है। सही खानपान, पर्याप्त नींद, स्वच्छता, नियमित गतिविधि और मौसम के अनुरूप सावधानी अपनाकर हम स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। बहनों, अब चलते हैं अपने विशेष खाना खजाना की तरफ। बहनों, आने वाली 4 तारीख को है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। हम इस अवसर पर कृष्ण जन्मोत्सव की खूब सारी तैयारियां करते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं, व्रत उपवास रखते हैं। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही व्यंजन बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं जन्माष्टमी पर बनाई जाने वाली विशेष धनिया पंजीरी। तो आप नोट कीजिए, धनिया पंजीरी में लगने वाली सामग्री, हमें चाहिए साबुत धनिया 250 ग्राम, देशी घी 100 ग्राम, बूरा 150 ग्राम, मखाने, बादाम, काजू, सूखा नारियल, किशमिश सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और 4-5 इलायची। धनिया पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले धनिये को कढ़ाई में धीमी आंच पर भून लें। धनिये की खुशबू आने लगे और वह हल्का कुरकुरा हो जाए तो उसको आप निकाल लें, ठंडा करके उसे दरदरा पीस लें। अब सभी मेवे को काट कर

हल्का सा रोस्ट कर लें। अब एक बर्तन में भुना हुआ धनिया, मेवे, इलायची पाउडर और साथ में बूरा मिला लें। ध्यान रखें सभी सामग्री अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तभी बूरा मिलाना है। लीजिए, तैयार है कृष्ण जन्माष्टमी की सुगंधित धनिया पंजीरी। इसे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में बांटें। सखियों, अब हम आपको बता रहे हैं नारियल मखाना लड्डू। हमें इसके लिए चाहिए मखाने 2 कप, सूखा नारियल का बूरा 1 कप, देशी घी 3 बड़े चम्मच, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच और साथ ही चाहिए कुछ मेवे। नारियल मखाना लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर मखानों को धीमी आंच पर कुरकुरा होने तक भूनें और उन्हें ठंडा होने पर मिक्सी में दरदरा पीस लें। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर नारियल का बूरा सेक लें। मेवों को बारीक काट कर हल्का सा भून लें। कढ़ाई में बचा हुआ घी डालें, इसमें पिसे मखाने डालकर 2-3 मिनट और भून लें और फिर नारियल और मेवे मिला दें। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए मिश्रण को चलाएं। मिश्रण इतना गीला रखें कि लड्डू आसानी से बंध सके। अब गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें। अब इसमें बूरा मिला लें, साथ ही इलायची पाउडर मिला दें और लड्डू बांध लें। लीजिए, फलाहारी नारियल मखाना लड्डू बनकर तैयार हैं। जन्माष्टमी के भोग के लिए इन्हें छोटे आकार में बनाकर ऊपर से थोड़ा नारियल या कटे हुए पिस्ते से सजाएं। बहुत सुंदर और स्वादिष्ट लगेंगे। सखियों, हमारे कार्यक्रम की समय सीमा है, तो अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दें अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में विनोद कुमार सेन और साथियों के गाए कृष्ण भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान है।

0: और अब सुनते हैं लोक भजन मोहन सिंह यादव और साथियों के स्वर में।
1: अरे मोहन ने मधुबन में बांसुरी बजाई बड़ो।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान था। और लीजिए आप सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान है। पहले सुनिए अशोक कसेरा के स्वर में गजल।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
6: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
3: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।

यादों की बारात, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, गीतकार थे मजरू और संगीत था राहुल देव बर्मन का।

0: ये गीत था फिल्म डार्लिंग डार्लिंग से, जिसके लिए आवाज थी किशोर कुमार की, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था आरडी बर्मन का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11:00 कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मन की बात में उन्होंने युवाओं से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और रचनात्मक प्रयासों से समाज को जोड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण का भी उल्लेख किया। उन्होंने स्वच्छता, महिला उद्यमिता और बेटियों के अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदारी जैसे प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि भारत में बने उत्पादों पर गर्व करना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार, भारतीय निःसहास के पुनर्लेखन और देश के गौरवशाली अतीत को जानने जैसे विषयों के जरिए लोगों को नई प्रेरणा देते हैं। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि ओरछा जैसे ऐतिहासिक स्थल से मन की बात सुनना और भी विशेष अनुभव है।
2: जब भी हम प्रधानमंत्री जी को मन की बात में सुनते हैं, बात बहुत छोटी होती है, किसके उसके मायने बहुत बड़े होते हैं। अब जैसे छोटे छोटे उद्योग, स्वरोजगार एक बहुत बड़ी बात है, साथ ही रोजगार के नए अवसर, फिर सामाजिक सरोकार, स्वच्छ भारत में सब लोग कैसे मिशन की तरह लगे, उसके एग्जाम्पल दिए उन्होंने। आप क्राप चेंज कर सकते हैं, आड़ू जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसकी खेती आज, तो हमेशा मोदी जी को सुनना एक नए प्रकार का अनुभव रहता है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज चित्रकूट में मंदाकिनी और सिहावल नदियों में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस पर अधिक जानकारी देंगे हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी।
3: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सतना जिले के चित्रकूट पहुंचकर बाढ़ आपदा से उत्पन्न परिस्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने प्राचीर मुखारबिंद के पास स्थित आश्रय स्थल पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना और राहत सहायता वितरित करते हुए कहा कि सरकार संकट की घड़ी में आपके साथ है।
1: बाणसागर बांध के अपस्ट्रीम में जलस्तर बढ़ने के कारण आज दोपहर 12 बजे से बांध के 6 गेट खोलकर करीब 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कार्यपालन यंत्री बहुउद्देशीय बाणसागर परियोजना ने बताया कि जल भराव वाले क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने और बांध के डाउनस्ट्रीम तथा नदी क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अब तक करीब 27 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से लगभग 2.7 इंच कम है। FIH पुरुषों हॉकी विश्व कप 2026 के फाइनल में मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला आज शाम बेल्जियम में स्पेन से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीती अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एम्स्टरडैम में कल खेले गए महिला FIH विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। निवाड़ी के ओरछा में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। करीब 14 साल बाद ओरछा में हो रही इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत करीब 350 प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ सशक्तिकरण और वर्ष 2028-29 की चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के सामूहिक श्रवण से हुई। आपको समाचार संक्षेप में। जबलपुर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने रांझी क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया। नर्मदापुरम के सुहागपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत सेमरी हरचंद में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शिविर आयोजित किया गया। आगरमालवा जिले के ग्राम हिरणखेड़ी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय शिविर आयोजित किया गया। मंडला में आज दोपहर से रिमझिम तेज बारिश का दौर जारी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से

0: मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना

0: संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति के कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
1: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
1: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
4: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीही बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर, भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। IMD का कहना है कि

0: 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीती अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम की अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना 1 सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने PM स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्यूरेटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

नमस्कार, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान भी सजाए होंगे, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपका अपना बाल कार्यक्रम मुस्कान। आपके साथ हूं मैं, विभूति। आज के कार्यक्रम में होगी एक प्यारी सी कहानी, एक मजेदार पहेली और बारिश के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर अंकल देंगे कुछ जरूरी टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुस्कान। सबसे पहले सुनाते हैं आपको कहानी। आज की कहानी है आरव की। आरव को पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। एक दिन बारिश रुकने के बाद आसमान साफ हुआ और ठंडी हवा चलने लगी। आरव अपनी पतंग लेकर छत पर पहुंच गया। उसने पतंग उड़ाने की कोशिश की, लेकिन पतंग बार बार नीचे गिर रही थी। पहली कोशिश में पतंग नीचे आ गई, दूसरी कोशिश में पतंग पेड़ पर अटक गई। आरव परेशान होकर सोचने लगा, मुझसे पतंग नहीं उड़ती, मैं इसे कभी नहीं उड़ा पाऊंगा। तभी उसके दादाजी उसके पास आए। उन्होंने कहा, आरव, किसी काम में पहली बार असफल होना हार नहीं है। हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। दादाजी ने उसे हवा की दिशा समझाई और एक बार फिर कोशिश करने के लिए कहा। आरव ने फिर पतंग उड़ाई। इस बार उसने डोर को ध्यान से संभाला। धीरे धीरे पतंग ऊपर उठने लगी और देखते ही देखते आसमान में बहुत ऊंची उड़ने लगी। आरव खुशी से बोला, दादाजी, मेरी पतंग उड़ गई। दादाजी मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, कोशिश की डोर कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी की सीख है कि कोशिश करते रहिए, गलतियों से सीखिए और जल्दी से हार मत मानिए। एक्चुअली हार कभी मत मानिए, क्योंकि कई बार सफलता हमसे बस एक कोशिश ही दूर होती है। अब बारी है आज की मजेदार पहेली की। बच्चों ध्यान से सुनिए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम जितना दूसरों के साथ बांटते हैं वो उतनी ही बढ़ती जाती है? सोचिए। सही जवाब है खुशी। बिल्कुल बच्चों, खुशी ऐसी चीज है जिसे बांटने से वो कम नहीं होती और जितना बांटा जाए उतनी ही बढ़ती जाती है। इसलिए आज आप भी किसी के साथ अपनी खुशी जरूर बांटिए, किसी की मदद कीजिए, किसी को अच्छी बात कहिए या बस किसी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए। ऐसी ही कुछ पहेलियां हम आपसे पूछते हैं जो आपके दिमाग की बत्ती को जला देंगी। बच्चों बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद गीली होती है लेकिन दूसरों को सुखाती है? नहीं समझ आया? वो है तौलिया। चलिए एक और पूछते हैं। मैं बारिश में आता हूँ, आसमान में छाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? जवाब है बादल। बच्चों एक और पहेली का जवाब दीजिए। मैं जितना बढ़ता जाता हूँ उतना ही दिखाई कम देता है। जवाब अंधेरा। अच्छा ये वाली कोशिश कीजिए। मेरे दांत कई हैं लेकिन मैं खा नहीं सकता, मैं कौन हूँ? जवाब है कंघी। अब वक्त है आज की आखिरी पहेली का। तो बुझिए, मेरे चार पैर हैं लेकिन मैं चल नहीं सकता, मैं कौन हूँ? जवाब है आपकी मेज। जी हाँ बच्चों, ये छोटी छोटी पहेलियाँ हैं जिन्हें एक दूसरे से पूछकर आप भी एक दूसरे के दिमाग का

0: टेस्ट ले सकते हैं। बच्चों, बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं, हरियाली और ढेर सारी मस्ती लेकर आता है। बारिश में कागज की नाव चलाना हो या खिड़की से बारिश की बूंदों को देखना, मॉनसून का अपना ही मजा होता है। लेकिन मस्ती के साथ ही हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बारिश के मौसम में साफ पानी पीना, हाथों की सफाई रखना, खाने पीने की चीजों को लेकर सावधान रहना और मच्छरों से बचाव करना बहुत जरूरी है। और इन्हीं जरूरी बातों के बारे में आपके लिए एक खास संदेश लेकर आए हैं डॉक्टर दीपक वर्मा। तो चलिए सुनते हैं कि बारिश के मौसम में स्वस्थ कैसे रहा जाए।
1: बच्चे चूंकि मानते नहीं हैं, बच्चे पानी में खेले बिना नहीं मानते, तो हमें उनको एकदम से नहीं रोकना है। लेकिन ये है कि अगर जो बच्चे थोड़े से भी बीमार हैं पहले से, तो उनको जरूर हम रोक सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे खेलना चाहते हैं तो उनको थोड़ा समय निर्धारित करना पड़ेगा। ये नहीं कि बहुत देर तक खेल रहे हैं, नहीं तो बच्चों में क्या है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। खांसी, जुकाम, बुखार, बच्चों को हैंड वॉशिंग हमें अच्छे से समझाना है कि बच्चे जो भी खाना खाएं तो हाथ धोकर ही खाएं। बच्चों को खानपान में संतुलित आहार देना आवश्यक है, जिसमें कि वसा, प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स और फैट होना जरूरी है, जिसमें कि हरी सब्जियां हैं, मेवे हैं, अनाज है, साबुत दालें हैं और अंकुरित चने या दालें हैं। ये सारी चीज़ें हम बच्चे की डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा दूध और दही, जो कि कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं, उनको भी हम अपनी संतुलित आहार में शामिल कर सकते हैं। पत्तेदार सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर उनको एक रनिंग टेप वाटर में अच्छे से तरीके से कुछ समय के लिए पानी में, साफ पानी में रखकर फिर अच्छे से उनको उबाल कर फिर हम जो है खाने के लिए उनको उपयुक्त बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस मौसम में हम बिल्कुल पूरी तरीके से खाना बंद कर दें। हाँ, ये है कि हमें साफ स्वच्छ और बिल्कुल फ्रेश सब्जियां जो हमें मिलती हैं, वो उनका ही सेवन हमें करना चाहिए। घर में बना साफ स्वच्छ खाना, संतुलित खाना बिल्कुल हम बच्चों को देना ही चाहिए और सभी उम्र के लोगों को संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। मानसून में विशेषकर हमें हल्दी, अदरक, गुड़ वाला गर्म दूध शाम को पीना चाहिए, जिससे कि संक्रमण से बचाव होता है। मानसून में मच्छर जनित रोग हो जाते हैं, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, पानी जो गंदे पानी पीने की वजह से भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचाव के लिए पहले तो साफ पानी का सेवन करना चाहिए और बच्चों में भी हमें इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए कि वो हाथ धोकर ही भोजन करें, तो इससे बीमारी का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मानसून में हमें विशेषकर ये सावधानी, हमें घर के आसपास साफ स्वच्छ वातावरण रखना चाहिए कि कहीं पानी जमा ना हो, कहीं मच्छर ना पनपें, और हमें साफ स्वच्छ तरीके से हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। इसके अलावा साफ पानी पीना चाहिए।
0: तो प्यारे बच्चों, आपने सुने डॉक्टर दीपक वर्मा के ये जरूरी टिप्स। उम्मीद है आप इन बातों को जरूर याद रखेंगे और अगर भूलने का डर हो तो अभी जाके अपनी मम्मी को बता दीजिए और अपने परिवार के साथ भी साझा करिए। बारिश का खूब आनंद लीजिए, लेकिन अपनी सेहत और साफ सफाई का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हेल्दी रहेंगे तभी तो मॉनसून मस्ती करेंगे। तो बच्चों, आज के मुस्कान में हमने सुनी ये प्यारी कहानी, एक मजेदार पहेली और मानसून में स्वस्थ रहने के टिप्स भी जाने। अब मुस्कान के आज के सफर को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो आपके चेहरे पर एक बार और मुस्कान ले आएगा। तो आवाज को थोड़ा बढ़ा लीजिए और झूमिए इस गीत के साथ।

बच्चों, इसी प्यारे से गीत के साथ अब आज के मुस्कान कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत। आज का मुस्कान कार्यक्रम आपने सुना अपनी दोस्त विभूति के साथ। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई जानकारी और ढेर सारी मस्ती के साथ। तब तक खूब पढ़िए, खूब खेलिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

ये था बच्चों का कार्यक्रम और ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति थी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: ये गीत था फिल्म रफू चक्कर से, और इसके लिए आवाज थी शैलेंद्र सिंह आशा भोसले की, गीतकार थे गुलशन बावरा, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में युवाओं से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और रचनात्मक प्रयासों से समाज को जोड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए महिला उद्यमिता और बेटियों के अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदारी जैसे प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि भारत में बने उत्पादों पर गर्व करना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज चित्रकूट में मंदाकिनी और सिंहावल नदियों में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बाणसागर बांध के अपस्ट्रीम में जलस्तर बढ़ने के कारण आज दोपहर 12 बजे से बांध के 6 गेट खोलकर करीब 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लोगों को सतर्क रहने और बांध के डाउनस्ट्रीम तथा नदी क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग अर्थव्यवस्था को गति देने और रोजगार के अवसर पर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौसम विभाग ने आज सीधी, सिंगरौली, उमरिया और बालाघाट सहित 10 से अधिक जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अब तक करीब 27 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से लगभग 2.7 इंच कम है। और FIH पुरुषों हॉकी विश्व कप 2026 के फाइनल में आज रात 8 बजे से बेल्जियम में मौजूदा चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आपको बता दें आज शाम की सभा के कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान होगा। 5:33 पर शाम 6 बजे सुनिए फिल्म संगीत।

7:30 पर आज शाम की सभा में आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

मीडियम वेव 1593 किलो हर्ट्ज पर, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 3:02 हुए हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम की सभा में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुर का योगदान है। पहले सुनिए विनोद कुमार सेन और साथियों के स्वर में कृष्ण भजन।

0: और अब सुनिए लोक भजन मोहन सिंह यादव और साथी के स्वर में।
1: अरे मोहन।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान था। आप सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आप सुनिए अशोक कसेरा के स्वर में गजल।

इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये डीडीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।

0: कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना, ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या पचपन, व्हीलचेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है।
1: योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रति पल उसका बेनिफिट देता रहता है।
0: आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है और लीजिए आप सुनते हैं चित्रपट संगीत।

जमाना दीवाना, इस फिल्म का भी आपने गीत सुना कुमार सानू अलका याग्निक के स्वर में। गीतकार थे समीर, संगीत था नदीम श्रवण का।

0: पार्टनर फिल्म का गाना अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी शान श्वेता पंडित की। गीतकार थे शबीर अहमद, संगीत था साजिद वाजिद का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन ताशकंद में योगा फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान द्वारा आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रपति शावकत मिर्जियायेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश उन्नत साझेदारी के ढांचे के भीतर ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण, महिला उद्यमिता और बेटियों के अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदारी जैसे प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि भारत में बने उत्पादों पर गर्व करना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज चित्रकूट में मंदाकिनी और सिहावल नदियों में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बाणसागर बांध के 6 गेट खोलकर आज दोपहर 12 बजे से करीब 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लोगों को सतर्क रहने और नदी क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। नेपाल बाढ़ प्रभावितों के लिए भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है। 57 टन से अधिक राहत सामग्री पहले ही भेजी जा चुकी है और एम्स भोपाल ने व्हाट्सएप स्वास्थ्य सेवा प्रारंभ की है। इसके माध्यम से अपॉइंटमेंट लेने से लेकर जांच रिपोर्ट पाने तक 10 सुविधाएं मिल सकेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहाणा।

जय झूलेलाल। सिंधियत जी सरहाण में हाजिर आयां तव्हांजी रेडियो साथी मां चित्रा चेलानी। तव्हां सभिनी खे मुंहिंजी सिक भरी नमस्ते। दोस्तों, ॾिण वार जा ॾींहं हली रहिया आहिनि ऐं रखड़ीअ खां पोइ सभिनी सिंधी सुहागणनि खे इंतज़ारु रहंदो आहे तीजड़ीअ जो। तीज सावण जी पख ऊंदा हो, विर्त तीजड़ीअ वारो, जेको रखंदो मनुष्य सुभागो, थींदो सो सोभारो। हथनि में मेहंदी रचाए असुर करे सिज उभरण खां चंड उभरण ताईं विर्त रखी मुड़स जी वॾी हयाती ऐं खुशहालीअ जी कामना जो ॾिणु। ऐं इन खां पोइ ईंदी सप्तमीअ जे ॾींहुं वॾी थदड़ी, मिठी लोली, चहरी कोकियूं, ॾही वड़ा, चोपा ठाहिण ऐं माता जा आसीस घुरण। त दोस्तो, अचो अॼु कार्यक्रम में ॿुधूं था भगवंती नावाणी जी आवाज़ में ही ओराणो।

साथियों, तव्हां ॾिठो हूंदो त असांजी संस्कृति में ॾिण वारनि ते नारेल जो वॾो महत्व हूंदो आहे, पोइ चाहे भॻवान खे चाढ़णु हुजे या सेसन में विरिहाइणो हुजे। पर छा तव्हांखे ख़बर आहे त नारेल जी खेती जे वाधारे सिहत लाइ नारेल जे फ़ाइदनि ऐं नारेल जे अर्थव्यवस्था में महत्व बाबति सुजाॻी आणण लाइ हिकु ख़ासि ॾींहुं मुक़ररु कयल आहे? हा, 20 सितंबर विश्व नारेल दिवस करे मल्हायो वेंदो आहे। नारेल जो पाणी हिकु प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट आहे ऐं इन जो तेल चमड़ी ऐं वारनि लाइ तमामु फ़ाइदेमंद आहे। नारेल जा रेशा बि नोड़ी, पायदान ऐं हस्तशिल्प ठाहिण लाइ कमु ईंदा आहिनि। त नारेल जो वणु तटीय इलाक़नि में मिटीअ जो कटाव रोके पर्यावरण संतुलन ठाहिण में मददगार थींदो आहे। प्रकृतिअ जे हिन अमूल वरदान खे सहेजणु तमामु ज़रूरी आहे। इन सां गॾु ई 1 सितंबर खां 7 सितंबर ताईं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह माना नेशनल न्यूट्रिशन वीक बि मल्हायो वेंदो आहे, जंहिंजो मक़सदु आहे संतुलित आहार ऐं सही पोषण बाबति सुजाॻी आणणु। छो त पोषण इंसान जे सही शारीरिक ऐं मानसिक विकास जी बुनियादु आहे। अॼु जे दौर में जॾहिं जंक फूड ऐं खाधे पीते जी बिगड़ियल आदतनि जे करे ॿारनि खां वठी वॾनि ताईं हर वर्ग जी हिकु वॾी आबादी बीमारी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, मोटापे या कुपोषण जे जाल में फाथी पई आहे, त संतुलित आहार बाबति सुजाॻी तमामु महत्व वारो विषय थी वेंदो आहे। दाल, साई भाॼियूं, फल, खीर, ही सभई शयूं हिकु स्वस्थ शरीर लाइ तमामु ज़रूरी आहिनि। संतुलित आहार शरीर जी रोग प्रतिरोधक क्षमता माना इम्यूनिटी में बि वाधारो कंदो आहे। सही पोषण देश रोशन, इहो ही हिकु स्वस्थ ऐं प्रगतिशील पंगत जी बुनियादु हुअणु खपे। दोस्तों, कार्यक्रम में हाणे ॿुधंदासीं भगवंती नावाणी ऐं साथियुनि जी आवाज़ में ही गीत।

0: दोस्तों, आकाशवाणी भोपाल में पंहिंजियूं कुझु कविताऊं पेश करण लाइ अॼु असां नींड ॾिनी आहे श्री अशोक मनवानी जी खे। अशोक जी न रुगो साहित्य प्रेमी आहिनि पर पत्रकार, कहाणीकार, नाटक कलाकार ऐं समीक्षक बि आहिनि। श्री अशोक मनवानी जी कविताऊं ऐं कहाणियूं हमेशह ही सामाजिक मसइलनि सां ऐं सिंधी संस्कृतिअ सां लाॻापो रखण वारियूं हूंदियूं आहिनि। ही कहाणियूं ऐं कविताऊं कॾहिं तव्हांखे गुदगुदाईंदियूं त कॾहिं तव्हांजे मन में सिंधियत जा तार छेड़ींदियूं ऐं सदाई तव्हांखे सोचण लाइ ज़रूरु मजबूर कंदियूं। अचो त ॿुधूं था अशोक मनवानी जी कविताऊं।
1: नमस्कार, जय झूलेलाल। मां कुझु कविताऊं ॿुधाए रहियो आहियां।

0: पहिरीं कविता आहे बिहनि जी बहार। पहिरीं त बिह पंहिंजी मुंद में ई लहंदा हुया। भाॼीअ वारो चवंदो हो, अञा बिह किथे आया आहिनि। पर केतिरी सुठी ॻाल्हि आहे, हाणे 12 महीना बिह मिलणु लॻा आहिनि। बिहनि खे ॾिसी मूंखे ईअं महसूसु थींदो आहे, ॼण सॼे संसार बिहनि खे मान्यता ॾेई छॾी आहे। घर घर में बिह पटाटा रस में, बिह तरियल थालीअ में, बिहनि जा स्वादी पकौड़ा चटणीअ सां खाधा था वञनि ऐं सिंधी पंहिंजे बिहनि ते रोज़ु फ़ख्रु कंदा था वञनि। जेके बिह कोन था खाइनि, उहे बि पुछंदा आहिनि सदाईं, कीअं ठहंदी आहे भाॼी, ॿुधायो साईं। बिह भले मिलनि था महांगा, पर करणा आहिनि ख़रीद, छाकाणि आहिनि इहे पंहिंजा ऐं असांजा। जेकॾहिं वधीक ॾींहं नथा ठहनि बिह, पोटरा पोटरियूं बि मछरी था वञनि, कनि था ॾाॾीअ खां सवाल, छो न आया आहिनि बिह घर असांजे यार, आख़िर कॾहिं ईंदी वरी बिहनि जी बहार। ॿी कविता आहे, थोरी गंभीर विषय आहे, स्वास्थ्य जे हिकिड़े रोग ते केंद्रित आहे। झूले ते ॿार, कविता जो सिरो आहे झूले ते ॿार। कॉलोनीअ जे बाग में झूले ते कुझु ॿार झूली रहिया आहिनि। ॿारनि जे निणनि में ख़ुशी आहे, कुझु सपना बि अथनि। ॿार पाण में खिल मश्करी कंदे, ॻाल्हाईंदे विंदुर करे रहिया आहिनि। हिकु ॿार रुॻो सभिनी ॿारनि खे झूलंदे ॾिसी फ़क़ति पंहिंजी जॻहि उदास बीठो आहे। अकेले बीठल ॿार जी माउ उन खे संभाले रही आहे, किथे ॿार खे खेॾंदे धकु न लॻी वञे। नंढे ॿार खे धकु लॻी वियो त पोइ रतु निकिरी ईंदुसि ऐं रतु लाॻीतो पियो वहंदो। माउ वीचारु कंदी आहे त ॿार खे धकु लॻो ऐं रतु वहियो त मां छा कंदसि, हिन ॿार जे शरीर में त रतु ठहंदो ई न आहे। हर महीने ॿियनि जे ॾिनल रत ते ॿार जी ज़िंदगी हलंदी आहे। इहो ॿार हिकु सिंधी ॿार आहे। ॿार खे थैलेसीमिया बीमारी आहे। थैलेसीमिक सिंधी ॿार ॿियनि ॿारनि खे झूले ते झूलंदे बसि ॾिसी रहियो आहे। मुंहिंजी टीं कविता आहे, जंहिंजो सिरो आहे वरसो। वरसे में मिलियल बीमारियुनि खे मूं ग़लति कोन मञियो आहे, तकलीफ़ न सम्झो आहे। वरसे में मिलियल बीमारियुनि खे मूं ग़लति कोन मञियो आहे, तकलीफ़ न सम्झो आहे। मूं वरसे में मिलियल हर ॻाल्हि खे दिलि सां मञियो आहे, मंज़ूरु कयो आहे। मूं वरसे में मिलियल हर ॻाल्हि खे दिलि सां मञियो आहे, मंज़ूरु कयो आहे। मुंहिंजी माउ चवंदी आहे त तूं असुलु पीउ वांगुरु खंघंदो आहीं। मूंखे जॾहिं लाॻीती हलंदी आहे खंघि, माउ उदास थी वेंदी आहे। मूंखे जॾहिं लाॻीती हलंदी आहे खंघि, माउ उदास थी वेंदी आहे, पर मुंहिंजे चेहरे ते कोन ईंदी आहे का उदासी या परेशानी। वरसे में घर दुकान जायूं ॿनियूं मिलंदियूं आहिनि त को बि उदास कोन थींदो आहे। वरसे में घर दुकान जायूं ॿनियूं मिलंदियूं आहिनि त को बि उदास कोन थींदो आहे। बाज़ारि में मार्केट में सवलाईअ सां मिली वेंदी आहे खंघि जी दवा। खंघंदे खंघंदे मां यादि कंदो आहियां पंहिंजे पीउ खे ऐं खंघण जे साॻे सुर खे, साॻे आवाज़ खे। खंघंदे खंघंदे मां यादि कंदो आहियां पंहिंजे पीउ खे ऐं खंघण जे साॻे सुर खे, साॻे आवाज़ खे। इन खंघ में महसूसु कंदो आहियां पीउ जी आसीस खे। मुंहिंजी कविता जो सिरो आहे उहो बांदर। उहो बांदर नेशनल हाईवे ते ईंदे वेंदे माण्हुनि खां चणा ऐं ॿियूं खाइण जूं शयूं वठी पंहिंजो पेट पालींदो आहे। उहो बांदर हाईवे ते ईंदे वेंदे माण्हुनि जे हथ मां चणा ऐं ॿियूं शयूं वठी पंहिंजो पेट पालींदो आहे। घणाई भेरा बांदर जी ज़िंदगीअ ते बि सुवाल बीह रहंदो आहे। घणाई भेरा बांदर जी ज़िंदगीअ ते बि सुवाल बीह रहंदो आहे। कंहिं तेज़ रफ़्तार में ईंदी गाॾीअ जे हेठां अची करे ओचितो बांदर जो मौत बि थी वेंदो आहे। कॾहिं तेज़ रफ़्तार सां ईंदड़ गाॾीअ जे हेठां अची कॾहिं कंहिं बांदर जो मौत बि थी वेंदो आहे, पर कुदरत उन खे जेका मस्ती ऐं ठिंग टप ॾिनी आहे उन कुदरती सुभाउ जे करे बांदर खे मिलंदी आहे गैर कुदरती मौत। बांदर खे पंहिंजे कुदरती सुभाउ जे करे कॾहिं कॾहिं मिलंदी आहे गैर कुदरती मौत। मुंहिंजी आख़िरी कविता आहे कारी छोकिरी। हूअ छोकिरी MSc जी टापर हुई पर थोरी कारी हुई। हूअ छोकिरी MSc जी टापर हुई पर थोरी कारी हुई। मङणो अञा बि थियुसि कोन, पंटीहनि में बि कुंवारी हुई। मङणो अञा बि थियुसि कोन, पंटीहनि में बि कुंवारी हुई। हरू भरू कारी बि कोन हुई, पर हा कुझु सांवरी ज़रूरु हुई। कंहिं जो रंग कणकीलो आहे त कंहिं मञो गुणवान त आहे पर कद में कुझु घटि आहे। कंहिं चयो रंग कणकीलो आहे त कंहिं चयो गुणवान त आहे पर कद में कुझु घटि आहे। जेतिरा माण्हू ओतिरियूं ॻाल्हियूं, संसार अजब आहे काॾे वञनि नियाणियूं। जेतिरा माण्हू ओतिरियूं ॻाल्हियूं, संसार अजब आहे काॾे वञनि नियाणियूं। जंहिं ॾींहुं छोकिरी बणिजी वई वॾी साइंटिस्ट, जंहिं ॾींहुं छोकिरी बणिजी वई वॾी साइंटिस्ट ऐं मिलियुसि पैकेज़ वॾो, ऐं मिलियुसि पैकेज़ वॾो, केतिरा ई कुंवारा छोकिरा करण लॻा प्यार। अंटार्कटिका जी मुसाफ़िरीअ ते साण वञण लाइ थी विया तयार। जंहिं ॾींहुं छोकिरी बणिजी वई साइंटिस्ट ऐं मिलियुसि पैकेज़ वॾो, केतिरा ई कुंवारा छोकिरा करण लॻा प्यार। अंटार्कटिका जी मुसाफ़िरीअ ते साण वञण लाइ थी विया तयार। महिरबानी।
1: महिरबानी अशोक जी हिन बहितरीन पेशकश लाइ। साथियों, हिकु सचो गुरु या शिक्षक इंसान खे रुगो किताबी ज्ञान ही नथो ॾे, पर सही ग़लति में फ़र्क़ु करणु बि सेखारे थो ऐं पंहिंजे शिष्य जो चरित्र निर्माण बि करे थो। अहिड़े ही हिकु महान शिक्षक ऐं भारत जे पूर्व राष्ट्रपति श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जयंती 5 सितंबर खे शिक्षक दिवस करे लेखियो वियो आहे। हीउ ॾींहुं गुरुअनि जे समाज में योगदान ऐं उन्हनि पारां ॾिनल मार्गदर्शन लाइ उन्हनि जा थोरा मञण जो ॾींहुं आहे। हिन शिक्षक दिवस असीं बि पंहिंजे गुरुअनि खे यादि कयूं, उन्हनि जा थोरा मञूं ऐं उन्हनि पारां ॾेखारियल वाट ते हलण जो पह कयूं। इन्हीअ सां गॾु ही 5 सितंबर महान समाज सेविका मदर टेरेसा जी पुण्य तिथि बि आहे। मदर टेरेसा जी याद में ऐं उन्हनि पारां समाज लाइ कयल सेवा खे मान ॾियण लाइ ही ॾींहुं अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस करे मल्हायो वेंदो आहे। दान रुगो धन जो न थींदो आहे, कंहिं बुखे खे मानी खाराइण, कंहिं ज़रूरतमंद खे लटा ॾियणु, कंहिं ॿार खे सिखिया ॾियणु या निस्वार्थ भाव सां कयल काई बि मदद दान आहे। पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कंहिं भले कम में लॻाइणु, उहो बि दान आहे। मदर टेरेसा जो मञणु हो, ज़रूरी न आहे त असां सभई को वॾो कमु कयूं, पर नंढा नंढा सुठा कम कयूं, उहो ज़रूरी आहे। त हिन दान दिवस तव्हीं बि कंहिं न कंहिं रूप में कंहिं ज़रूरतमंद जी मदद ज़रूरु कजो। दोस्तों, हाणे कार्यक्रम में ॿुधंदासीं आज़ादु सूफ़ी जो ही कलामु।

साथियों, इन्हें सां गड़ी असांजे अज जे कार्यक्रम जो समय बि समाप्त थो थे। उम्मीद आहे त तव्हां खे कार्यक्रम ज़रूर वणियो हूंदो। पंहिंजा वीचार, पंहिंजा राया असां ताईं ज़रूर पहुचाईंदा आकाशवाणी भोपाल जे फेसबुक पेज ज़रिए। हाणे पंहिंजी रेडियो साथी चित्रा चेलानी खे ॾींदा इजाज़त। तव्हां सभई स्वस्थ रहो, मस्त रहो ऐं सदाई सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा रहो। वरी गॾिजो, सब जो भलो।

0: डीटीएस के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए आप सुनते हैं संग्रहालय से इस कार्यक्रम में धारावाहिक जमुनिया की 12वीं कड़ी।
1: जमुनिया की कहनी सुनो मेरे भैया, जमुनिया की करनी गुनो मेरे भैया। जैसे बड़ी है जमुनिया जी आगे, वही राह तुम भी ए भैया, वही राह तुम भी चुनो मेरे।
2: अभी तक आपने सुना है कि जमुनिया अपने पति की आत्महत्या के बाद देवर करण द्वारा घर से निकाल दी जाती है। देवर करण जमुनिया के पति रतन की पट्टे वाली जमीन भी हथिया लेता है और उसका बेटा भी। जमुनिया पास के गांव जाती है जहां झुल्लन उसे सहारा देते हैं। बांस की डलिया पंखे बनाकर गुजारा करने लगती है जमुनिया और सारे खाली समय में गुरुजी के पास जाकर पढ़ने लगती है। जल्दी ही वो पढ़ना लिखना सीख जाती है। उधर करण को भी दीवान कर्ज के जाल में फांस लेता है और इसी के चलते उसकी पत्नी और जमुनिया के बेटे गोलू, जिसे करण ने हथिया लिया था, वो उन दोनों को बंधुआ मजदूर बना देता है। इस बीच इन गांवों की सरपंची की सीट महिला सीट घोषित हो जाती है। पहले से सरपंच बना दीवान अब अपनी पत्नी को सरपंच बनाने के लिए पर्चा भरवा देता है तो उधर गांव वाले मिलकर जमुनिया को इसी चुनाव का उम्मीदवार बना देते हैं, जिस पर दीवान बड़ा क्रोधित होता है पर चुनाव के समय की नजाकत को समझकर चुप रहता है। अब आगे
3: अरे चिरैया, चिरैया।
4: हाँ माँ।
3: कहाँ हो तुम?

0: है अम्मा, हम यहीं तो है।
1: बेटा घर में ही रहना, हम गुरुआइन को देखाती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ काम वाम घर का होगा तो वो भी करके आएंगी, गुरुजी को भी थोड़ी मदद हो जाएगी, ठीक है?
0: अच्छा अम्मा ठीक है, तुम जाओ, हम घर ही पर रहेंगे।
1: अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना बेटा।
0: हाँ।
2: रुको रुको रुक, वो देखो ससुरी आवत है।
3: हाँ हाँ,
2: अभी बनाते हैं इसको सरपंच।
3: रुक रुक रुक, छोड़ मुझे, पकड़ के रख ससुरी को, छोड़, अभी एक और जमाता हूँ।
4: अरे भाई बस, वो बस कर, बड़बड़ा जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी भैया। अबे काम बेकार जाएगा, भाग लो, भाग लो।
5: बेटा का हुआ रे चमुनिया, अरे अरे का हो गया रे बिटिया, तुम्हारे कपार से तो खून गिर रहा है बेटा।
6: घबराओ मत बाबा, माँ हम ठीक है, थोड़ा साफ कपड़ा लाओ।
5: हाँ।
6: बांध लेंगे।
5: हाँ।
6: ये लो, श्रीपत भैया भी आ गए।
7: ये कौन लोग थे जमुनिया दीदी, इन्होंने तुम्हें क्यों मारा? जरूर ये दीवान के आदमी होंगे, तुम्हारी सरपंची के पर्चा भरने से तिल मिला गया है दीवान।
5: अरे हाँ भैया, ठीक ही कह रहे हो। अरे जाए दो बेटी, इस चुनाव उनाव से तो तुम दूर ही हो जाओ, गांव ससुरा ऐसा ही है, सब दीवान के ही पांव चाटते रहेंगे। अरे बेटा श्रीपाद, तुम जमुनिया का गांव दबा कर रखो।
7: हाँ।
5: और हम बेटा साफ कपड़ा और कोनू दवाई मलहम वगैरह ले आते हैं। हैं? हाँ।
7: आज जाओ कक्कर, जमुनिया का ख्याल हम रखेंगे, लगता है बहुत खून बह गया है।
6: चिंता मत करो भैया, जमुनिया की रगों में अभी बहुत खून है, कितना बहाएगा ये दीवान।
5: लो श्रीपाद भैया, हम दवाई और पट्टी ले आए।
7: जल्दी बांधो कक्का, थोड़ा सा ये लो, लाओ कक्का मैं बांध देता हूँ। आप सिर को पकड़ लीजिए।
5: हाँ ठीक है,
7: लाइए मुझे दीजिए।
5: ये लो बेटा, ये जमुनिया बेटा,
7: बस बस बस बस, हो गया जमुनिया,
5: थोड़ी हिम्मत रख बेटा,
7: बस हो गया, बन गई पट्टी, बन गई,
5: बन गई,
6: अच्छे से बेधड़क होकर बांधो। मैंने हिम्मत रखना सीख लिया है, घबराओ मत।
7: लो दीदी, हो गई मलहम पट्टी। क्या दीदी, सरपंची का चुनाव लड़ोगे कि नहीं?
6: भैया अब तो लड़ना ही पड़ेगा।
1: प्रणाम गुरुजी।
8: प्रणाम प्रणाम, आयुष्मान जमुनिया। अरे अरे, ये सिर में क्या हो गया बेटा? अरे अरे, अभी कैसे, पढ़ाई तो हो नहीं रही है आजकल चुनाव के मारे?
1: ये चुनाव के पूर्व का प्रसाद है गुरुजी, मैं अभी पढ़ने नहीं आई हूँ, पता लगा गुरुवाइन बीमार है तो देखने आ रही थी। रास्ते में कुछ लोग मिल गए और ये घाव दे गए।
8: अरे अरे अरे अरे अरे अरे, रात बिरात घर से ना निकला करो जमुनिया, तुम चुनाव लड़ रही हो तो सजग रहना पड़ेगा तुम्हें। पर हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि अगर समर में उतर ही पड़ी हो तो पीछे मत हटना।
1: अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं है गुरुजी, आपकी शिष्या हूं, हर मुसीबत रात दिन तो देखकर आती नहीं, जब भी आए सामना तो करना पड़ेगा ही ना।
8: अच्छा अच्छा भाई, जाओ जाओ, गुरुवाइन को देखा, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी हरारत थी, चक्कर आ गया था, अब ठीक है।
1: गुरुवाइन माई, प्रणाम, कैसी है?

0: है? आओ जमुनिया आओ, इतने वक्त हम ठीक हैं।
1: वो अभी पता लगा, चुनाव लड़वा रहे हैं गांव वाले, उसी में लगी रही हूं।
0: तुम्हें कामयाबी ही मिलेगी जमुनिया, मेरी चिंता मत करो, अब ठीक हूं मैं।
1: आप लोगों के लिए कुछ रोटी सेक देती हूँ।
0: अरे नहीं, मेघा के घर से खाना आ गया है, रोटी सेकने की जरूरत नहीं है। तू आराम से बैठ, दुनिया भर की चिंता तुझे रहती है, अपनी फिक्र नहीं रहती। अरे राम, ये सिर कहाँ से फोड़ लाई तू?
1: अरे रास्ते में अंधेरा था, एक पत्थर से टकराकर गिर गई।
0: अरे
1: अब ठीक हूँ मैं। आप भी चिंता मत करो, आप आराम करो। और हाँ, वो बर्तन वगैरह?
0: अरे नहीं नहीं, सब धुले रखे हैं, तू तो बस एक गिलास पानी पिला दे लाकर।
1: लभी लाती हूँ चाची। हाँ ये लो, मैं तो अब से आपको चाची ही कहूंगी।
0: ये हुई ना बात, चल अच्छा है, चाची ही अच्छा लगेगा मुझे।
1: जी चाची।
2: क्या हुआ रे, लोगों को बुला के लाया?
3: गया था बुलाने मालिक, पर सब अकड़ रहे हैं।
2: हैं? कैसी अकड़ रे?
3: मालिक कह रहे हैं हम वहां नहीं जाएंगे। दीवान जी से कहना जो कहना है यहीं आकर कहें सबके बीच।
2: अच्छा, ये भाव है इन लोगों का, आसार अच्छे नहीं लगते। अरे सालों को जलाकर मार डालूंगा। हाँ
4: अभी गुस्से का समय नहीं है मालिक, थोड़ा संयम रखिए। लगता है जमुनिया को मारने पीटने का संदेश अच्छा नहीं गया है लोगों में। मार पीट तभी तक कारगर रहती है जब तक डराती है, नहीं तो लोग ढीठ बन जाते हैं और बाजी पलट जाती है मालिक।
2: हाँ मालिक, ठीक है, तो जाने तो चुनाव, तब सबको देख लूंगा।
4: हाँ।
2: चलो अच्छा, वहीं चलते हैं उन लोगों के पास।
4: हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए, आइए चलिए मालिक, चलिए।
2: भाई अब हम आ गए हैं भाई, आप लोगों का संदेशा मिला कि आप लोग हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो भाई हम आ गए। अरे भाई ठीक भी है, अरे भाई जिसकी जरूरत है वही ना आएगा।
3: सही बात
2: है। भाई आपको मेरी जरूरत होती है तो आप आते हैं, आज भाई मुझे आपकी जरूरत है तो मैं आ गया आप लोगों के बीच।
4: ऐसी बात नहीं है वाली।
2: अरे ठीक है भाई ठीक है, कभी कभी आप लोग भी सोचते ही होंगे कि दीवान तो आता नहीं, हमेशा अमीर लोगों को बुलाता है। अरे भाई तो कभी कभी मुझे भी आना ही चाहिए आप लोगों के बीच, तो भाई लोगों मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच। और हाँ भाई, किसी को कुछ कहना हो तो कहे, नहीं तो भाई हम बोले। हाँ भाई, हाँ बोले बोले, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए बोलिए।
5: अरे मालिक, हमने सुनी है कि जमुनिया के सरपंच जी लड़ने से आप कुछ नाराज है, है? और आपके आदमियों ने उस पर हमला भी करा, जमुनिया को मारा।
2: गलत बात, बिल्कुल गलत बात, कि हमें बदनाम करने की साजिश है। अरे भाई ये प्रजातंत्र है, जो चाहे चुनाव लड़े, कोई रोक सकता है क्या? हैं? अरे भाई गांव की तरक्की का सवाल है, वो चाहे हम करें हमारे

अरे मालकिन करें या फिर जमुनिया जी करें? भाई हम तो चाहते हैं विकास हो बस।

0: की मालकिन, तो तुम्हारे इसी टोले में दो हैंड पंप लगवाएंगे। हाँ, और यही की गलियों में खड़ंजे भी लगेंगे। हाँ,
1: खड़ंजे यार।
0: और आप सबके खेतों की जुताई हमारे ट्रैक्टर से होगी, फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में।
1: अरे वाह, जुताई वो भी ट्रैक्टर से यार, मुफ्त में।
0: बस भैया, आप सबको अपनी मालकिन का ख्याल रखना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: लो साहब, सपने दिखाने फिर आ गए। खा लो लड्डू, खा लो, बाद में खाना लठ। देखो
3: कौन है रे, जब भुग्गा लगता है। ले चलो इसे, अच्छे से समझाते हैं लड्डू कैसे होते हैं। अरे ये भुग्गा है दीवान जी।
0: क्या कर रहे आप, ये भुग्गू अपना ही आदमी है।
3: नहीं, ये भुग्गा है दीवान जी, भुग्गा।
0: अरे भाई, फुग्गा फग्गू एक ही बात है। अरे इसे किसी ने बहका दिया है, बाद में खुद समझ जाएगा। छोड़ दो उसे, छोड़ो, सब देख रहे हैं।
3: दीवान जी के कहने पर छोड़ रहा है तुझे? हाँ, अगर जमुनिया को वोट दिया तो तेरी झोपड़िया में आग लगा देंगे, समझा? और हाँ, पता भी नहीं लगेगा कि तू कहाँ गया। सुन, सबको समझा देना। मालिक के ईंट के भट्टे पर किसी को काम नहीं मिलेगा, समझो। भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग, भाग

0: जयंत, जयंत उठो भाई।
1: अरे क्या हो गया मेघा?
0: अरे शिल्पी हाँ, चलो हाँ, बोलो। आज से हमें चुनाव प्रचार के लिए निकलना है।
1: हाँ, हाँ? हाँ।
0: देखो जमुनिया बहन को लेकर हम सबसे पहले घर घर चलेंगे।
1: हाँ, हाँ।
0: लोगों को समझाएंगे।
1: हाँ।
0: छोटी छोटी सभाएं करेंगे।
2: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, चलो भाई, चलो चलो चलो भाई चलो।
3: अरे आप लोग, नमस्ते मेघा बहन।
0: नमस्ते
3: शिल्पी दीदी।
2: हाँ,
3: हाँ जयंत भैया नमस्ते।
1: नमस्ते जमुनिया।
2: नमस्ते जमुनिया।
0: अरे हम लोग तुम्हें लेकर चुनाव प्रचार के लिए निकलने वाले हैं।
1: हाँ,
0: हाँ इसीलिए आए हैं हम।
3: प्रचार के लिए हमारे पास पैसा नहीं है बहन। वो भोपू, स्टेज, हार फूल, और हमें तो भाषण देना भी नहीं आता। चाहे हमसे काम कितना भी करवा लो, वो हम कर सकते हैं।
1: जमुनिया, हम पैसे वाला प्रचार नहीं करेंगे।
0: हाँ,
1: बस घर घर जाएंगे, सबको समझाएंगे और तुम्हारे लिए वोट मांगेंगे।
2: हाँ बहन, इसमें मेहनत लगेगी, पैसा नहीं।
0: हाँ।
3: अच्छा तब तो ठीक है, चलिए।
1: चलो
2: चलो चलो, चलो।
3: ये रहमान भाई का घर है।
0: अच्छा रहमान भाई का।
3: हाँ यही से शुरू करते हैं।
1: हाँ, ये ठीक है।
3: रहमान भाई सलाम।
4: सलामत रहो जमनिया बहन।
3: ये लो कक्का भी आ गए। राम राम कक्का।
5: खुश रहो बेटा, लगता है वोट मांगने निकले हो।
3: पहले तो आप लोग आशीर्वाद दो जीतने का, तब देना वोट।
6: हमारी जेब में क्या आएगा, वो तो कह रही थी कि कंबल, रुपया, खेत की ट्रैक्टर से जुताई मुफ्त में, ये सब।
3: भैया ये सब चीजें तो हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास ये सब तो है नहीं ना। जैसे तुम्हारी हालत वैसे ही हमारी हालत। हम तो गांव तक सड़क लाने की, स्कूल अस्पताल खुलाने की, पानी रोटी की लड़ाई लड़ेंगे। ई खातिर दे सको तो वोट देना, और न देना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, पर अच्छे काम के लिए आशीष तो दे ही सकते हो।
5: ये सब तो ठीक है बिटिया, पर दीवान से बैर को ले।
3: देखो कक्का, दीवान तभी तक

0: ताकतवर है जब तक हम अलग अलग हैं। हम सब लोग मिल जाएं तो दीवान भी कुछ नहीं कर पाएगा।
1: हाँ,
2: बिल्कुल ठीक कह रही है जमुनिया, आप सब एक बार सोच कर तो देखिए।
1: हाँ, सोच कर तो देखिए।
3: देखो भाइयों, जमुनिया बहन आप सबकी सहयोगी है, सबके काम आती है, और जो वो करेगी वो सबके काम भी आएगा, और जो सबसे जरूरी होगा वही सबसे पहले होगा। हम आप सबसे वादा करते हैं कि आपकी आवाज सरकार के पास पहुंचाएंगे, और फिर देखना यहां की हालत जरूर सुधरेगी।
4: जमुनिया बेटी की बात में वजन है भाई लोग, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह हमारे में से है, अपने में से है।
0: दीवान की सरपंची सालों से देख रहे हैं आप लोग, क्या मिला?
5: ठेंगा मिला, धमकी दे रहा था हमारी झोपड़ियां जला देगा जो वोट दीवान की मालकिन को ना दिया तो। गौ कसम, उसको तो वोट नहीं देंगे। हाँ,
0: अरे बुक्का, संभालो अपने आप को, इस तरह गौ की कसम नहीं खाते। उसको वोट मत देना, पर जमुनिया को तो दे सकते हो, है ना?
5: हाँ दीदी, पक्का दीदी देंगे, तुम ही को वोट देंगे। हाँ, देखे कोई क्या बिगाड़ लेता है। हाँ,
0: इसलिए भैया लोग, चुनाव मतदान गुप्त होता है ताकि किसी को पता ना लग सके कि किसने किसको वोट दिया है।
6: ये बात तो है भैया, ये काम सरकार ने वाकई बहुत ही अच्छा करा।
3: अपना वोट देना हमारा अधिकार है भुग्गा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वोट नहीं देते, और इसमें कोई बहादुरी वाली बात नहीं है कि वोट ना दे। बहादुरी इसमें है कि सही आदमी को वोट दें।
0: आज पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है भैया लोगों, आगे बढ़िए और अपने हक की बुनियादी चीजों को इस गांव में ले आइए। छोटी छोटी जरूरतों से ऊपर उठिए, मिलजुल कर रहने की ताकत का फायदा उठाइए, और जमुनिया को अपना वोट और आशीर्वाद दीजिए।
1: भैया लोग, हमें डरना नहीं, लड़ना है। एक तरफ अंधेरा है, हमें अंधेरे के खिलाफ उजाले के लिए लड़ना है। अरे कब तक हम पाँव तले दबे रहेंगे?
7: हाँ, अरे डर डर के बहुत जी लिए भाइयों, अब तो करो या मरो, खुद सोचो और फैसला लो। अब हालात बदलना अपने हाथ में है।
1: हाँ, क्यों भाइयों? अपने हाथ में है।
4: अरे भैया, हम तो इतने सालों में देख रहे हैं, कछु कछु नहीं बदला था, सब जस का तस है, और खराब बद से बदतर है।
1: अरे दादा, सरकार तो बहुत सारी योजनाएं बनाती है इसलिए कि यहाँ के हालात बदले, बहुत सारा पैसा देती है कि यहाँ की जिंदगी बेहतर हो, पर दीवान जैसे बिचौलिए सब इधर उधर करके खा जाते हैं। हालात कैसे बदलेंगे, सुख सुविधाएं कैसे आएंगी, आप ही बताइए। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं, अब समय आ गया है, बदलिए ये सब।
0: अच्छा, आप लोगों को प्रणाम, अभी समय है, थोड़ा सोच विचार कर वोट दीजिएगा।
8: हाँ भैया, नमस्ते। और कैसे? बढ़िया, आज तो नई धोती पहन के आए।
9: भैया एक बात बताओ, ये क्या सोचते हो भैया, अब की चुनाव में कौन जीती?
8: कुछ कह नहीं सकते भैया।
9: कह?
8: हाँ, अब पहली बार लग रहा है कि टक्कर तो है।
6: टक्कर तो जोर की है भैया।
9: हाँ बिल्कुल,
6: एक तरफ जमनिया, एक तरफ दीवान वाली मालकिन,
8: वही तो बात है।
4: हाँ भाई, हाँ
8: लो जी,
4: आज तक तो दीवान खड़ा होता था, वो नाम का चुनाव है, बस एक तरफा जीत दीवान की।
9: हाँ, इस बार ऐसा

0: क्या खास है भैया?
1: अरे भैया लो,
2: जमुनिया जमुनिया
1: जमुनिया खास है। उसने दीवान को हिला दिया है।
2: अच्छा यार, एक बात तो बताओ, तुमने बहुत बातें बता दी।
1: बोलो
2: सच्ची सच्ची बोलो यार।
1: हाँ,
2: किसको वोट दोगे? अरे
1: अरे भैया, ये तो अब क्या है कि सब लोग बड़े चतुर हो गए, अब पता ही नहीं लगने देते कि किसको बोलते।
3: पर भैया, मैं इस बार चतुराई नहीं करूंगा। मैं तो साफ बोलता हूँ, जमनियों को वोट दूंगा। आप सबसे भी विनती है कि जमनिया को ही वोट दो। हाँ, जिताओ इस बार जमुनिया को।
1: ठीक ठीक कहते हो भैया, बिल्कुल ठीक। अरे कछु तो बदले है, कुछ तो नया हो।
2: और यार को सही बात है यार। अरे इस बार ये भी करके देख ले।
3: ये भी करके देख लेते हैं। चलो चलो,
1: तो भैया तेरा ही फिर कि जमुनिया को ही वोट देंगे।
3: हाँ बिल्कुल, जमुनिया को ही वोट देंगे। चलो
4: हाँ। अरे का जमुनिया बेटी, आज चुनाव प्रचार नहीं होगा का?
5: होगा बाबा, आज भी होगा। मेघा दीदी आने वाली है अपने साथियों के साथ, तब निकलूंगी।
4: हाँ हाँ बेटा, वो तो ठीक है, तब तक तो आराम कर लो। तुम तो फिर लग गई दलिया पंखा बनाने में है?
5: जब तक वो लोग आते हैं कुछ बना लूं, थोड़ा काम भी तो करना चाहिए।
6: माई, आज मैं भी चलती हूँ तेरे साथ।
5: तू आज मत चल, थक जाएगी। आज दूसरे गांव जाना है, वहां भी तो प्रचार करना पड़ेगा, है ना?
4: अरे हाँ हाँ बेटा, जाना जरूर जाना। देखो, अरे देखो देखो, ये लोग भी आ गए।
7: नमस्कार झुल्लन बाबा।
8: नमस्कार झुल्लन दादा।
4: नमस्कार नमस्कार बेटी, नमस्कार बच्चों, नमस्कार। लो जवनिया, अब तो तुम जाओ।
8: चलो जवनिया, चलो।
4: और तू अच्छे से प्रचार प्रसार करना बेटा, लड़ाई झगड़े से दूर रहना। इस बार जमुनिया को जिताना ही है।
5: चलिए।
9: अरे मालिक, सामने से तो एक और टोली चली आ रही है। लगता है जमुनिया के लोग हैं।
10: लगता नहीं, बल्कि वही लोग हैं। अरे साथ में जमुनिया भी तो है। लगता है वो भी प्रचार के लिए ही निकले हैं।
1: अरे ये तो कमाल है, देखकर भी सीधे चले आ रहे हैं।
10: अरे अरे मेरा तो दिमाग घूम रहा है। अरे कुछ कर बैठूंगा। हाँ
1: नहीं, नहीं मालिक नहीं, नहीं।
10: अरे अरे क्या करें। अच्छा चलो चलो यहाँ से। अरे हम ही लोग रास्ता बदल लेते हैं, चलो यहाँ।
9: अरे नहीं मालिक नहीं, अब देखकर तो रास्ता बदलना ठीक नहीं रहेगा।
1: हाँ, और गुस्सा करना भी ठीक नहीं रहेगा मालिक।
9: हाँ मालिक,
1: चुपचाप सामना करिए, देखिए क्या होता है।
9: अरे देखो तो कैसे दन दनाती हुई चली आ रही है।
5: राम राम दीवान जी।
10: राम राम।
5: वोट मांगने निकले हैं, सोचा पहले आपसे ही आशीर्वाद लेती चली।
10: अच्छा ही किया जमुनिया तुमने, पर भाई हम तो मालकिन को आशीर्वाद दे चुके हैं। हाँ भाई, अब तो वोटिंग के दिन ही हिसाब होगा साहब।
1: देखो तो हिम्मत, लगता है मालिक की छाती में घुस जाएगी।
5: कोई बात नहीं दीवान जी, हिसाब किताब तो हमने भी सीख लिया है।
10: इस भ्रम में मत रहना जमुनिया, ये जंग इस तरह नहीं जीती जाती। अरे हमें पता है इसके जीतने का रास्ता। हाँ, जोर आजमा लो। अरे जोर आजमाइश अच्छी रहती है। और हाँ, इन शहरी लफंगों के भरोसे तो चुनाव जीतने से रही तुम।
5: आप कितने सत्य है ये भी बता दिया आपने। ये शहरी लफंगे नजर आते हैं, भारत को बदलने वाले आज ये ही लोग हैं।

0: आपका दंभ आपको न सोचने देता है और न देखने देता है।
1: अरे आखिर चुनाव न होता तो ठीक से बताता। हाँ जाओ यहाँ से और रास्ता छोड़ो हमारा। जाओ
0: चुनाव बाद भी जमुनिया यही रहेगी और तब तो आपसे बहुत मिलना जुलना होगा।
1: अच्छा
0: अभी तो मैं सही रास्ते पर हूँ। रास्ता तो आपका गलत है, आपको ही छोड़ना पड़ेगा।
1: चलो यहाँ से।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत जमुनिया धारावाहिक की 12वीं कड़ी। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर, साथ ही वेव्स ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण आरंभ होता है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें, कृपया प्रतीक्षा करें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:02 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी। आज की युवाणी आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे हमारे आज के विषय राष्ट्रीय समुद्र तट दिवस पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस एवं राष्ट्रीय समग्र पालतू पशु दिवस। दोस्तों, क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे संतुलित आहार उत्तम स्वास्थ्य का राज विषय पर। साथियों और साथी आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र तट दिवस पर। दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्र तट दिवस भारत के समुद्री तटों, समुद्री पर्यावरण और तटीय क्षेत्रों के महत्व को समझने और उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत एक विशाल समुद्री तटरेखा वाला देश है। इसके समुद्री तट अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, समुद्र हमारे देश की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, संस्कृति और जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुद्री तट केवल घूमने और मनोरंजन के स्थान नहीं है, बल्कि वे अनेक जीव जंतुओं, वनस्पतियों का प्राकृतिक आवास भी है। समुद्र में मछलियां, कछुए, डॉल्फिन, प्रवाल और अनेक प्रकार के छोटे बड़े जीव पाए जाते हैं। समुद्री तटीय क्षेत्रों में मैग्रोव वन भी पाए जाते हैं, जो समुद्री तूफानों और बाढ़ से तटीय इलाकों की रक्षा करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा लाखों मछुआरे और तटीय समुदायों की आजीविका समुद्र पर निर्भर है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था में भी समुद्र का विशेष योगदान है। समुद्री मार्गों के द्वारा देश विदेश में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का व्यापार होता है। बंदरगाहों के माध्यम से आयात और निर्यात किया जाता है। दोस्तों, समुद्री पर्यटन, जहाजरानी तथा समुद्र से संबंधित अन्य उद्योग लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसलिए समुद्री तटों का सुरक्षित और स्वच्छ रहना देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज समुद्री तटों के सामने अनेक पर्यावरणीय चुनौतियां आ गई हैं। प्लास्टिक और अन्य कचरे के कारण समुद्री जीवों को नुकसान पहुँच रहा है। जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जल स्तर से भी तटीय क्षेत्रों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। साथियों, राष्ट्रीय समुद्री तट दिवस हमें इन समस्याओं के प्रति सचेत करता है। इस अवसर पर समुद्र तटों की सफाई, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, समुद्री जीवों की रक्षा करने तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ की जा सकती है। विद्यार्थियों और युवाओं को भी समुद्र की स्वच्छता और संरक्षण के प्रति जागरूक करना चाहिए। दोस्तों, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह समुद्र तटों पर कचरा ना फैलाए और प्लास्टिक का अनावश्यक उपयोग ना करे। सरकार के साथ साथ समाज और पर्यावरण संगठनों को मिलकर तटीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, समुद्र हमारे लिए प्रकृति का अमूल्य उपहार है। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय अंतर्राष्ट्रीय वेल शार्क दिवस पर चर्चा करने का। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वेल शार्क दिवस हर वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी मछली वेल शार्क के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और समुद्री जैव विविधता के महत्व को समझाना है। आकार में विशाल होने के बावजूद वेल शार्क एक शांत और विनम्र जीव है। यह मनुष्यों के लिए सामान्यतः हानिकारक नहीं होती। यह मुख्य रूप से गर्म और उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी लंबाई कई मीटर तक हो सकती है और इसका शरीर सफेद या पीले रंग के धब्बों से ढका होता है। इसके विशाल आकार के कारण इसे देखकर लोग अक्सर इसे खतरनाक समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह छोटी मछलियों और समुद्र में मौजूद सूक्ष्म जीवों को पानी के साथ छानकर भोजन करती है, इसलिए इसे फिल्टर फीडर कहा जाता है। वेल शार्क समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समुद्र में विभिन्न जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और किसी एक प्रजाति की संख्या में कमी पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकती है। वेल शार्क के संरक्षण से समुद्री जीवन और जैव विविधता को बनाए रखने में सहायता मिलती है। साथियों आज वेल शार्क के सामने कई गंभीर खतरे हैं। समुद्र में बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण, मछली पकड़ने के जाल में फंसना, जहाजों से टकराव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन इसके अस्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्थानों पर इनके अवैध शिकार और व्यापार के कारण भी इनकी संख्या में कमी आई है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वेल शार्क दिवस हमें यह संदेश देता है कि समुद्री जीवों की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की भी इसमें भूमिका अहम है। इस अवसर पर विद्यालयों, पर्यावरण संगठनों और विभिन्न संस्थानों के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम, पोस्टर प्रतियोगिताएं, समुद्र तटों की सफाई एवं शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। लोगों को प्लास्टिक का कम उपयोग करने और समुद्रों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथियों भारत में भी वेल शार्क के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गुजरात के समुद्री तट सहित भारतीय समुद्री क्षेत्रों में इनका पाया जाना दर्ज किया गया है। स्थानीय समुदायों और मछुआरों को इनके संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। जब लोग समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी रक्षा में सहयोग करते हैं, तब संरक्षण के प्रयास अधिक सफल होते हैं। साथियों अंतर्राष्ट्रीय वेल शार्क दिवस केवल एक विशाल समुद्री जीव के प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन नहीं है, बल्कि यह हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहने की सीख देता है। समुद्र पृथ्वी के पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है और उसकी जैव विविधता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम प्रदूषण कम करें, समुद्री संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें और वन्य जीव संरक्षण के नियमों का पालन करें, तो आने वाली पीढ़ियां भी वेल शार्क जैसे अद्भुत जीवों को समुद्र में स्वतंत्र रूप से देख सकेंगी। साथियों अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय राष्ट्रीय समग्र पालतू पशु दिवस पर चर्चा करने का। साथियों राष्ट्रीय समग्र पालतू पशु दिवस पालतू पशुओं के प्रति प्रेम, देखभाल और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। पालतू पशु हमारे जीवन का हिस्सा बनकर हमें प्रेम, अपनापन और खुशी प्रदान करते हैं। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, पक्षी और अन्य कई पशु लोग अपने घरों में पालते हैं। ये केवल घर की शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह हमारे साथ रहते हैं। पालतू पशुओं का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व है। वे अकेलेपन को दूर करते हैं और तनाव कम करने में सहायता करते हैं। बच्चों में पशुओं के प्रति प्रेम और दया की भावना विकसित करने में भी पालतू पशु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके साथ समय बिताने से बच्चों को जिम्मेदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता सीखने का अवसर मिलता है। विशेष रूप से कुत्ते और बिल्ली अपने मालिकों के प्रति बहुत वफादार और स्नेही होते हैं। पालतू पशु रखना केवल उन्हें घर में लाने तक सीमित नहीं है, उनकी उचित देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पानी, सुरक्षित रहने की जगह और नियमित स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता होती है। समय समय पर उनका टीकाकरण और आवश्यक उपचार भी कराया जाना चाहिए। दोस्तों पशुओं को पर्याप्त आराम और खेलने के लिए स्थान भी देना चाहिए।
उन्हें मारना या डराना या लंबे समय तक भूखा रखना अमानवीय व्यवहार है। साथियों, आजकल कई लोग केवल आकर्षण या शौक के कारण पालतू पशु खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उनकी जिम्मेदारी निभाने में कठिनाई महसूस करते हैं। कुछ लोग ऐसे पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं, या पशुओं के लिए बहुत कष्टदायक होता है और उनके जीवन को खतरे में डाल देता है। इसलिए किसी पशु को पालने से पहले यह समझना चाहिए कि उसकी पूरी जिंदगी उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी होगी। साथियों, पालतू पशुओं के साथ साथ हमें बेसहारा और आवारा पशुओं के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में सड़क पर रहने वाले पशुओं को भोजन, पानी और सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। यदि संभव हो तो हम उनके लिए पानी के बर्तन रख सकते हैं और घायल पशुओं को पशु चिकित्सक तक पहुंचाने में सहायता कर सकते हैं। छोटी सी मदद भी किसी पशु का जीवन बचा सकती है। दोस्तों, राष्ट्रीय समग्र पालतू पशु दिवस हमें यह याद दिलाता है कि पशु हमारे जीवन में केवल उपयोग या मनोरंजन के लिए नहीं हैं, वे संवेदनशील जीव हैं और उन्हें भी सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। हमें पालतू पशुओं को परिवार का सदस्य समझकर उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए। दोस्तों, यह दिवस हमें दया, करुणा और जिम्मेदारी का संदेश देता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति पशुओं के प्रति संवेदनशील बने और उनकी जरूरतों को समझे तो मनुष्य और पशुओं के बीच एक बेहतर संबंध स्थापित हो सकता है। दोस्तों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय संतुलित आहार उत्तम स्वास्थ्य का राज पर चर्चा करने का। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का विशेष महत्व है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और स्वच्छता के साथ साथ संतुलित आहार भी आवश्यक है। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संतुलित आहार उत्तम स्वास्थ्य का राज है। दोस्तों, हमारे शरीर को ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि प्रमुख हैं। साथियों, अनाज, दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल, मेवे, पर्याप्त पानी इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होते हैं। भोजन में इन सभी पदार्थों का उचित संतुलन होना यही संतुलित आहार कहलाता है। साथियों, संतुलित आहार हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में इसका विशेष योगदान है। प्रोटीन मांसपेशियों और शरीर के ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है, जबकि विटामिन और खनिज शरीर को स्वस्थ रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

रेशेदार भोजन पाचन तंत्र को ठीक रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है। साथियों, संतुलित आहार के साथ भोजन करने की सही आदत भी आवश्यक है। हमें भोजन सही समय पर करना चाहिए और भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। सुबह का नाश्ता पौष्टिक होना चाहिए। दिन भर पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी पीना चाहिए। भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना भी आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक भोजन करना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए केवल अच्छा भोजन ही पर्याप्त नहीं है। हमें नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना और तनाव से दूर रहना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि हम संतुलित आहार के साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं तो हमारा शरीर मजबूत और मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि संतुलित आहार हमारे जीवन की आधारशिला है। यह हमें ऊर्जा, शक्ति और रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। इसलिए हमें अपने भोजन में अनाज, दाल, फल, सब्जियां, मेवे और पर्याप्त पानी को उचित मात्रा में शामिल करना चाहिए। संतुलित भोजन अपनाकर ही हम स्वस्थ, सक्रिय और सुखी जीवन जी सकते हैं। वास्तव में संतुलित आहार ही उत्तम स्वास्थ्य का सच्चा राज है। दोस्तों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। साथियों आपसे बातें करते हुए समय का पता नहीं चला, अब समय हुआ है आपसे विदा लेने का। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी। आज की युववाणी आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हुए हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
6: ಈ ಕಥೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು. ಓ ಲವ್ಲಿ, ವೆಲ್ ಡನ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್. ಈಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಹೊಸ ಲೈಟ್ಸ್, ಅದರ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. ಅದೇ ಸಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ EMI ಕಟ್ಟಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
7: ಕಾರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೋ.
6: ನೀವ್ಯಾರು?
8: RBI ಹೇಳುತ್ತೆ,
6: ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮೃದ್ಧಿ.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:33 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं क्रांति फिल्म का एक गाना, जिसको गाया है मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, नितिन मुकेश और साथियों ने। संतोष आनंद ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म चुपके चुपके से, आवाज़ लता मंगेशकर की है। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, एसडी बर्मन का संगीत है और यह बहुत ही खूबसूरत गाना है, सावन के ऊपर है और सावन आए या ना आए पानी का मज़ा अपने आप में बहुत अनोखा होता है और पानी के यानी सावन के इंतज़ार में और पानी के इंतज़ार में कई गीत बन चुके हैं।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म 1920 का एक गाना, सुलक्षणा पंडित, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें हैं, और सुनिएगा ये गीत

अगले गाना लिया है हमने चित्रलेखा से, आवाज़ें हैं आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की, साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है, रोशन का संगीत है, यह है फिल्म संगीत की अंतिम प्रस्तुति।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आपको याद दिला दें 6 बजे से भी आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: ये कथे फोटोग्राफर मत्तु अवर मन सिद्धू। ओ लवली, वेल डन, बिजनेस लोन अप्रूव्ड। ಈಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಹೊಸ ಲೈಟ್ಸ್, ಅದರ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. ಅದೇ ಸಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕಾರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೋ. ನೀವ್ಯಾರು?
2: ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳುತ್ತೆ,
1: ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮೃದ್ಧಿ.
3: फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
5: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
6: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी.
7: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए.
5: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक.
6: आकाशवाणी है ना,
8: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त.
6: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
5: शाम सुहानी हो.
9: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना.
6: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
5: आकाशवाणी है ना. चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
6: सफर में
5: आपके साथ
6: आकाशवाणी.

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 होने को हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ औलिये दर्जाली दोस्तलिक से सम्मानित किया। ये सम्मान राष्ट्रीय शासनाध्यक्ष और अतुलनीय अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को प्रदान किया जाता है। उज्बेकिस्तान यात्रा के दूसरे दिन श्री मोदी ने राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों ने आपसी संबंधों के समूचे आयाम की समीक्षा की। वहीं रणनीतिक साझेदारी और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह 2026 में भाग लेंगी। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और रचनात्मक प्रयासों से समाज को जोड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण, उद्यमिता और बेटियों के अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदारी जैसे प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत में बने उत्पादों पर गर्व करना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बाणसागर बांध का जलस्तर बढ़ने से आज बांध के 6 गेट खोले गए। लोगों को सतर्क रहने और नदी क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। एम्स भोपाल ने व्हाट्सएप स्वास्थ्य सेवा प्रारंभ की है। इसके माध्यम से अपॉइंटमेंट लेने से लेकर जांच रिपोर्ट पाने तक 10 सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रदेश में 6-12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक हॉकी फीडर केंद्र स्थापित किया जाएगा। यहां प्रतिभाशाली बच्चों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के खिलाफ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। मैच रात 8:30 से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:00 हैं और आज हम आपको सुना रहे हैं इस समय फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं फिल्म कालिया का एक गाना। आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है। RD बर्मन का संगीत है। कौन किसी को बांध

कौन किसी को बांध सका सैयाद तो एक दिन जाना है। और अगला गाना हमने लिया है कुमार सानू और साथियों की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, नदीम शेवरन का संगीत है और फिल्म का नाम है परदेस।

दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। खैर, अगला गाना हम आपको सुनवाते हैं कि मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता। ये गाने के बोल हैं, फिल्म का नाम है पूनम, आवाज़ हैं मोहम्मद रफ़ी और चंद्रानी मुखर्जी की। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, अनु मलिक का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से। आवाजें हैं आयशा भोसले और मोहम्मद रफी की। शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

बात एक रात की। ये फिल्म का नाम है, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, एस डी बर्मन का संगीत है और ये फिल्म 1962 में रिलीज़ हुई थी।

याराना। ये फिल्म का नाम है, आवाज़ किशोर कुमार की है, अनजान का लिखा हुआ गाना है, राजेश रोशन का संगीत है। ये फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी।

ये गाना था फिल्म मिलाप का जो रिलीज़ हुई थी 1972 में, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। नक्श लायलपुरी ने इस गाने को लिखा था, ब्रजभूषण का संगीत था। और अगला गाना हम ले रहे हैं हंसते जख्म का। ये गाना बहुत ही पॉपुलर रहा है और बहुत पॉपुलर होने के साथ साथ लोगों की पसंद भी रहा है। 1973 में फिल्म रिलीज़ हुई थी, फिल्म का नाम था हंसते जख्म। कैफी आजमी ने इस गाने को लिखा था, मदन मोहन का संगीत था और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। सुनिएगा ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसको फिल्म मेरे सजना से लिया है। मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है आधा दिन आधी रात फिल्म का, और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनिए ये गीत।

0: ये गीत था फिल्म आदमी सड़क का। इस फिल्म का आवाज थे मोहम्मद रफी की। वर्मा मलिक ने इस गाने को लिखा था, रवि का संगीत था। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आपको याद दिला दें, 7:21 पर भी आप सुन सकते हैं फिल्मी गानों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए 10 लाख डॉलर का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार 1 बिलियन डॉलर पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक 5 बिलियन डॉलर व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, सुब्रमण्यम जयशंकर और निर्मला सीतारामन ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देशभर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले 2 दिनों में

0: 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। पेचिंग के भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज रात 8:30 भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8:00 वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:21 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत और 7:30 से आप सुन सकते हैं महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और इंग्लैंड के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष मुख्य कार्यक्रम। अब कल यानी सोमवार को प्रसारित होने वाले आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर एक नजर। 11:00 दिन में आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा, जिसमें जी राघवेंद्र प्रसाद का कर्नाटक वोकल होगा। 12:00 का समय है आपकी फरमाइश का। 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत जमुनिया धारावाहिक की 13वीं कड़ी। कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण दोपहर 1:00 होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगी। लोक संगीत के कार्यक्रम में देवीदास कुशवा और साथियों के गाय बुंदेली लोकगीतों का आनंद आप ले सकते हैं 1:30 पर। और 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में भारती विश्वनाथन के गाए भजन। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 2:00, शाम 5:33 पर, शाम 6:30 पर और रात 8:15 पर। साथ ही आप सुनेंगे आपकी फरमाइश 2:30 पर और रात 10:00। युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये कल का युवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगी। शाम 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। कार्यक्रम आज कल 6:40 पर और 6:45 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार दर्शन। रात 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में और 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में कल आप सुनेंगे डॉक्टर सुमिति मुटाटकर का धुरपद धमार गायन। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कल के मुख्य कार्यक्रम। और अब नजर डालते हैं आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कल सुबह के मुख्य कार्यक्रमों पर। 8:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। सुबह 9:15 पर आप सुन सकते हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में धर्मेंद्र मेहरा और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। उर्दू प्रोग्राम आईना सुबह 9:30 पर और 10:00 आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम गीत सागर लेकर हम हाजिर होंगे 10:05 पर, और 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में डॉक्टर सुमिति मोटाटकर का ध्रुपद धमार गायन, राग होगा भैरव और रामकली। और कल शाम 7:21 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा होगा। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले आज और कल के मुख्य कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर 2 में से 1 ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
2: कहाँ
5: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
6: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ ओलिये दर्जाली दोस्तलिक प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत सामग्री वितरित की। प्रदेश के 1,22,000 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये मिलेंगे और एशिया कप महिला T20 में आज भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जायोयेव ने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ ओलिये दर्जाली दोस्तलिक से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत संबंधों को समर्पित किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मान पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्तियों की घोषणा करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पहल से उज्बेकिस्तान में हिंदी के अध्ययन को और प्रोत्साहन मिलेगा।
1: स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन जीने का संदेश दें।
2: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा।

0: ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में यह अभियान देश भर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान 2 अगस्त से शुरू होकर 100 सप्ताह तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज चित्रकूट पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का पैदल भ्रमण कर नुकसान का जायजा लिया और राहत शिविर में प्रभावित परिवारों को वस्त्र, घरेलू सामग्री और खाद्यान्न वितरित किए। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरी सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है।
2: मैं बीती रात रीवा में रुका था, रीवा से कल रात को भी बारिश के समय में अति वर्षा के आधार पर चित्रकूट और सतना जिले में खास करके सेहावल नदी, मंदाकिनी के किनारे पर जो बाढ़ ने भीषण तांडव किया, एक तरह से ये अच्छा हुआ कि दिन का समय भी था और प्रशासन भी अलर्ट था। फोरकास्ट पहले हो चुकी थी, भविष्यवाणी के आधार पर जनहानि नहीं हुई, लेकिन ये बात सही कि बाढ़ ने पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं। ऐसे में हमारा सबका ध्यान है बाढ़ राहत बचाओ और अभी 2-3 दिन और संभल के चलने का भी।
1: वहीं सांसद गणेश सिंह ने कहा कि बाढ़ से हजारों परिवारों की जिंदगी भर की कमाई नष्ट हुई है। उन्होंने प्रभावितों के घर, दुकान, फसल और पशु हानि का सर्वे कराकर तत्काल राहत और विशेष पैकेज देने की मांग की।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के करीब 1,22,000 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगल को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों के खातों में 304,98,50,000 रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 12वीं में प्रथम प्रयास में 75% या उससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी इसके पात्र होंगे। प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग मनीष सिंह ने आज मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत नरसिंहपुर जिले के रौसरा स्थित एमपी ट्रांसको के 220 केवी सब स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्युत आपूर्ति, संचालन और रखरखाव व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अधिकारियों की सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी रबी सीजन में किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए तैयारियां पूरी करने तथा सब स्टेशन के पहुंच मार्ग के शीघ्र सुधार के निर्देश भी दिए। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। और अब मौसम विभाग ने आज मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, रायसेन, सीहोर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर समेत कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में अब तक करीब 27 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से लगभग 2.7 इंच कम है। विश्व धरोहर स्थल सांची की महाबोधि सोसाइटी में प्रख्यात पुरातत्वविद पद्मश्री डॉक्टर नारायण व्यास का अभिनंदन किया गया। इतिहास संकलन समिति रायसेन और विदिशा की विरासत संस्था द्वारा आयोजित समारोह में इतिहास प्रेमियों, शोधार्थियों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। वक्ताओं ने भारतीय इतिहास, संस्कृति और प्राचीन धरोहरों के संरक्षण में डॉक्टर व्यास के योगदान की सराहना की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में मध्य प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आमजन के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। लगातार बारिश के चलते शहडोल क्षेत्र में बाणसागर बांध के 6 गेट 2-2 मीटर तक खोले गए हैं। बांध का जलस्तर 341.54 मीटर पहुंच गया है। खंडवा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव श्रीवास्तव ने जिला जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने बंदियों से मुलाकात कर विधिक सहायता की जानकारी ली। सीहोर जिले में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को ऑफ डे योजना के तहत जुलाई माह में 53,86,000 रुपए की छूट मिली। जिले में अब तक 67,517 उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिला है। देवास में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित की गई। प्रतियोगिता में करीब 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नीमच जिले में सितंबर माह में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत 4 शिविर आयोजित किए जाएंगे। 3 सितंबर को रामपुरा और 11 सितंबर को जावद में शिविर होगा। इनमें संबंधित नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों के नागरिकों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। अलीराजपुर के जोबट में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव संजय गोयल ने गुना और राजगढ़ जिले के शासकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ ओलिये दर्जाली दोस्तालिक प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत सामग्री वितरित की। प्रदेश के 1,22,000 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये मिलेंगे। और एशिया कप महिला T20 में आज भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।
4: दीदी नौकरी लग गई।
5: अरे वाह बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
4: हाँ दी नया मोबाइल।
5: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
4: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
5: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
4: पर दीप
5: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए। लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
4: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
5: अच्छा
6: आरबीआई कहता है
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
4: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।

0: ना कहीं कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का ये खेल है। लेकिन ऐसे में सबसे पहले राकेश जी से पूछना चाहूंगा मैं, अगर स्ट्रक्चर की बात करें दोनों टीमों के, थाईलैंड वर्सेस इंडिया, 4 साल बाद आई थिंक आमने सामने हो रही है टीमें, और T20 में इतिहास गवा रहा है कि डोमिनेट करता हुआ भारत नजर आया है।
1: देखिए बिल्कुल सही बात है, भारत की टीम कोई भी थाईलैंड के साथ मुकाबले में दिखेगा तो ये मानेगा कि भारत का पलड़ा भारी है। लेकिन T20 क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसके अंदर किसी भी टीम को आप हल्का करके नहीं आ सकते हैं, और थाईलैंड की टीम को एकदम मैच से पहले ही, इस मुकाबले से पहले एक झटका लगा है कि उनकी कप्तान जो है वो चोटिल होने के कारण इस मैच में नहीं खेल पा रही है। जो स्टैंडिंग कैप्टन है थिकचापा पोतेगोंग, वो एक बड़ी मतलब अच्छी क्रिकेटर हैं, उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और जो उनका क्वालिफाइंग टूर्नामेंट हुआ था उसमें बहुत सक्सेसफुल रही थी, 16 विकेट उन्होंने लिए थे। तो आज कप्तानी का भार शायद उनको दिया गया क्योंकि टॉस करने वो आई थी। तो पहला झटका तो थाईलैंड को लग गया है, लेकिन अब टॉस जीत के उन्होंने जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के पास एक मौका रहेगा। बल्लेबाजी हमारी थोड़ी डावाडोल चली रही है T20 के अंदर, तो देखते हैं कि किस तरीके का उनका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ऐसी टीम जिसके साथ आप ज़्यादा खेलते नहीं, आपको बरसों बरस हो जाते हैं उनके साथ खेले हुए, उनके खिलाफ खेलना थोड़ा सा एक वो रहता है कि कैसे बॉलर होंगे उनके, किस तरह का वो करते हैं, तो देखते हैं कैसा करते हैं। उम्मीद है कि अच्छा करेंगे, बड़ा स्कोर खड़ा करें। 170 तक तो रोकने की बात थाईलैंड की कप्तान ने कर ही दी है, तो मुझे लग रहा है कि आज मौका है, 200 के ऊपर जाना चाहिए।
2: बिल्कुल, और इसके अलावा प्रतिका रावल आज T20 आईज में अपना डेब्यू करने वाली हैं। ओडीआईज में शानदार प्रदर्शन रहा है उनका, नंबर 3 पर लगता है कि बल्लेबाजी करने आएंगी या फिर
3: देखिए मुझे लगता है सिलेक्टर्स ने कोई ना कोई भरोसा दिखाया होगा उन पर, और इसीलिए उनका सिलेक्शन जो है इस एशिया कप के लिए किया है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की प्रतिभा वो रखती हैं, हमने वनडे वर्ल्ड कप में भी देखा, उनका प्रदर्शन देखा कि वो बहुत अच्छे प्रदर्शन से निकल रहे थे, लेकिन इंजरी के चलते उनको सेमीफाइनल फाइनल खेलने का मौका नहीं मिला। रिसेंटली भी जब इंग्लैंड में थे वहाँ पर भी उनको इंजरी हुई, लेकिन अब जिस तरीके से उनको एशिया कप के लिए बुलाया गया, स्पेशली T20 के लिए, कहा जाता है कि काफ़ी टाइम हुआ है उनको इस T20 फॉर्मेट में खेले हुए, और पिछला WPL भी उनको इंजरी की वजह से मिस हुआ था। तो मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स ये भरोसा देखना चाहते हैं कि नंबर 3 पे अगर जमीमा इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। अगर टेक्निकली बोले बहुत साउंड क्रिकेटर हैं प्रतिका रावल, और हम सभी ये देखना चाहेंगे कि एक प्रतिभाशाली जो क्रिकेटर है वो हर किसी फॉर्मेट के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो अब प्रतिका रावल की बारी है कि आज उनको ये बेहतर मौका मिलने वाला है, आज पहली बार वो T20 में आ रही हैं, किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। और भारतीय टीम के लिए बहुत ज़रूरी है ये एशिया कप, क्योंकि लास्ट कुछ समय से जो T20 का जो सफ़र रहा है भारतीय टीम का, वो मैं ये कहूँगी कि 50-50 रहा है। तो यहाँ पर हरमनप्रीत की जो फौज है वो ये कोशिश ज़रूर करेगी कि एशिया कप से वो एक कॉन्फिडेंस लेके जाएं, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी हम फॉर्मेट्स खेल रहे हैं T20s में, वहाँ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं।
0: और सबसे बड़ी बात है, अगर दुबई की बात करें तो स्पिनर्स को कितना सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, बिकॉज उनका एक्शन भी काफी कमाल का रहना चाहिए आज की शाम।
1: देखिए काफी सपोर्ट मिलने की उम्मीद की जा रही है, कुछ जो कोच हैं अमोल मजुमदार, उन्होंने बोला भी है कल कि स्पिनर्स के लिए मदद दिखाई दे रही है, तो इसीलिए दोनों टीमों में जो है स्पिनर्स की भरमार है वैसे भी, क्योंकि दुबई में टूर्नामेंट हो रहा है, तो और दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, लेग स्पिनर्स भी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी हैं, ऑफ स्पिनर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं हमारे पास। लेकिन यह है कि बात के हमारी टीम क्लिक नहीं कर रही। एक अच्छी बात मुझे सबसे अच्छी लगी BCCI की, कि इस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए 15 दिन का कैंप लगाया गया। उस कैंप में जो हमारी वीकनेसेस थी, जो वर्ल्ड कप के अंदर भी नजर आई कि जिसमें हमने कैचेस बहुत ड्रॉप किए, फील्डिंग हमारी खराब थी, उस पे इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दिया गया, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश की गई है। खेल हम भले ही एशिया कप में रहे हैं, लेकिन जो हमारी निगाहें हैं ना, वो 2 साल आगे तक के लिए गई हुई हैं, क्योंकि T20 के बड़े इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होने हैं, एशिया कप होगा, उसके बाद एशियन गेम्स होने हैं सितंबर में, उसमें T20 फॉर्मेट होना है, फिर T20 के चैंपियंस ट्रॉफी होनी है 2027 की शुरुआत में, उसके बाद ओलंपिक्स होना है 2028 में लॉस एंजलिस का, वो भी T20 होगा, और उसके बाद फिर T20 का वर्ल्ड कप भी होना है 2028 में। तो निगाहें हमारी आगे के टूर्नामेंट में है। प्रतिका रावल को टीम में रखना तो वो थोड़ी सी जमीमा रॉड्रिक्स की वजह से, लेकिन खिलाड़ियों को आजमाया जाएगा। मौके मिलेंगे। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि हमारे 16 खिलाड़ियों को आजमाया गया था, तो यहाँ भी मैक्सिमम खिलाड़ियों को मौके दिए जाएंगे। और अगर थाईलैंड के खिलाफ आप किसी नई खिलाड़ी को मौका नहीं देंगे तो फिर किस टीम के खिलाफ देंगे? तो एक अच्छा डिसीजन, खिलाड़ियों को यहाँ मौके दिए।

0: जाएंगे। इस टूर्नामेंट को जीतना, हम डोमिनेट किया हमने एशिया कप में, चाहे वो 50 ओवर के फॉर्मेट से 2004 में शुरू हुआ, 2012 में जब वो T20 फॉर्मेट आया तभी थाईलैंड की टीम ने डेब्यू किया था। तो एक ऐसी चीज़ें हैं, T20 फॉर्मेट में आने के बाद हम इसमें हारे भी हैं दो बार, लेकिन एक बड़ी बात है चाहे 50 ओवर फॉर्मेट रहा चाहे T20 का, हमने हर फाइनल खेला है
1: जी।
0: ये एक बड़ी हमारे पास बात है, हमारा डोमिनेंस है, उसको हमारे खिलाड़ी भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो आपके साथ जो आपकी लेगेसी चलती है उसको आगे बढ़ा के रखना। और इस समय सबसे अनुभवी कप्तान हरमनप्रीत कौर हमारे पास हैं, उन्होंने 25 जो खेले हैं मैचेस उसमें से 23 में उन्होंने कप्तानी की है, एक अनुभवी कप्तान। और थाईलैंड के पास एकदम कम अनुभवी, जिसको कप्तानी का अनुभव नहीं होगा उतना मुझे लगता है, तो वो देखना होगा कि दोनों कप्तान किस तरीके से इस मैच को लेते हैं
1: जी। और 2024 में श्रीलंका से शिकस्त का सामना करना पड़ा था, T20 का ही फॉर्मेट था एशिया कप का, उस बार भी हम नंबर 3 का यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। समहाउ भारत की तरफ से उस पोजीशन पे काफी एक्सपेरिमेंटेशन होते रहा है इस फॉर्मेट में, खास करके जब कोई बड़ा टूर्नामेंट शुरू हो जाता है तब।
2: मुझे लगता है कि ये एक सही टाइम भी बोलूंगी कि एक्सपेरिमेंट आपको करना है, क्योंकि आप अभी वर्ल्ड कप से निकल के आए हैं, आपको अपनी टीम की खामियां भी पता है, आपको ये भी पता है कि आपको कहाँ काम करना है। और मुझे लगता है कि प्रतिका रावल जिस तरीके के सिलेक्शन किया गया है, उनको ये चांस दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन इन फ्यूचर आती है, कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या किसी वजह से अनअवेलेबल उस टाइम पर है, तो आप क्या उस टाइम पे प्लेयर्स को रखते हैं वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये एशिया कप बड़ा क्रुशियल होने वाला है भारतीय टीम की, अगर सोच के हिसाब से मैं बात करूं। और आई होप मैनेजमेंट कोचिज सब इस चीज को देख रहे हैं कि यहां से आगे का सफर आप किस तरीके से तय कर सकते हैं। भारतीय टीम में बहुत ऐसे प्लेयर्स की खोज हुई है पिछले कुछ टाइम से, और उन सभी को हम जानते भी हैं, बहुत अच्छा वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि ये एशिया कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कुछ प्लेयर्स के लिए कि यहाँ से वो अपनी जर्नी को और लंबा कर सकते हैं भारतीय टीम में।
3: देखिए, सबसे बड़ी बात है अगर स्ट्रक्चर की बात करें, खासकर वर्ल्ड कप के बाद जो है और स्टेट में अगर हम देखें तो फिर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है कि विमेंस बढ़ चढ़ के आई हैं। वहीं अगर थाईलैंड की बात करें तो शुरुआत आगाज अच्छा हुआ है, लेकिन हाँ अगर कंपैरिजन इस चीज़ में करें कि वहाँ पर कितना डेवलप्ड है क्रिकेट और इंडिया उस मामले में भी आगे है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कंपैरिजन जो हम बातें करते आए हैं शुरुआती दौर में, वो क्वेश्चन मार्क क्या आज लगेगा आज के मुकाबले पे कि थाईलैंड शुरुआत अच्छी हुई, ये भी अहम होगा मुकाबले।
0: देखिए, दोनों का कंपैरिजन तो कर नहीं सकते, हिंदुस्तान में जितनी क्रिकेट होती है उतनी तो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के अंदर नहीं होती, चाहे वो मेंस क्रिकेट की बात करें चाहे विमेंस क्रिकेट की बात करें। और विमेंस क्रिकेट को जो इतना बढ़ावा दिया गया है कि तमाम स्टेटों में अब तो T20 की जो लीग्स भी हो रही हैं और उनके जो टूर्नामेंट्स हैं नेशनल लेवल के, वो भी बड़े मतलब ध्यान से हो रहे हैं, पहले की तरह नहीं हो रहे। मैंने तो एक ज़माना जो 90s का देखा, जब डायना डुलजी हिंदुस्तान की कप्तान होती थी और किस तरह से विमेन क्रिकेट चलता था, और आज जो मैं देखता हूँ जिस तरह से शॉर्ट्स लड़कियाँ खेल रही हैं, तो मुझे तो भरोसा नहीं होता कि किस तरीके से 1-2-3 करके स्टेप आउट करके सिक्स मारना लॉन्ग ऑफ के ऊपर, तो बहुत मतलब गजब का लगता है वो शॉट्स उस तरीके से उनका खेलना, उनके अच्छा स्किलफुल भी हैं अच्छे, जैसे दिल्ली प्रीमियर लीग में हम देख रहे हैं कभी कल ही एक लड़की ने पूनिया ने सेंचुरी बनाई है, पहली बार सीजन में सेंचुरी भी बनी। और एक लड़की रावल, उसने मेडन ओवर भी फेंका T20 के अंदर, मेडन ओवर फेंकना जबकि एक लड़की इतनी आपकी पिटाई कर रही हो कि वो सेंचुरी बना रही हो उसके खिलाफ आप मगर मेडन ओवर फेंकते हैं, तो ये बड़ी चीज़ है। दोनों तरह की हमारे जो खिलाड़ियों की प्रतिभा वो निखर रही है, तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है ऐसे पुल शॉट्स खेलना उनके, बहुत ज़बरदस्त। और फास्ट बॉलर्स को आगे निकल के स्टेप आउट करके मारना, वो ऐसा तो मैंने विमेंस क्रिकेट में पहले कभी नहीं देखा। हमारी बड़ी ग्रेट खिलाड़ी पहले भी हुई हैं, संध्या अग्रवाल जैसी बल्लेबाज हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त वो खेलती थी, सब कुछ था, लेकिन जिस तरह की अब बल्लेबाजी हो रही है तो बहुत अटैकिंग हो रही है। लड़के और लड़कियों के मैच में थोड़ा सा अंतर नज़र आता है ताकत का, लेकिन जो जिगरा है ना वो लड़कियों का बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है जो पहले नहीं दिखाई देता था। और वही चीज़ आप देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी, जब हम हरमनप्रीत को देखते थे कुछ साल पहले भी, कि जिस तरीके के वो शॉट्स मारती थी, जिस तरीके के उनके पुल शॉट्स होते थे, बहुत गजब के होते थे, आज भी वो 37 साल की उम्र में हिंदुस्तान की कप्तानी कर रही है। और मौका मिलने पर T20 इसमें तो एक प्लेयर आपको बदल के रख देता है। लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा, मुझे बैटर के साथ उतनी दिक्कत नहीं, कि हमारे जो गेंदबाज हैं वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि जब आपको अनुभवी स्पिनर्स आपके पास मौजूद हैं, फास्ट बॉलर्स आपके पास बहुत है, वैरायटी बहुत है हमारी टीम के अंदर, और कोच को थोड़ी 11 चुनने में दिक्कत भी आती होगी कि भाई किसको रखें बाहर किसको अंदर करें टीम के अंदर, लेकिन जब आपके पास इतने वेरिएशन वाले खिलाड़ी हैं, अब तो आपके पास

एक स्पिनर भी एक आ गई है टीम के अंदर, तो ये काफी चीजें हैं। लेफ्ट हैंड स्पिनर अच्छे हैं आपके पास, स्पिनर्स अच्छे हैं, वही फील्डिंग वाला जो डिपार्टमेंट है मुझे लग रहा है उसकी मजबूती वो दिखाई देगी पहले मैच से ही, कि भाई हमने जो कैंप लगाया

0: अच्छा क्रिकेट आज के टाइम पे चल रहा है, अगर हम वुमेन्स की बात करें, हर ऑलमोस्ट हर स्टेट में आपकी लीग स्टार्ट हो चुकी है और ये एक जगह है जहां पर आप पीछे से प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं, वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपकी मेन टीम जो है वहां पर अगर कभी भी कुछ, जैसे कि अभी जमीमा रॉड्रिक्स इंजर्ड हुई तो प्रतिका रावल वहां तैयार रही हैं, तो ये बैकअप आपके पास हमेशा रहता है और इसकी वजह से क्या है, हेल्दी कंपटीशन डोमेस्टिक सर्किट में चलता रहता है, तो हमारे जो इंडिया प्लेयर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि आपको परफॉर्म करते रहना होगा। और T20 जैसा जो फॉर्मेट है वहां पर जिगरे की भी ज़रूरत है, ताकत की भी ज़रूरत है और स्ट्रेटजीज की भी ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एशिया कप, जहाँ से हम इन सब चीज़ें हैं जो हमें पिछले कुछ मैचेस में परेशान किया है उनको किस तरीके से ओवरकम करें, जो कैंप लगा है वहाँ किस तरीके की तैयारियाँ हैं वो आज के मैच में पता चलेगा, उनकी प्लानिंग्स, उनके एग्जीक्यूशंस क्या करना चाहते हैं, गेंदबाजी जिस तरीके सर ने कहा कि अच्छे कॉम्बिनेशन है हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा अगर पेस की बात करूँ तो वहाँ थोड़ी तकलीफ नज़र आती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमें कोई ऐसा इफ़ेक्टिव गेंदबाज वहाँ नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से कब अच्छी शुरुआत कर पाएँ। T20 मैचेस में हमारे रन्स लीक्स होते हैं जब इनिंग की शुरुआत होती है, तो वो एक थोड़ा सा मुझे लगता है कंसर्न है भारतीय टीम के पास के किस तरीके से अटैक वो गेंदबाजी में देखते हैं, किन को अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिलने वाली है, तो वो सारी चीज़ रहेंगी। ये पूरा एशिया कप अगर मैं पर्सनली देखना चाहूँगी तो मैं गेंदबाजी पे ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि बल्लेबाजी मुझे लगता है हम सक्षम हैं किसी भी तरीके का स्कोर खड़ा करने के लिए या किसी भी स्कोर को हम चेज करने के लिए।
1: बिल्कुल, और इस बीच हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि अगर वो हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1084 और 1085। इस बीच राकेश, चर्चा चल रही थी पेस डिपार्टमेंट पर, और हमने देखा है कि वर्ल्ड कप में तो खास करके केवल 5 विकेट निकाले पेसर्स ने, लगातार चॉपिंग एंड चेंजिंग हो रही थी उसमें, और जिस कारण भी इफेक्टिवनेस उतनी नहीं देखने को मिली, सबसे कम थे 5 विकेट।
2: नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो हमारा तेज बॉलिंग का डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा अनसेटल्ड लगता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये मैच, इस मैच से पता चलेगा आपको, क्योंकि जो कैंप लगाया गया, तैयारी की गई, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पहले ये परंपरा थी कि किसी बड़े टूर्नामेंट, बड़ी सीरीज से पहले तैयारी की जाती थी, तो तैयारी के साथ टीम यहाँ पर उतर रही है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो कमियाँ रही हैं तेज गेंदबाजी की भी उसके ऊपर ध्यान दिया गया होगा।
3: बिल्कुल, और प्लेइंग 11 की भी बात करेंगे, खासकर ग्रुप ए की भी बात करेंगे, उस पर भी निगाहें काफ़ी टिकी हुई हैं, बिकॉज आने वाले मुकाबले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, और सबसे ज़्यादा अगर निगाहें होंगी तो वो पुथा वॉन्ग पर होंगी, जिन्होंने 10 मैचों में 20 विकेट लिए हैं, तो यस, वो गेंदबाजी की धार क्या थाईलैंड की तरफ से देखने को मिलेगी। लतिका मैम,
0: देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से थाईलैंड ने पिछला मैच खेला है और वहाँ उनकी गेंदबाजी हुई है, उनके स्पिनर्स का जो दबदबा रहा है, सिर्फ एक ही मीडियम पेसर को उन्होंने अपनी टीम में रखा, अपनी गेंदबाजी में रखा, और बाकी के ऑफ स्पिनर भी, लेग स्पिनर भी, लेफ्ट आर्म सब वहाँ रहे और विकेट लेने ले पाए उस मैच में, तो थोड़ा सा ये चीज़ देखनी होगी कि हमारे बल्लेबाज, जो कि हम कहते हैं कि अगर भारतीय टीम होती है तो स्पिन्स अच्छा खेलते हैं क्योंकि हमारे पास भी वो बेहतर स्पिन अटैक है, तो ये थोड़ा सा मैं देखना चाहूँगी कि हमारे बल्लेबाज उन स्पिनर्स को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक छोर से पेसर अगर आ रहे हैं तो दूसरे छोर से आपको स्पिन अटैक ज़रूर मिलेगा,
1: और अटैक में विविधता बहुत ज़रूरी है, इसीलिए प्रश्नों में भी विविधता के लिए हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं। तो पहले श्रोता जिन्होंने अभी कॉल किया उनसे बात करते हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार सर
1: जी, आप अपना परिचय दीजिए। जी, क्या सवाल या क्या टिप्पणी है आपकी? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे विशेषज्ञों ने भी अभी एम्फसाइज किया, उन्होंने जोर दिया कि बल्लेबाज तो अच्छे हैं, गेंदबाजी पर ध्यान देना होगा, और लतिका खास करके हम पेस अटैक का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, रेणुका सिंह ठाकुर जो कि जिन्होंने कमान संभाल रखी थी बहुत लंबे वक्त तक भारतीय गेंदबाजी की, वो फॉर्म में नहीं नजर आ रही, इंजरी कारण है, खास करके न्यू बॉल के साथ इफेक्टिवनेस सेम नहीं है।
0: देखिए रेणुका की अगर हम बात करें, जब आई थिंक एक या दो साल पहले की अगर हम बात करें तो बहुत ही इफेक्टिव थी, बहुत अच्छा स्विंग भी चल रहा था, लेकिन डब्ल्यूपीएल के बीच में उन्हें थोड़ा बैक इंजरी का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से

0: काफी लंबे समय तक वो क्रिकेट से दूर भी रही थी, और उसके बाद जब वो कम बैक उन्होंने टीम में किया तो वो पेस हमें वहां पर नजर नहीं आई, वो एक कहते हैं ना कि वो धार नजर नहीं आई, तो वहां से थोड़ा कंसर्न हुआ कि रन लीक ज्यादा करते हैं, 8 या 9 के एवरेज से वो जो है ओवर में रन दे रहे हैं, तो वहां एक कंसर्न हो जाता है। क्रांति गौड़ जिनसे बहुत उम्मीद है, बहुत अच्छी गेंदबाज भी हैं वो, लेकिन वही बात कि आप वहां पर अगर हमारे मीडियम पेसर्स जितने भी देखें तो 8 से 9 रन जो पर ओवर है वो कहीं ना कहीं लीक होते हैं, और T20 के गेम में अगर शुरुआती ओवर्स में आप इस तरीके के रन्स दे रहे होते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर जो है आपकी टीम पे आ जाता है, तो मुझे लगता है कि ये कंसर्न जो मैंने पहले भी कहा, ये एक कंसर्न देखते हैं कि कितना काम करके आई है भारतीय टीम, और हम चाहेंगे कि क्रांति गौड़, रेणुका सिंह है, ये किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर करेंगे, और क्योंकि काफ़ी लंबे समय से भारतीय टीम इन पर भरोसा दिखा रही है, मैनेजमेंट इन पर भरोसा दिखा रहे हैं, कोचिज कप्तान, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं बार बार कह रही हूँ ये एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम की नज़रों से,
1: इंपॉर्टेंस काफ़ी है इसकी, और हमारे कॉलर्स की इंपॉर्टेंस भी उतनी दुगनी हो जाती है खासकर जब ऐसे मैचेस हो। तो एक कॉलर के साथ हम, हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? जी जी, आपका सवाल क्या है सर?
2: सर मेरे एक दो सवाल और कुछ सुझाव भी है। पहला तो सवाल यही बनेगा और सुझाव भी हो सकता है, मुझे सही से जानकारी नहीं है।
1: जी जी जी,
2: इसमें जो मैन प्लेयर ऑफ द मैच वगैरह ये सब जो अवार्ड्स होते हैं वो उनका जेंट्स या जेंट्स लोग करते हैं या महिलाएं करती हैं? अगर जेंट्स लोग करते हैं तो मेरा मानना सर बिल्कुल गलत है, सिर्फ महिलाओं को करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार एक वर्ल्ड कप जो चल रहा था महिलाओं का, इसमें एक फैसला मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा था, प्लेयर उस समय
1: जी बिल्कुल। सर सवाल क्या है आपका?
2: दूसरा सवाल एक मेरा ये है,
1: जी बिल्कुल, तो राकेश जी ये कहना ये चाह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि वो प्रोत्साहन मिले महिलाओं को भी, और भी ज़्यादा जो है उड़ान पर आएं, लेकिन उड़ान के साथ कहते हैं ना कि देखना है उसकी उड़ान को तो जाओ और ऊंचा कर दो आसमान को। प्लेइंग 11 की तरफ थोड़ी सी नज़र हम करेंगे, ज़्यादा बदलाव इंडियन टीम में तो नहीं है लेकिन हाँ थाईलैंड निगाहें ज़रूर होंगी। राकेश जी
3: नहीं बिल्कुल, देखिए एक जो भी टीमें यहाँ 11 आप बनाते हैं तो पिच के मिजाज को देखकर बताते हैं, और सबको ये लग रहा है कि भाई पिच में जो है स्पिनर्स के लिए मदद रहेगी, तो इसीलिए दोनों टीमों ने स्पिनर पैक्ड अपनी 11 को रखा है यहाँ पर। और लेकिन जिस तरह से थाईलैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है तो मुझे लगता है कि वो पिच के अंदर जो शुरुआती कुछ मदद होती है तेज गेंदबाजों के लिए उसका फायदा यहाँ पर उठाना चाहेंगे।
1: राइट, और 120 का हम जिक्र कर रहे थे तो मुझे लगता है कि अनिश्चितताओं का ये खेल है और अनिश्चितताओं की तब्दीली निश्चितताओं में होती है। निश्चित रूप से 120 लग रहा है आपको? थोड़ा सा प्रेडिक्शन सबसे लेना चाहूंगा। लतिका मैम,
0: मुझे लगता है कि पिछला मैच जिस तरीके से इन लोगों ने खेला है, विकेट्स लिए हैं स्पिनर्स ने, तो उसी की वजह से ये टॉस पे इन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया है, क्योंकि इनको लगता है कि हम गेंदबाजी में अच्छा कर रहे हैं, दूसरी टीम को हम कम स्कोर पे रोक पाने की क्षमता रखते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर भारतीय टीम की बल्लेबाजी की डेप्थ देखी जाए तो 120 से तो ऊपर हो गई होगा।
4: ऑब्वियसली एम्बिशन दिखाती वहाँ पे थाईलैंड की स्टैंड इन कप्तान, और जो भारतीय 11 है यहाँ पर वो शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना ओपन करते हुए, प्रतिका रावल डेब्यू करते हुए, हरमनप्रीत कौर कप्तानी की कमान संभालते हुए, भारतीय फुलमली को वापस से मौका मिला है 11 में, ऋचा घोष विकेटकीपर, दीप्ति शर्मा स्पिन ऑलराउंडर, प्रेमा रावत हैं लेग स्पिन करते हुए नजर आएंगी वो, एन श्री चरणी, क्रांति गौड़ और नंदिनी शर्मा। लेकिन क्योंकि भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है राकेश, तो वापस से बल्लेबाजी पर यहां पर अगर हम जोर दें और फिनिशर्स के तौर पर जिस लेवल का एवोल्यूशन भारत एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा देखने को नहीं मिला है, काफी दारमदार ऋचा घोष पर ही आ जाता है।
3: नहीं बिल्कुल रहेगा, फुलमानी के ऊपर भी है, वो भी बिग हिटर हैं, और यहाँ पर देखना सबसे बड़ी चीज है कि आपको न केवल ओपन अच्छा करना है बल्कि जो आपके मिडिल ऑर्डर हैं या फिनिशर है, लास्ट ओवर्स में किस तरह से आप लास्ट के 5 ओवर्स में किस तरह से बैटिंग करते हैं, नए बैटर आपके ना आए उस समय, अगर पहले के लोग लंबी इनिंग खेल रहे हैं, जो अच्छा खेले उसको लंबा टिकना चाहिए यहाँ पर, तो उससे आप बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद मिलती है।
4: जी बिल्कुल, और हरमनप्रीत के तौर पर भारत के पास एक ऐसी खिलाड़ी है जो कि दोनों रोल डॉन कर सकती हैं, मिडिल ओवर्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की और डेथ में जरूरत पड़े तो फिनिशर का रोल भी।
0: देखिए उनको मैं हमेशा से एक इंपैक्ट प्लेयर की तरह देखती हूँ कि जिस तरह के उनके शॉट्स हैं, उनके पास जो बल्लेबाजी करती हैं, जितना दमखम वो अपने शॉट्स में दिखाती हैं, तो मुझे लगता है कि एक कह सकते हैं कि संपूर्ण तरीके से बेहतरीन बल्लेबाज हैं वो। अगर उनको जल्दी मौका मिलता है तो वो अपने टीम के अनुसार शॉट्स लगाती हैं, और जब रनों की गति बढ़ानी होती है तो बड़े बड़े हिट्स भी उनके बल्ले से आते हैं। तो हरमनप्रीत कौर एक ऐसे प्लेयर हैं, कप्तान भी हैं, तो अपफ्रंट होके लीड करने जानती हैं वो।
4: जी बिल्कुल, द कैप्टन नोज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड शी डस कम विद इनॉर्मस एक्सपीरियंस एज वेल। अ बिग थैंक्स टू आर एक्सपर्ट्स, थैंक यू टू यू एज वेल गौतम फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन फर्स्ट बॉल 20। वेल वी हेड स्ट्रेट अवे टू द फर्स्ट इनिंग्स वेयर द टू इंडियन ओपनर्स आर ऑल गियर्ड अप, शिफाली वर्मा एंड स्मृति मंधाना। थाईलैंड आर लुकिंग टू रिस्ट्रिक्ट इंडिया टू 120। वेल वेदर दैट हैपेंस और नॉट, वी डू वेट एंड लिसन।
5: First ball 20.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: नमस्कार। भारत और थाईलैंड के बीच विमेन्स एशिया कप 2026 में आज मुकाबला खेला जा रहा है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर, और ये इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला है। भारत अपना पहला मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतर रहा है और इस मुकाबले में टॉस जीता है थाईलैंड की कप्तान ने, और टॉस जीत करके उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। इस लाइव कमेंट्री के साथ मैं हूं मोहम्मद इकबाल, मेरे साथ अंग्रेजी में आंखों देखा हाल सुनाएंगे पंकज अठावले, स्कोरर हैं रजत सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन हैं ओपी शर्मा। आप तमाम साथियों का, आप तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। फिलहाल भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी इस वक्त मैदान पर पहुंच रही है, और आज भारतीय टीम जिस प्रकार से इस प्लेइंग 11 का अगर हम जिक्र करें तो भारतीय टीम में आज स्मृति मंदाना, शिफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर कप्तान, भारती फूलमली, ऋचा घोष विकेटकीपर, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्रीचरणी, क्रांति गौड़ और नंदनी शर्मा, ये भारत की प्लेइंग 11 है आज के मुकाबले में। प्रतिका रावल आज अपना पदार्पण कर रही हैं भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में, और ये पहला मुकाबला होगा उनका भारत की जानिब से। भारतीय टीम की तरफ से प्रारंभिक जोड़ी स्मृति मंदाना और शिफाली वर्मा मैदान की तरफ पहुंच रही हैं, और इस वक्त समय है अपने साथी कमेंटेटर पंकज अठावले का स्वागत करने का। पंकज, बहुत बहुत स्वागत।
2: Thank you very much. Good evening to all our listeners on Akashwani. What a day it is as Panita Maya for Thailand will be starting the proceedings. Thailand women winning the toss and deciding to bowl first at this wonderful and a very iconic venue, the Dubai International Stadium. The Ring of Fire, Iqbal, is ready and the Indians will be up there. The most important point here is Thailand, the girls are giant killers. They have done something big in the past, and this will be a fantastic experience for them as the evening sun sets down on the western horizon in Dubai.
1: Smriti Mandana, 172वां मुकाबला, 4538 रन, और वहीं शिफाली वर्मा 112वां मुकाबला खेल रही हैं, 2901 रन उन्होंने बनाए हैं, और बेहतरीन स्ट्राइक रेट रही है स्मृति मंदाना के साथ साथ शिफाली वर्मा का भी। इस वक्त तमाम जो फील्डर्स हैं उनमें से ज्यादातर फील्डर्स 30 गज के, जो कि वुमेन्स क्रिकेट में 25 गज का दायरा होता है, वो 25 गज के दायरे के अंदर नजर आ रही हैं, और सिर्फ दो खिलाड़ी हैं जो बाउंड्री लाइन पर नजर आ रही हैं। पहली बॉल के साथ तैयार हैं गेंदबाज, पहली गेंद लेग और मिडिल स्टंप पर थी, और इस पहली बॉल को बल्लेबाज ने खेला सीधे बल्ले से मिड ऑन की जानिब। स्मृति मंदाना ने रन बनाने का कोई मौका नहीं, और इस तरह से फिलहाल स्कोर में कोई इजाफा नहीं, भारतीय टीम शून्य बगैर किसी विकेट के नुकसान के। माया इस वक्त गेंदबाजी कर रही हैं और वो पहला ओवर डाल रही हैं एमिरेट्स रोड एंड से पहला ओवर डाल रही हैं। फिलहाल एक बार फिर से तैयार हो रही हैं।

के साथ। भारत का स्कोर इस वक्त 69 रन है। एक विकेट के नुकसान पर विकेट गिरा है स्मृति मंदाना का, जो कि रन आउट हुई है। तो मैं बात कर रहा था ग्रुप्स का। ग्रुप ए में भारत है, थाईलैंड, पाकिस्तान और हांगकांग। वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और यूएई की टीमें ग्रुप बी में नजर आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान की दावेदारी बेहतर नजर आती है। वहीं उधर ग्रुप बी में बांग्लादेश और श्रीलंका की दावेदारी बेहतर नजर आती है। लेकिन ये क्रिकेट है और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कभी भी कहीं भी बाजी पलट सकती है। और ये जो नई टीमें हैं, ये जो थाईलैंड, हांगकांग, यूएई जैसी टीमें हैं, ये अपना छाप छोड़ने के लिए इस टूर्नामेंट में आई हैं। फिलहाल इस वक्त खेल को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब गेंदबाजी करने के लिए सुनीदा तैयार हैं। सामने है प्रतीका रावल, 17 रन बनाए हैं 11 बॉलों पर। अगली गेंद और इस बार प्रतीका ने इस गेंद को ऑन साइड

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म युद्धरा से। आवाज़ें विशाल मिश्रा और प्रतिभा सिंह बघेल की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म जवान से, आवाजें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी, गीत के बोल कुमार के और संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र के।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल।

0: इस समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने

0: ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
3: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि PM स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
3: PM स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। PM स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
3: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश

0: विश्व अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
1: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास हैं। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा एमएसएमई की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्सपर्ट @airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता है। अब तक प्रभावित इलाकों से 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Uzbekistan elevate bilateral ties to comprehensive strategic partnership, seal long-term uranium supply pact and set $5 billion trade target by 2030. Prime Minister Narendra Modi conferred Uzbekistan's highest state honor, reaches Kyrgyz Republic to take part in 26th SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi warns of perils of drug abuse in Mann Ki Baat program, celebrates women's economic empowerment, girls entering space industry and agricultural innovation. Nepal issues fresh flood alert along Bhote Koshi River. 149 Indians rescued so far as death toll crosses 780. WHO releases $150,000 emergency aid. And in men's hockey, Germany and Spain locking horns for coveted World Cup title in Belgium. And now the news in detail. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In its remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress, and prosperity in Central Asia.
1: इस वर्ष हमारी strategic partnership के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को comprehensive strategic partnership का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president following the talks, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है. आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को-प्रोडक्शन और को-डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे. हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है. इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा.
0: मिस्टर मोदी सेड इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान विल जॉइंटली ऑर्गेनाइज अ बिजनेस समिट इन्वॉल्विंग बिजनेस लीडर्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज.
1: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो. यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे. आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं. हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए.
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड द टू कंट्रीज विल आल्सो सेट अप कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स.
1: स्पोर्ट्स भी हमारे सहयोग के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभर रहा है. पिछले वर्ष गोवा में 20 वर्षीय उज्बेक ग्रैंड मास्टर सिंदारोव ने वर्ल्ड कप जीता. अब नवंबर में उनका मुकाबला भारत के 20 वर्षीय चेस चैंपियन गुकेश के साथ होने वाला है. एक बिसात पर जब ये दो युवा सितारे आमने सामने होंगे तो जाहिर है इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर होगी.
0: Mr. Modi announced 100 Lal Bahadur Shastri scholarships for Uzbek students to promote the Hindi language in the Central Asian country, along with the establishment of a Sanskrit chair at Tashkent State University of Oriental Studies. India has

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। भारत और उज्बेकिस्तान अपने बाहमी ताल्लुकात को जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी तक लेकर गए। दोनों मुल्कों ने तवील मुद्दती यूरेनियम सप्लाई मुआहदे पर दस्तखत किए और 2030 तक 5 अरब डॉलर की दो तरफा तिजारत का हदफ मुकर्रर किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के आला तरीन सरकारी एजाज से नवाजा गया है। जनाब मोदी बिश्केक में शंघाई तावुन तंजीम SCO के 26वें सरबराह इजलास में शिरकत के लिए जमहूरिया किर्गिज पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मनुष्या की लानत से खबरदार किया। उन्होंने खवातीन की मुआशी खुदमुख्तारी, खलाई सनत में लड़कियों की शमूलियत और जरई शोबे में जिद्दत तराजी को सराहा। नेपाल ने भोटेकोशी दरिया से मुत्तसिल इलाकों में सैलाब का ताजा अलर्ट जारी किया है। अब तक 149 भारतीयों को बचाया जा चुका है। हलाकतों की तादाद बढ़कर 781 हो गई है। आलमी इदारे सेहत WHO ने 150,000 अमरीकी डॉलर की हंगामी इमदाद जारी की है। और मर्दों की हॉकी में बेल्जियम में वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन जर्मनी और स्पेन के दरमियान खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आज अपने ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकतदारी की सतह पर ले जाने का ऐलान किया है। दोनों मुल्कों ने सिविल न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे में बाहमी तावुन के हिस्से के तौर पर उज्बेकिस्तान से भारत को यूरेनियम की सप्लाई के लिए एक तवील मुद्दती इंतजाम के बारे में भी इत्तफाक किया है।
1: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम 3 सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए।
0: नायाब मादनियात की कानकनी के लिए मुमकिना मकामात के बारे में भी तबादले ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों ने साल 2030 तक दो तरफा तिजारत को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोयेव के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद ये फैसले किए गए हैं। दोनों रहनुमाओं ने 11 मुफाहमत नामों का तबादला किया जिनका मकसद कानकनी, आयुर्वेद, सियाहत, सकाफत, इक्तसादी और मालियाती मुजाकरात और तालीम समेत अहम शोबों में दो तरफा ताबुन को बढ़ाना है। मुजाकरात के दौरान अपने बयान में जनाब मोदी ने कहा कि भारत उज्बेकिस्तान मजबूत शराकतदारी वस्ती एशिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक ताकतवर मुहर्रिक होगी।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया। आज हम नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: मुजाकिरात के बाद उज्बेकिस्तान के सदर के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी खिदे को दरपेश संगीन चैलेंजेस हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन खतरात को कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी एक मुश्तरका अज़्म होगी।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान दोनों मुल्कों के कारोबारी रहनुमाओं की एक कारोबारी समिट का मुश्तरका तौर पर इनेकाद करेंगे। वजीर आजम मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक खेलों से मुतालिक तावुन को भी मजीद बढ़ाएंगे।
1: स्पोर्ट्स भी हमारे सहयोग के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभर रहा है। पिछले वर्ष गोवा में 20 वर्षीय उज्बेक ग्रैंड मास्टर सिंदारोव ने

0: वर्ल्ड कप जीता। अब नवंबर में उनका मुकाबला भारत के 20 वर्षीय चेस चैंपियन गुकेश के साथ होने वाला है। एक बिसात पर जब ये दो युवा सितारे आमने सामने होंगे तो जाहिर है इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर होगी।
1: जनाब मोदी ने उज्बेकिस्तान के तलबा के लिए 100 लाल बहादुर शास्त्री स्कॉलरशिप का ऐलान किया ताकि इस वस्ती एशियाई मुल्क में हिंदी जबान को फरोग दिया जा सके। उन्होंने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में संस्कृत चेयर कायम करने का भी ऐलान किया। इस मौके पर जनाब मोदी को सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने उज्बेकिस्तान के आला तरीन सरकारी एजाज ऑर्डर ऑफ ओली दर्जली दोस्त लीग से सरफराज किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर और वजीर खजाना निर्मला सीतारमन समेत कई मरकजी वजीरों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के आला तरीन सरकारी एजाज से सरफराज किए जाने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ये बावकार एजाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क्यादत और भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान देरीना दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उनकी मुस्तकिल कोशिशों का एतराफ है। वजीर दाखिला अमित शाह ने इसे हर भारतीय के लिए फख्र का अजीम लम्हा करार देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की सिफारती पॉलिसी नई सरहदें तय कर रही है, आलमी खित्ते जुनूब की आवाज को मजबूत बना रही है और अकवाम आलम के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम करके इंसानियत की फलाह व बहबूद के भारत के तहजीबी मकासद को आगे बढ़ा रही है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि यह एजाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को गहरा करने की मुस्तकिल कोशिशों का एतराफ है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि यह एजाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिशों और भारत के बढ़ते हुए आलमी रुतबे की इक्कासी करता है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए फख्र का लम्हा है और भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान पायदार दोस्ती की एक रोशन मिसाल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंच गए हैं। बिश्केक के अपने दो रोजा दौरे के दौरान वजीर आजम शंघाई तआवुन तंजीम एससीओ के रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ दो तरफा मीटिंगें करेंगे। वो 1 सितंबर को एससीओ के 26वें सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई तआवुन तंजीम के 26वें सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। ये इजलास शंघाई तआवुन तंजीम की 25वीं सालगिरह के मौके पर हो रही है। भारत 2017 से इस तंजीम का रुकन है। वजीर आजम इस इजलास से खिताब करेंगे। इस दौरान वह सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और मौके के सिलसिले में भारत की तरजीहात को उजागर करेंगे। वजीर आजम इजलास के मौके पर एससीओ रहनुमाओं के साथ दो तरफा मीटिंगें भी करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम 6ठे वर्ल्ड नॉम्ड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जो वस्ती एशिया के मालामाल सकाफती विरसे का जश्न मनाने के लिए मुनक्कद किए जा रहे हैं। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद इमरान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में लोगों से अपने ख्यालात का इजहार किया। अपने खिताब में उन्होंने मनुष्यात के इस्तेमाल के समाजी नुकसान के खिलाफ सख्त इंतबाह दिया और विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम को उजागर किया। उन्होंने पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए खवातीन की क्यादत में माशी खुदमुख्तारी पर जोर दिया और खलाई सनत जैसे जदीद शोबों में खवातीन के लिए बढ़ते हुए मौके की तारीफ की। वजीर आजम ने ज़राअत और डिजिटल टेक्नोलॉजी में अवामी सतह पर होने वाली अहम इख्तिरात की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम मुल्क भर में रफ्तार पकड़ रही है और मनुष्यात से पाक नौजवान और मनुष्यात से पाक भारत का मकसद महज एक रस्मी बात नहीं है, बल्कि इस मुहिम से बड़ी तादाद में नौजवान जुड़ रहे हैं।
3: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: जनाब मोदी ने कहा कि मनुष्यात की लत सिर्फ एक फर्द को नहीं बल्कि पूरे खानदान और मुआशरे को मुतासिर करती है। उन्होंने मनुष्यात के खिलाफ बेदारी पैदा करने और नशे

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

30 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकर दास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैलेंद्र।

0: तेरे।
1: शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था।

स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक गीत।

शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिले उठते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद है शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हालांकि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन।

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

0: शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अनाड़ी।
1: सब कुछ

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का

0: चल ही जाना।
1: इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथा चित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग।

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, शोध स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ है।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

शाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। लोग भले कहते हों कि प्यार महकती खुशबू है, प्यार है एक खिलता हुआ बाग, पर ये साहब मानते हैं कि प्यार है एक जलती हुई आग, और प्यार की आग में सब जल जाता है, खत्म हो जाता है, खाक हो जाता है। तो सुनिए प्यार की ये धधकती हुई कहानी इन साहब की जबानी।

जाने फिर क्यों रुलाती है दुनिया मुझे प्यार की आग में तन बदन जल गया प्यार की आग में तन बदन

0: धुआं हर जल गया जल गया मेरे दिल का जहां जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों सताती है दुनिया मुझे प्यार की आग में तन बदन जल गया तन बदन गया।
1: कुछ लोग दीवाने होते हैं प्यार में, पर कुछ लोगों का पैशन होता है फैशन। फैशन वो आग है जो लगाए न लगे

0: और बुझाए न बनी, कैसा है जमाना, हर शख्स फैशन का दीवाना। तो चलिए सुना जाए फैशन का तराना।
1: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये है जापानी, अरे

कभी मिल सका है क्या आग और पानी? अब जरा सोचिए, जब मिल जाए एक ठेठ हिंदुस्तानी और एक फैशन की दीवानी, तो बनती है कैसी कहानी। एक तरफ

0: हमारी।
1: चाय गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
0: भूस भर दिया मेरी चाहत में।
1: हम अभी हाजिर हुए

0: प्यार की दुनिया में होते हैं कांटे ही कांटे, कभी कभी तो चांटे ही चांटे। प्यार का रास्ता नहीं है आसान, कभी मुश्किलें तो कभी घमासान। चाहत की दुनिया में सोच समझ कर घुस, ये दुनिया भर देती है चाहत में भुस। सारे सपने हो जाते हैं फुस, प्यार का महल भर भरा कर हो जाता है ठुस।
1: भुस भर दिया अयो, भुस भर दिया मेरी चाहत में,

रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएं तो हो जिंदगी आसान, घर मिलता नहीं सब लोगों को। ये सारा है बड़ा उलझा हुआ चक्कर, बड़े शहरों में प्यार करने वालों को नहीं मिलता किराए का घर। ऐसे में कोई क्या करे पहल, कैसे बने हमारे सपनों का महल।

प्यार की राह नहीं है आसान, पर इस पर चलते हैं हिम्मत वाले, आसानी से नहीं हारते ये चाहत वाले, हो कैसी भी राहें प्यार करने वाले हार क्यों माने, वो तो गाएंगे ऐसे ऐसे गाने, आप माने या ना माने प्यार अपना रास्ता बनाना जाने।

0: क्यों?
1: छाया गीत में आज थे मन्ना डे के कुछ मजाहिया नगमे, फिल्मों के नाम।
2: प्यार की आग में तन बदन जल गया,
1: फिल्म जिद्दी।
3: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये है जापानी,
1: फिल्म अधिकार।
3: जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जाने, जोड़ी हमारी।
1: फिल्म औलाद।
3: भूस भर दिया मेरी चाहत में,
1: फिल्म अमानत।
3: रहने को घर दो,
1: फिल्म बीवी और मकान।
3: प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों।
1: और फिल्म राज। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
3: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलेक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री

0: की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं कि हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले के 44वें मिनट में जर्मनी के मिशेल स्ट्रोथॉफ ने एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 Memoranda of Understanding, MOUs, aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia. Later, at a joint press conference with the Uzbekistan President, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
3: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
2: On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oliye Darjali Dostlik, by President Shavkat Mirziyoyev. Prime Minister Modi dedicated the accolade to the 1.4 billion people of India.